बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति से खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: एक दूसरे तक पहुंचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
2: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
4: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, युवराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
8: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब

0: का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में दो बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home and Corporation Minister

0: रीलोड
1: चाय चाय चाय
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

दोस्तों किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है और छोटी छोटी मेहनत से ही बड़ी सफलता मिलती है। कहते हैं जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक प्रयास मत छोड़ो। जब आप लगातार प्रयास करते हो ना और छोटी छोटी गोल्स को आप अचीव करते हो तो यकीन मानिए वही आपकी मेहनत की सबसे बड़ी सफलता की पूंजी बनता है। कहते हैं रास्ते कठिन हो सकते हैं लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है तो वो आपके सफर को और आसान बना देता है। श्रोताओं जुड़ चुके हैं आप आरजे आनंद के साथ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपने ट्यून इन कर लिया है मुरादाबाद शहर का अपना रेडियो स्टेशन, देसी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे प्रोग्राम शुरू हो गया है। दिस इज बिंदास मॉर्निंग, वेलकम बैक। एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, सैटरडे की सुबह है, बहुत ही खूबसूरत सी ये ब्यूटीफुल वाइब आपको मैं दे रहा हूँ आज की मॉर्निंग। एंड सबसे पहले एक सुपर डुपर वाला वड्डा वाला गुड मॉर्निंग है आप सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे। जितने भी मुझे सुन रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, आप सभी का इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। वार्म वेलकम करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं आज तारीख हो गई है 27 जून। यार कैसे जून का महीना निकल गया मैं आपको बता रहा हूँ, पता ही नहीं चला यार कितनी तेजी से सन 2026 भाग रहा है ना, जैसे मानो एकदम पंख लगे हैं, इस समय को बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। आज 26 तारीख नहीं है दोस्तों, आज 27 तारीख हो गई है उनकी। जी हाँ, छठा महीना है ये, मैं आपको बता देता हूं। और फिलहाल दिन की अगर बात करें तो सैटरडे का दिन है 27 जून 2026। पता नहीं चल रहा है बॉस कैसे निकल रहा है ये महीना भी। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:23। जुड़ चुके हैं आप आरजे आनंद के साथ, आपका स्वागत है। आप हमें व्हाट्सएप पहुंचा सकते हैं अपने प्यारे प्यारे, अपनी प्यारी प्यारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं, सुबह सुबह अपना प्यारा सा मॉर्निंग डोज मुझ तक पहुंचा सकते हैं 9837896896 के माध्यम से, 9837896896 इस नंबर के माध्यम से आप जो है अपनी प्यारी प्यारी दिल की बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं हमारे स्टेशन ऑफ द नेशन पे, और वो बातें पहुंचेंगी तमाम लाखों लोगों तक। आपके दिल की बात, आपके दिल की थॉट, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल के विचार लोगों तक पहुंचे, उनकी लाइफ में कुछ चेंज करें, तो उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज का सफरनामा एक बेहतरीन ट्रैक के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने निकाल दिया है आज की सुबह, आज के इस बेहतरीन गाने के साथ होगी बेहतरीन सफर की शुरुआत। 8:23 हो गए, मेरा और आपका साथ लगातार बरकरार रहेगा 10 बजे तक इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला, आप हैं आनंद के साथ सुप्रभात।

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
7: इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
8: नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
9: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है यार, गाना सच में बहुत ही ब्यूटीफुल था और इतने अच्छे गाने सुबह सुबह सुनने को मिल जाए तो सच बता रहा हूँ सुबह ऑफकोर्स अच्छी हो जाती है यार। वेलकम बैक है वंस अगेन आप सभी का।

तीस मिनट का समय हो गया स्टूडियो क्लॉक में एंड आज सैटरडे की सुबह में आप आरजे आनंद के साथ हैं, तमाम सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। इन्होंने मुझे मैसेज किया है, ये प्रेम नगर से लिखती हैं, हेलो सर, मैं सुबह सुबह प्रोग्राम सुन रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और बहुत ही अच्छे गाने आप चलाते हैं सुबह सुबह। ये गाने सुन के हम तो अपने पुराने वाले समय में पहुंच जाते हैं। आनंद जी, दिल से थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारी बातें लिखी हैं। अगर आप अपना नाम भी लिख देती तो मेरे को खुशी होती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है जल्दबाजी में आप लिखना भूल गए हो, बट प्लीज अपना नाम जरूर पहुंचाइएगा। मैसेज हमारे पास पहुंचा है प्रेम साहू का, लिखते हैं, हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत बढ़िया हूं। एंड ये मुझे मैसेज करते हैं गायत्री नगर से, लिखते हैं, आनंद जी आज मौसम बहुत ही औसम है लेकिन गर्मी बहुत तेज हो रही है, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। और सभी लिसनर से भी रिक्वेस्ट है कि इस गर्मी में अपना और अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। एक मैसेज आया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये ऋषि करके मैसेज कर रहे हैं मुझे, ऋषि भाई थैंक यू सो मच आपके प्यारे से मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऋषि भाई, आगे बढ़ते हैं। एक मैसेज मेरे पास और पहुंचा है सुबह सुबह, हेलो आनंद जी, सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी, गुड मॉर्निंग। एंड इन्होंने लिखा है, सुबह सुबह आनंद जी, गानों के साथ साथ आप जो इतिहास वगैरह साझा करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस बहाने से हमें तमाम सारी जानकारियां मिल जाती है आपके कार्यक्रम से। बिल्कुल, हमारे भी यही प्रयास होते हैं, यही कोशिश होती है कि सुबह सुबह अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम जो है आपको तमाम वो जानकारियां पहुंचाएं जो शायद आपको कहीं और मिले ना मिले, बट मेरे स्टेशन पे डेफिनेटली आपको मिले। आगे बढ़ते हुए एक और संदेश मेरे पास पहुंच गया है, गुड मॉर्निंग आनंद, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग जी, सुप्रभात आपको भी, लिखते हैं, आनंद जी आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है और बाकी लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, हर दिन की सुबह एक नया मौका लेकर आती है, इस मौके का फायदा उठाएं और कुछ बड़ा बेहतरीन करें। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच, ये सच में आपने बहुत प्यारी बात लिख दी है मेरे भाई, थैंक यू गौरव जी। चलिए श्रोताओं, एक ब्यूटीफुल ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पे, एंजॉय कीजिए, फ्रॉम द फिल्म दिल है तुम्हारा से, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है, अलका याग्निक, उदित नारायण जी की आवाज, नदीम श्रवण का म्यूजिक है, समीर साहब ने लिखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, एंजॉय करते हैं साथ में, 3 2 1 गो, एंजॉय।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
9: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
10: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
11: कॉल 8826213131।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

परदेश फिल्म का ट्रैक सोनू निगम साहब ने गाया था, परदेश मूवी से गाना था। बहुत ही कमाल की फिल्म एंड बहुत ही कमाल का स्टोरी एंड गाना भी बहुत ही अल्टीमेट था। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन।

श्रोताओं, आज 27 जून है, 27 जून सैटरडे की सुबह है और आइए अब हम एक नजर डालेंगे आज के इतिहास के पन्नों पर। आज का दिन क्यों स्पेशल है, क्या कुछ खास है, आज के दिन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आप आनंद के साथ हैं तो बिल्कुल ये तो बनता है जी कि आज की तारीख क्या कहती है मेरे दोस्त।

तो दोस्तों आपको बता दें, आज के दिन 1967 में आज के दिन लंदन के एनफील्ड बैंक में दुनिया का पहला एटीएम था। एग्जैक्टली, जो दुनिया का पहला एटीएम था वो आज के दिन 27 जून को लंदन के एनफील्ड बैंक में जो है पहली बार और पहला एटीएम जो है ये लगाया गया था, मतलब पहला लंदन के अंदर। और आपको बताते चलें, आज के दिन 1967 में भारत में निर्मित पहली यात्रा विमान SH-748 इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया था श्रोताओं आज के दिन। एंड आज का दिन और भी एक खास चीज के लिए बहुत ही खास हो जाता है, तो बिल्कुल इस पे हम डेफिनेटली अभी बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। 8:56 हो गए स्टेशन क्लॉक में।

आपको बताते चले, सन 2015 में भारत की फिल्म इतिहास में अपना खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत रे अथवा सत्यजीत रॉय की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया था। आज के दिन श्रोताओं, 1964 में पीटी उषा जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका जन्म हुआ था आज के दिन, और भारतीय पत्रकार पूर्णिमा वर्मन इनका भी जन्म हुआ सन 1955 को आज के दिन। नितिन मुकेश हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं, सन 1950 को इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। राहुल देव वर्मन 1939 में 27 जून को हिंदी फिल्मों के संगीतकार हैं, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ श्रोताओं। और आपको बता दें, सन 1919 में 27 जून को जन्म हुआ था अमला शंकर, जो बहुत ही पॉपुलर भारतीय नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर थी, इनका जन्म आज के दिन हुआ था श्रोताओं। और ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातें जो कहीं ना कहीं हमने साझा कर दी हैं आपके साथ आज के दिन के बारे में। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए आरजे आनंद के साथ। फिलहाल 27 जून के इतिहास की जो विशेष बातें थी मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होंगी श्रोताओं। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हुए, और जब लौट कर आएंगे तो फिर बात करेंगे मुरादाबाद शहर के बारे में। कुछ खास चीजों पर जो है चर्चा करना बहुत जरूरी है आज की सुबह, तो आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ, सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो दिस इज बिंदास मॉर्निंग। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत अभिनंदन है ना आपका। मैसेज कर सकते हैं आप मुझे 9837896896 के माध्यम से जुड़ सकते हैं मेरे साथ आज की सुबह से स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पे उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में। एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे साथ में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
4: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
3: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: कॉल 9045912348।
5: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वेलकम बैक है लेडीज एंड जेंटलमैन स्टूडियो की घड़ी में। पाजी देखो यार कितनी तेजी से समय निकल गया है, पता नहीं चल रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। 89.6 आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आप सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन स्टेशन। क्लॉक में 9:05 हो गए हैं। आज सैटरडे की सुबह है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका वेलकम बैक करता है आपका रेडियो वाला दोस्त आरजे आनंद। यार देखो, मुरादाबाद के अंदर ना एक चीज है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई है, वो है बिजली। मुझे लगता है कि लाइट की समस्या जो है ना बहुत ज्यादा हो रही है। कल रात को तो इतनी लाइट गई है भाई, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मुझे लगता है कि कोई बंदा अगर थका आ रहा आया होगा, उसको लग रहा होगा चलो यार एटलीस्ट अब तो चैन की नींद मिल जाएगी, घर आ गए तो। लेकिन एक तो गर्मी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो रखा है, मैं आपको क्या बताऊं। अभी भी टेम्परेचर अच्छा खासा हो रखा है, गर्मी से बुरा हाल हो रखा है। सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं बॉस, गर्मी तो है ही मुरादाबाद के अंदर, ये जो लाइट प्रॉब्लम कर रही है ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा भाई, किस किसके एरिया में जो है कल रात लाइट ने बड़ा परेशान किया, आप मुझे मैसेज करके बताना मुरादाबादी 9837896896 पर व्हाट्सएप करके मुझे तेरा बताओ कहां कहां पर कल रात को बिजली गायब हुई थी भैया, और कब कब लाइट गायब हुई है जरा मुझे ये भी बता दो। आज की सुबह सैटरडे मॉर्निंग है, इस पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ जी, फिलहाल 27 जून है आज, बहुत ही स्पेशल मॉर्निंग है। आनंद के साथ आप जुड़े हुए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वैसे एक लेटेस्ट अपडेट, मुरादाबाद में साफ सफाई का अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, पेंट शेंट चल रहा है, गड्ढे शड्ढे भरे जा रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है, कोई बड़ी पर्सनैलिटी तो नहीं आ रही है मुरादाबाद के अंदर, जानना है आपको, मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी सी देर में। और एक नंबर भी आपको देने वाला हूं, अगर आपको कोई लाइट से जुड़ी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी आपकी समस्या है वो आप डेफिनेटली रख सकते हैं। वो कौन सा नंबर है डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि लाइट बड़ी प्रॉब्लम कर रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल रात को इतनी लाइट गायब हुई है, एक तो गर्मी का पारा इतना हाई था, ऊपर से लाइट बार बार जा रही थी, मतलब भैया नींद में तो ऐसे विघ्न आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब। और अभी वो रात की नींद ना अभी भी आंखों में भरी हुई है। वैसे किस किसके एरिया में लाइट गई थी रात मुझे डेफिनेटली बताना, आप मैसेज करके 9837896896 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आने वाला गाना शुरुआत कर रहे हैं अभी इस घंटे की शुरुआत, अब 10 बजे तक मेरा रहेगा आपका साथ। रफ्तार पकड़ते हैं इस गाने के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को वे गुड मॉर्निंग। जरा से इसमें मिलते हैं, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक।

0: पार्टी खत्म, चलो।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अमित त्रिवेदी, नकाश अजीज की आवाज, साथ में ऐश किंग दे रहे थे साथ।
1: तुम जाने कोशिश कर लो आयशा, होगा कोई।
0: ब्यूटीफुल ट्रैक यार, मतलब अल्टीमेट गाना। सच बताऊं ऐसे वाले गाने सुन के मजा आ जाता है सुबह सुबह। हाय आनंद के साथ हैं आप, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, हेलो, कैसे हाल चाल? दिस इज मी आनंद, वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज 27 जून हो गई है। आप चाहे मुरादाबाद में सुन रहे हैं मुझे या मुरादाबाद से बाहर सुन रहे हैं, मैं कह जी आप कहीं भी सुन रहे हो, एक बड्डा वाला गुड मॉर्निंग है यार। कभी कभी क्या होता है ना, यू नो, मुझे ऐसा लगता है लिसनर्स कि हम लोग ना सस्ते के ऑफर में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और इस चक्कर में ना कई बार हमारा बड्डा वाला लॉस हो जाता है यार। एक्चुअली क्या है पूरा सीन, चलो मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसे बहुत सारे ऑफर्स निकलते हैं, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं आरजे आनंद, मेरे को फॉरेन कंट्री जाना है, मेरे को दुबई जाना है, मेरे को लंदन जाना है, तो मैं ना कुछ ऐसे सस्ते वाले ऑफर ढूंढूंगा जहाँ पे मेरे को एक बढ़िया ट्रिप मिल जाए, जहाँ पे एक बढ़िया पैकेज मिल जाए, और वो मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल भी होगा, मेरे लिए सूटेबल होगा, मुझे लगेगा यार मैं इसके थ्रू अगर जाऊँगा, इस एजेंसीज के थ्रू या इन कंपनीज के थ्रू, तो शायद मेरा ट्रैवलिंग पैकेज थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा और मैं घूम के आ जाऊँगा। आई नो ऐसा कई बार होता है, बहुत सारी ऐसे जेन्युइन हैं जो आपको लेकर जाते हैं, बट यार हर जगह पे अगर आप ये सस्ता वाला टूर ढूंढ रहे हो ना बॉस, तो ये आपका अकाउंट जो है बुकिंग से पहले ही गड़बड़ कर सकता है। तो मतलब मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि आजकल इतना ज्यादा साइबर स्कैम जो है मार्केट में आ गया है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से स्कैमर्स आ गए हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स मार्केट में आ गए, तो ऐसे में जेन्युइन वेबसाइट्स पे बिलीव करना और फेक वेबसाइट्स को ढूंढना दोनों में बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब फेक वाली जो है आपको पता नहीं चलेगा और ये जेन्युइन कौन सी है, फेक कौन सी, बिल्कुल सारी चीजें बड़ी सिमिलर हो गई, एकदम सेम सेम लगती है ना, तो इंसान धोखा खा जाता है। अब ऐसे में आपने क्या करना है, देखो भाई कोई भी ट्रिप का पैकेज अगर आपको बड़े डिस्काउंट ऑफर पे मिल रहा है, तो उसका पहले अच्छे से आपने वेरिफिकेशन करना है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी है कि भैया एक्चुअल में ये है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर आपको ठगा जा रहा है, आपको उसका शिकार बनाया जा रहा है, साइबर स्कैम आपके साथ हो रहा है, ये चीज़ आपको डेफिनेटली चेक करनी है, क्योंकि आजकल फर्जी ट्रैवल वेबसाइट्स जो है बहुत भारी भारी लिमिटेड ऑफर आपको दिखा रही है, भारी छूट्स आपको दिखा रही हैं, लोग एडवांस में जो है बुक करने के लिए पेमेंट कर देते हैं कई बार, उसके बाद फिर ये वेबसाइट्स और ये कंपनी सब कुछ गायब हो जाता है। तो इसीलिए पहले बुकिंग करने से कुछ चीजें डेफिनेटली आप चेक कर लें, एंड मुझे लगता है कि जो भी उसकी गाइडलाइंस है उसको पहले अच्छे से पढ़ें, पूरी वेरिफिकेशंस करें, अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही आप जो है अपना अमाउंट वहां पर पे करें, या आपको अगर एडवांस में कुछ पेमेंट देनी भी है तो तभी आप दें जब आपको पूरी तरीके से यू नो पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल जेन्युइन है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड ठगी या कुछ ऐसा आपको लग रहा है, तो आपको तुरंत ऐसे में कॉल करना है 1930 पर एग्जैक्टली। अगर आपको कुछ भी यू नो ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, ये तो स्कैम हो रहा है या यहाँ पे तो फेक चीज़ें चल रही, तो ऐसे में आप जो है तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं 1930 पर, ये वो नंबर है 1930, इस पे कॉल करके आप अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपको किसी के साथ हो रही है या आपको लग रहा है कि आपके साथ ये चीज हो रही है, तो आप डेफिनेटली उसकी यहां पर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और पहली बात तो यार मैं कहता हूं ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट कोई भी चीज को करने से पहले, स्पेशली अपना अमाउंट देने से पहले, एक बार जरूर यू नो वहां की जांच पड़ताल जरूर करें जहां पे आप जाना चाह रहे हो, और उस चीज के बारे में अलग अलग लोगों से भी पूछताछ करें, सिर्फ एक ही चीज पर आप फोकस ना करें। भारी ऑफर्स के चक्कर में ना कई बार अक्सर हमारे ऊपर बहुत बड़ा सा एकदम से ना वो कह सकते हैं कि ऐसा वाला लॉस आ जाता है, मतलब ऐसी वाली दिक्कत हो जाती है कि हम फिर बाद में पछताते रहते हैं, फिर वो पछतावा हो जाता है। तो इसीलिए बेटर यही है कि कुछ भी चीज करने से पहले एक बारी उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:18, कुछ एड ब्रेक आएंगे उसके बाद अपन लौट के आएगा। अभी एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, जर्मनी में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की तैयारी हो गई है, वहां पर भी वहां की गवर्नमेंट भी भैया यानी कि जर्मनी में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया है सरकार द्वारा। वहां पर एक पैनल सुझाव दिया गया है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब अब वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सख्त नियम भी वहां पर जो है बनाए जा रहे हैं, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वहां पर बनाया जाएगा, उसके तहत ही उन चीजों को देखते हुए ही जो है इन चीजों पर काम किया जाएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो अलग अलग कंट्रीज में छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जा रहा है, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग यार, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया में वैसे हो जाना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9:19 हो गए हैं और अभी मैं लौट कर आता हूँ, तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मुरादाबाद में साफ

की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हो रही हैं। आखिर कौन सी पर्सनालिटी की एंट्री हो रही है अपने शहर के अंदर, टुमारो कौन आने वाले हैं, ये आपको जानना है। सो डेफिनेटली बताता हूँ अभी आपको। मेरे पास बहुत सारे संदेश आ गए हैं। पूनम जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू। कल मेरे यहाँ पर बहुत लाइट भागी थी और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी नींद खराब हो गई रात को। एक मैसेज मेरे पास हो रहा है, गुड मॉर्निंग, हाय दिस इज मी कृतिका, हाय गुड मॉर्निंग कृतिका। ये मुझे लिखती है, आनंद जी लाइट का तो पूछो मत, दिन हो या रात कभी भी भाग जाती है और अक्सर गर्मियों में ज्यादा सीन होता है। ये तो मैम आपने सही कहा है। एक मैसेज आया, थैंक गॉड मेरे इन्वर्टर का, जिसकी वजह से मेरे को गर्मी का थोड़ा पता नहीं चलता है, लेकिन सच में लाइट बहुत ज्यादा जा रही है आनंद, ये समस्या तो बहुत बढ़ रही है। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है मेरे पास, तो अभी कौन सा वो तरीका है जानना है आपको, डेफिनेटली बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक अच्छा सा गाना सुनते हैं बिना किसी देरी के। इसका इंतजार आपने नहीं करना है, अच्छा सा ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो स्टेशन पर। अरे स्टेशन पे तो मैं हूँ, आप तो अपने रेडियो सेट पे एंजॉय कर रहे हो ना। हाँ तुम एंजॉय करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बिलाल आनंद के साथ हैं आप, लेडीज एंड जेंटलमैन। आने वाला गाना बहुत ही फैबुलस है, सोनू निगम अलका याग्निक जी की आवाज। यह है सैटरडे की सुबह, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनु मलिक, लिखा है समीर साहब ने, बहुत ही फैबुलस ट्रैक। इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप निकल रहे हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे तो ऑल द वे बेस्ट।

0: पका लव इश्क बबुआ।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
4: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

What a song यार, चक मार के अमेजिंग गाना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गाने सुन के सच में मजा आ जाता है यार. एंड मतलब फ्लैश बैक में नहीं जाते, इतने बेहतरीन गाने. चलो जी, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं. आप आनंद के साथ हैं. वी कम बैक, छोटू सा ये गाना, इसके बाद आ रहा हूँ.

सैटरडे की सुबह है, आप आनंद के साथ हैं और देखो भाई साहब आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए अच्छे गाने और अच्छी इन्फॉर्मेशन का पूरा इंतजाम करके आता है ये दोस्त। 9:29 हो गए स्टेशन क्लॉक में। थैंक यू वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए, बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं। ओरिजिनल वाली तालियां आपके लिए लगा रहा हूँ आज की सुबह। फिलहाल मेरे पास ढेर सारे मैसेज आ गए। हनी मेरे साथ जुड़े हैं आज की मॉर्निंग, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। अच्छा भाई ठीक है, आप उधार ले जाओ मेरे से लेकिन वापस दे देना यार, अब इसमें अच्छी लगती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वेल थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट यार, आज की मॉर्निंग तुम ऐसे दिन बना देते हो यार मेरा जी, थैंक यू सो मच यार। फिलहाल अभी काम की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि शहर के अंदर बड़ी जोरों शोरों से जो है साफ सफाई का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। हाँ जी, तो भैया ये जो साफ सफाई का कार्यक्रम है आखिर ये क्यों चल रहा है, इस पे अगर आपने जानना है तो बिल्कुल आपको मेरे साथ बने रहना होगा। फिलहाल आपको बता दूं कारों के बारे में इन्फॉर्मेशन आई है कि अब कार हो जाएंगी स्मार्ट डिवाइस। एब्सोल्युटली आपको बताया ना, कारों की दुनिया में सिर्फ इंजन माइलेज और डिजाइन तक सीमित नहीं रही है, अभी जो है कारों को और यू नो डिफरेंट फीचर्स और नई नई चीज़ों के साथ मॉडिफाई किया जा रहा है, लगातार अपडेट हो रही है। अभी आपको बता दें फीचर्स गाड़ियों को लगातार अपडेट होने वाले स्मार्ट डिवाइस में बदल रहा है और ये ही वजह है कि भैया आधुनिक वाहनों से अब जो है सॉफ्टवेयर ऑन व्हील जो जितनी भी अब नई नई कारें आने वाली हैं अब वो स्मार्ट डिवाइस हो जाएंगी, तो ये तो अच्छी बात है ना यार। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब नई नई चीज़ें होती रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि नए नए आविष्कार बहुत ही ज़रूरी है मेरे यार। फिलहाल आज का वेदर क्या कह रहा है, 35 डिग्री करंट टेम्परेचर है। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन यार कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही होगी। सूरज चातु से निवेदन है कि थोड़ा सा तो बादलों से कह दो कि वो आ जाएं यार, इतनी गर्मी हो रही है ना मैं तो बता नहीं सकता हूं यार आपको। फिलहाल हवाएं चल रही हैं 3 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से। आज ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो 48% दिखा रहा है। एयर क्वालिटी भाई कतई अच्छी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मुरादाबाद के अंदर एयर क्वालिटी तो भाई कतई अच्छी होती ही नहीं है यार, मतलब इतना पोल्यूटेड रहता है ना एरिया, क्या ही बताऊं। खैर आगे बढ़ते हैं, विजिबिलिटी ओके ओके एंड वेदर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग नहीं है आज की सुबह। ये टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब गर्मी का पारा जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ऐसे में आप क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने पानी पीते रहना है यार, और पानी को भी आप अलग अलग फ्लेवर के साथ पियो ताकि आपको पानी पीने में यू नो मतलब अच्छा लगे, आपको ऐसे बोरिंग बोरिंग नहीं लगे ना। पानी में आप लेमिनेट कर सकते हो, आप खीरे वीरे वाला पानी भी बना सकते हो, बहुत सारी वेराइटीज के पानी है आजकल, तो इंस्टाग्राम आपका गुरु बन गया यार है। मैसेज मेरे पास पहुंचा है रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं विकी सागर जी, लिखते हैं आनंद जी मेरे यहाँ पर भी लाइट भाग रही थी लगातार और बहुत गुस्सा आता है यार जब लाइट बीच बीच में भाग जाती है। तो आई एग्री विद यू, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था यार, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई। फिलहाल आपको बता दें मुरादाबाद में दिन में और रात में भैया ऐसा लग रहा है कि पूरा जैसे मान लो हमारा चैन ही छीन लिया यार। एक तो भैया लाइट ही हमारा सहारा होती है, लेकिन आपको बता दें फिलहाल बिजली से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होने पर आप जो है विभाग के कंट्रोल रूम पे इस नंबर में कॉल करके जो है अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको जो भी लगता है वो आप बता सकते हैं और आपकी समस्याओं को पूरी तरीके से हल करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर को डेफिनेटली आप नोट करें, 9193300109। इस नंबर को नोट कर लो, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9193300109। इस नंबर पे आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, कंट्रोल रूम का नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है बिजली से संबंधित, जो भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है भैया, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और अपनी जो है प्रॉब्लम यहाँ पर आप बता सकते हैं, आपको जो है उसका सलूशन डेफिनेटली मिल सकता है। पूरा पूरा कोशिश किया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल अभी लौट कर आते हैं, कुछ और बातें हैं आपकी फिटनेस के बारे में बात करेंगे। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी हेल्थ के बारे में बात ना हो। 9:33 हो गए यानी कि 9:33 स्टेशन क्लॉक में, ढेर सारे श्रोता साथी लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके मैसेज को डेफिनेटली अभी हम शामिल करेगा इधर अपने स्टेशन पे करेगा, आप थोड़ा इंतजार करेगा तो मैं भी आपका मैसेज इधर डेफिनेटली शामिल करेगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करता है। अरे भैया मैं कुछ नहीं, मैं बस आपसे थोड़ा सा यू नो फन करने की कोशिश कर रहा हूं। खिलाड़ी 786 से निकल गया है आपके लिए बेहतरीन गाना, इसका ये म्यूजिक अच्छा लगता है ना। अरे ये नहीं दूसरा वाला, अरे भाई जरा बजाओ ये वाला, हाँ अच्छी लग रही है। गंदी गंदी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। चलो मुस्कुराते रहो, गुड मॉर्निंग, आई विल बी राइट बैक।

0: आप भैया बलमा बलमा करते हुए चाहे दिल्ली रोड पहुंच रहे हो या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हो जीरो पॉइंट की तरफ, या आप जा रहे हो पीली गोटी की तरफ, आप जहां भी जा रहे हो भैया, अगर आपको कहीं जाम शाम मिल रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। मेरा नंबर बहुत आसान है, 9837896896। इस नंबर पर आप मुझे अपडेट दे सकते हो। अगर ट्रैफिक से जुड़ी कोई जानकारी आप देना चाहते हो तो आपका स्वागत है।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: था मेरी कसम,
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय,
5: बिंदास मॉर्निंग सुनिए। बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: इस गाने को अपनी कॉलेज क्यों बनाने के लिए एक दबाएं, आगे बढ़ने के लिए दो दबाएं, भाई साहब यहाँ पर आपको कुछ नहीं दबाना है। ऐसा मुझे पहले जो छोटे वाले फोन आते थे ना उस पे से कॉल्स आते थे। वेलकम बैक है लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ हैं आप। 27 जून की सुबह मेरे पास फोन आया नरेश जी का, मेरे पास फोन आया गिरी मैम का, मेरे पास फोन आया रितु जी का। उन्होंने बताया कि आनंद जी कहीं से कहीं तक कोई ट्रैफिक नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हम लोग सब एकदम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, रेडियो स्टेशन आपका सुनते हुए जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों को, थैंक यू गाइस आपने फोन करके मुझे बताया। आजकल यार ये बुध बाजार में जो जाम लग रहा है ना, मतलब हालांकि वहां पे तो रश हमेशा ही होता है यार, और उसका एक रीजन मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है क्योंकि यार जैसे बुध बाजार में आप एंटर करोगे वहां पर ना आपको जो इधर उधर गाड़ियां लोग खड़ी कर देते हैं ना कहीं पे भी, उसकी वजह से ज्यादा जाम लगता है मुझे ऐसा लगता है। आप देखोगे फुटपाथ पर मतलब अवैध, मतलब बिना बात के उधर जो है कब्जा करे पड़े, मतलब कहीं पे भी कुछ भी लोग खड़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी भसड़ मच जाती है। मैं एक्चुअली बहुत लाइटली जाता हूं वहां पे, तो वैसे मैं अवॉइड ही करता हूं क्योंकि बुध बाजार के अंदर इतना रश आपको देखने को मिलता है। आप जैसी ताड़ी खाने की तरफ एंटर करोगे भैया आपको ना ऐसा लगता है कि जाम की बाहर आ गई है यार, और स्पेशली टाउन हॉल की तरफ तो कुछ ज्यादा ही है यार ये वाला मसला। एंड अब आई डोंट नो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब भैया इसका क्या हो सकता है तोड़, इसका तोड़ ये भी है कि जब भी आप अपना वाहन लेकर जाएं तो आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपको कहाँ पर अपनी बाइक को लगानी है। आप इधर उधर बाइक खड़ी करोगे तो आपको भी दिक्कत होगी, साथ में सामने वाले जो निकल रहा है पर्सन उसको भी दिक्कत होगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है दिक्कत हो जाती है। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि भाजी आप बुध बाजार जाओ या टाउन हॉल जाओ या आप कहीं पे भी जाओ, जरा सा संभल के जाओ, और अपनी गड्डी को अगर लेके जा रहे हो तो जरा सही से लगाओ यार, है दिक्कत ना हो। अगर आरजे आनंद वहाँ पे आए तो ऐसा ना लगे यार मुरादाबादी ये रूल तो आप कभी ब्रेक कर रहे हो और मजा नहीं आ रहा। खैर आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद के साथ हैं, आप सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो दिस इज बिंदास मॉर्निंग, जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि मुरादाबाद के अंदर जो है बड़ी तेजी से तैयारियां हो रही हैं, बड़ी तेजी से जो है साफ सफाई का अभियान चल रहा है और अपने अपने काम में जुड़े हुए हैं सारे लोग। मैं आपको बता दूं एक्चुअली ना अभी 28 को यानी कि कल बताया जा रहा है कि अपने मुरादाबाद के अंदर सीएम साहब की एंट्री हो सकती है, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो सकता है कल, पर अभी कंफर्म नहीं है कि कल वो आ रहे हैं यानी, बट बताया जा रहा है कि हो सकता है। एंड इसी को लेकर जो है शहर में काम किया जा रहा है, मतलब आपको मैं बता दूं विभिन्न विभिन्न हिस्सों पे काम चल रहा है, दिल्ली रोड, कांट रोड, पीली कोठी के आसपास शहर में काम किया जा रहा है, एंड सोनकपुर और भी तमाम सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से जो है साफ सफाई की जा रही है, अच्छे तरीके से मार्ग को जो है भैया चमकाया जा रहा है। अरे भैया अपने मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं तो साफ सफाई तो होनी चाहिए ना यार शहर के अंदर। चलिए दोस्तों फिलहाल सीएम साहब कल आएंगे या नहीं ये तो आपको पता लगी जाएगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, लेकिन अभी फिलहाल पता करते हैं कि आज बर्थडे किसका है यार, ये जानना बहुत जरूरी है। 9:44 हो गए स्टेशन क्लॉक में, कड़क सवाल है मेरे पास, अगर इसका जवाब आपने मुझे दे दिया तो मजा आ जाएगा आज की सुबह, आपको आनंद के साथ आनंद आ जाएगा, वैसे तो आनंद आता ही है नो डाउट, लेकिन अगर आपने मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा और कड़क सवाल आज की सुबह लेकर आया हूँ, जिसका जवाब देकर आज जीत सकते हैं आप ढेर सारी तालियां और एक बहुत ही अच्छा सा टैग। अगर आप ये जीतना चाहते हैं मुरादाबादीज तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब देना होगा। एंड आज का मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है, क्या है सही वाला क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए आपको राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। बस थोड़ी सी देर में मैं लौट कर आ रहा हूँ, 9:45 हो गई, बर्थडे सेलिब्रेट करना है यहाँ पर। अभी मुझे एक मैसेज आ रहा था कि आज मेरा बर्थडे है, प्लीज विश करो यार। ये मैम का बर्थडे विश करेंगे, एक भाई का बर्थडे विश करेंगे
1: आते,
0: लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय करते हैं साथ में। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
3: तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद विद यू। आप सुन रहे हैं सैटरडे की सुबह में आनंद को। 27 जून है आज। देखो कितनी तेजी से टाइम निकलता जा रहा है यार, और मेरा भी टाइम निकल रहा है। ओ भाई 9:54 हो गए भाई, पता ही नहीं चल रहा यार क्या ही हो रहा है भाई। मुझे मारो, एक तो समय का एकदम पता नहीं चलता है। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते रहिए। कुछ लोगों की तो बस अभी गुड मॉर्निंग हो रही है यार, अभी ब्रश चल रहा है। अच्छी बात है यार, करो। अब उनका आधा दिन निकल गया, अभी आपका ब्रश हो रहा है, बड़ी गंदी बात है यार। खैर कोई बात नहीं भैया, जो लोग लेट नाइट जगते हैं ना, वो सुबह में यही करते हैं यार, और अपन लेट नाइट नहीं जाग पाते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आपसे मैं एक सवाल पूछने वाले हैं, एक चुटकी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। एक चुटकी सॉन्ग बजेगा और आपने उसका मेरे को जवाब देना है बाबू शाह। अगर आपने उसका जवाब दिया तो आज की सुबह आप जीतेंगे ढेर सारी तालियां और साथ में एक बढ़िया सा टैग। तो आपको क्या करना है जी, आपने बस मेरे इस गाने को सुनना है और मेरे को बताना है कि ये एक चुटकी सॉन्ग जो मैंने बजाया ना आज, ये एक चुटकी सॉन्ग कौन सा है, यही आपको मुझे बताना है। बहुत ही यू नो पॉपुलर गाना है, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, बस इसको आपने गेस करना है। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे पता है बड़े फिल्मी है, आपकी बॉलीवुड की नॉलेज चेक करने का टाइम हो गया है। तो एक चुटकी सॉन्ग यहां पर प्ले होगा एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा गाना है। जरा पहचानिएगा। व्हाट्सएप करना है आपने मेरे को, यस ये जो अभी आपने म्यूजिक सुना है ये कौन से गाने का है। अगर आपको समझ में आ गया है ये एक चुटकी सॉन्ग जो आनंद तूने बजाया ये, तो ये वाला गाना है, तो आपको क्या करना है, अपना फोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पे। ठीक है जी, व्हाट्सएप नंबर है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरा सवाल आपको आइडेंटिफाई करना है एक चुटकी सॉन्ग कौन सा बज रहा है आज की सुबह। व्हाट्सएप करके मुझे जरा बताओ फटाफट से, भी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा जी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। आप मेरे को मैसेज करने का, अगर आपको पता है सही जवाब तो सीधा सीधा व्हाट्सएप कर दो ना यार, या फिर आप चाहो तो मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। कौन सा गाना है, चलो मैसेज करो मुझे फटाफट से, इंतजार रहेगा मुझे आपके व्हाट्सएप मैसेज का। अभी बर्थडे विश करने का टाइम हो गया है तो डेफिनेटली बर्थडे विश करेंगे। बस मैं यू गया और यू लौट कर आता हूँ फटाफट से, ढेर सारे मैसेज आ गए मेरे पास, वो सभी मैं शामिल करूंगा। आप मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दो यार, ठीक है, इंतजार कर रहा हूं मैं आपके मैसेजेस का। 9837896896 स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है, इस नंबर पे आप मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम के साथ अपना सही वाला जवाब। फिलहाल एक काम करते हैं कि अच्छा सा गाना सुनते हैं, अल्टीमेट वाला गाना, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है सैटरडे की सुबह।

0: नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई।
1: क्या बात है भैया, नशे से चढ़ गई। देखो भाई, अच्छी चीजों का नशा तो अच्छा ही होता है। अगर आप गानों का नशा आपके ऊपर चढ़ रहा है, मेरी बातों का नशा चढ़ रहा है, तो ये तो एक अच्छी चीज है ना। और मुझे लगता है कि फिर चढ़ना भी चाहिए यार, क्योंकि बातों का नशा और रेडियो के नशा की ना बात ही अलग होती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
0: मिल गया
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। थोड़ी देर पहले हम बर्थडे विश की बात कर रहे थे। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत सारे लोगों का बर्थडे होता है। बॉलीवुड में भी बहुत सारे सिंगर्स का बर्थडे है, डायरेक्टर्स का बर्थडे है, और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का भी बर्थडे है। एंड एक स्पेशल बर्थडे के लिए तो स्पेशल कॉल भी आया है। आइए जरा बात करते हैं कौन है जो बहुत एक्साइटेड है किसी को बर्थडे विश करने के लिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर।
3: गुड मॉर्निंग
1: जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टेशन में।
3: आपका भी आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। जी
3: आपने मुझे लाइव टेलीकास्ट।
1: अरे सर, थैंक यू सो मच सर। आप बताइए, आज किसका बर्थडे, किसके लिए आप पार्टी जो है दे रहे हैं?
3: बहुत स्पेशल दिन है।
1: अच्छा सर,
3: 27 जून।
1: जी जी,
3: समझिए कि मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। मेरी आज दोनों बिटिया ट्विंस का आज जो है बर्थडे है।
1: अरे वाह, क्या बात है सर।
3: मैं आपका सेलिब्रेट करना चाहता हूँ आप सबके साथ।
1: बिल्कुल सर, पूरी आवाम आपको सुन रही है, पूरा शहर आपको सुन रहा है। अपनी ट्विंस का नाम तो बता दीजिए।
3: तबा खान और सैबी खान।
1: अरे वाह, क्या बात है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
3: मैं आपको शामिल कर लूँ अपनी खुशी में।
1: अरे सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने हमें
3: मेरे घर की रौनक है दोनों बिटिया।
1: अरे वाह, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर।
3: इनके आने से मेरी जिंदगी बहुत बदल गई एक तरह से।
1: अरे वाह, अरे वाह,
3: लड़की के आने से मेरी जिंदगी बदली। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं।
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
3: लड़की आने से मेरे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा चेंजेस आई है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया सर।
3: इनकी बदौलत सब कुछ दिया है मुझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है साहब। अपना नाम तो बता दीजिए।
3: शहजाद अली खान।
1: जी जी शहजाद साहब, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। आप कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
3: आजाद नगर।
1: अच्छा, आजाद नगर रहते हैं। क्या बात है,
3: बहुत संबल रोड।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तो रेडियो वगैरह? जी जी, रेडियो सुनते हैं सर।
3: रेडियो बराबर सुनते हो? बराबर, मैंने ये भी तो आपको विश करा कि आप भी हमारे साथ शामिल हो खुशी में।
1: अरे सर, हम आपकी खुशी में शामिल हुए, आपने हमें अपनी खुशी में शरीक किया, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
3: शुक्रिया।
1: जी जी, तो कुछ कहना चाहते हैं अपने दोनों डॉटर्स को?
3: आप मैं तो एक अच्छा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ अपनी दोनों बेटियों के लिए।
1: बिल्कुल, तो हम जरूर करेंगे सर। आज की इतनी प्यारी सुबह है तो जरूर आपके लिए।
3: आप डेडिकेट अपनी तरफ से देंगे, आप देखें कौन सा सॉन्ग आप सुनाना चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को बहुत मजा आनंद के साथ आनंद आएगा साहब।
3: इनका डाउन हमेशा खुशियों से भरा रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: हमेशा यही दुआएं।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पीछे जो बोल रही हूँ उनको भी हमारा ढेर सारा प्यार। वो धीरे धीरे आपको आपको आइडिया दे रही है ना, आपको यही बोलना है तो मुझे। हाँ जी बिल्कुल, बात कराइए। बिल्कुल कराइए सर, बिल्कुल कराइए। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
4: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: अरे आप, आपकी आवाज को क्या हो गया है मैम?
4: आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना, जुकाम नज़ला।
1: अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा कभी बर्थडे की पार्टी में कुछ ज्यादा ही दावत हो गई हो, इसीलिए तो नहीं हो गया।
4: नहीं, दावत अभी नहीं हुई, होगी।
1: अच्छा अच्छा, तो हम लोग इन्वाइटेड हैं? नहीं, हमने सोचा हम खुद ही अपनी दावत ले लेते हैं अपने हिस्से की बोल के।
3: नहीं, नहीं,
4: नहीं, नहीं, नहीं,
1: अच्छा अच्छा,
4: मैं अपनी दोनों बेटियों को जी, बहुत जी, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जिंदगी में। उनका दामन खुशियों से भरा रहे।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
4: सबा सबा से भी हमेशा खुश रहे।
1: बहुत बढ़िया। और आप
4: बेटी
3: का नाम भी गई, नाराज हो गया सिमरन खान।
1: अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैम का नाम तो बता दो, जो मैम बात कर रही है वो नाराज होगी तो दिक्कत हो जाएगी सर।
3: अच्छा, नाम बता दो।
4: मेरा नाम नेहा खान है।
1: अच्छा नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरा अपना ख्याल रखिए और एहतियात बरतिए, मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है आजकल। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी फैमिली से बातचीत करके, और हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं मैम।
3: थैंक यू,
1: नमस्कार सर। थैंक यू सर।
4: बेटी से बेटी का भी दामन खुशियों से भरा रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और मेरा दामन भी खुशियों से भरा रहे, मुझे भी दुआएं दे दो।
3: आप तो भाई भी थैंक यू,
4: हमेशा आपके साथ है।
1: बस बस यही प्यार चाहिए माशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, ध्यान रखिए अपना आप लोग। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ प्यारी सी फैमिली जुड़ी सबा और सेबी का आज बर्थडे है, तो मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलके बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो यार। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और ये बर्थडे की सेलिब्रेशन को हमारे साथ शामिल करने के लिए। अरे भैया बस करो, अरे हो गया सर, अरे अरे हाँ भैया मैंने सुन लिया हैप्पी बर्थडे। चलो एक काम करते हैं, अगर आज की तारीख में आपका भी बर्थडे होता है तो आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना प्ले कर रहा हूँ यहाँ से, स्पेशली सबान सभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने कंग्रेचुलेशन हमारे पूरे FM एंटायर फैमिली की ओर से, एक अच्छा सा गाना एंड उसके बाद लौट कर आते हैं। ये पार्टी वाला गाना सुन के पार्टी नहीं पूरी होगी, पार्टी तो देने से पार्टी पूरी होगी, है ना। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं, आई विल बी राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
3: कॉल 8826213131।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉर्पोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: चलो भैया, इसी बात के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं ठुमकूंगा नहीं, यहाँ से सीधा निकलूंगा, अब टाइम हो गया जाने का। ये कौन सा गाना था, यही आपको मुझे बताना था। मधुवंती बागची की आवाज, बहुत ही अच्छा गाना था ये, इसको आपने मेरे को बताना था और सही जवाब मुझे बता भी दिया है, और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका नाम डेफिनेटली मैं यहाँ पर शामिल करूंगा। लेकिन उससे पहले गाना क्या था सही वाला, जरा सुनो। एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर, और इसका सही जवाब दिया है मुझे सबसे पहले शीला सतनाकर जी ने, नंबर की 4 डिजिट है 2158। जोरदार तालियां, ये आपने सबसे पहले सही जवाब दिया मैम। एंड जस्ट उसके बाद मेरे पास वॉइस मैसेज पहुंच गया था यहाँ पर हमारी प्यारी सी दोस्त अलका वर्मा जी का। जी मैम, राधे राधे मैम,
1: आप चला रहे हैं
0: जी, जी
1: का राइट आंसर है ओई अम्मा, मैं तो टूट के बिखर गई ओई अम्मा।
0: मैम कमाल कर रहे हो आज तो भैया, सबने लिखा है ओई अम्मा टूट के बिखर गई। अरे भैया क्या हो गया ऐसा। ये हमारे साथ जुड़े हैं नासिर हुसैन साहब, गली नंबर 1 करूला मुरादाबाद से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, कल की चिंता छोड़िए, आज की मेहनत पर भरोसा रखिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की उम्मीद बन सकती है। हैव अ वंडरफुल डे, ब्यूटीफुल लाइन यार। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। मयंक भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सही जवाब के साथ जुड़े रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। हेलो जी, आपका शो अच्छा लग रहा है। सोनू जी थैंक यू सो मच, सेक्टर 10 बुद्धि विहार से मुझे मैसेज कर रहे हैं। हमारे पास दुर्गेश जी का मैसेज पहुंच रहा है आज की सुबह। प्रियंका शर्मा इंदौर से जुड़ी है, एंड साथ में मेरे पास मैसेज आया उमा शंकर जी का, रुद्रपुर से देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हैं। रिहाना रानी नांगल से जुड़ी है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो जी राजा कश्यप गुड मॉर्निंग कह रहे हैं मुझे। चमन लाल साहब पुतली घर रोड से जुड़े हैं, एंड बबलू सैनी साहब जुड़े हैं मुंबई महाराष्ट्र से, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े हमारे प्यारे लिसनर सहारनपुर से जून रोजी पलविलीस, लिखते हैं जीवन में अगर सुकून चाहते हो तो अपने आप के अलावा किसी से उम्मीद ना रखें, क्या बात है यार। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी, अच्छा लगा। नोनेश कुमार जी सही जवाब के साथ जुड़े थे, एंड ललिता कश्यप जी जुड़ी राइट आंसर के साथ नवीन नगर से। राधिका जी ने सही जवाब दिया था, एंड डॉक्टर सुरेश कुमार प्रेम नगर से सही जवाब पहुंचाते हैं। साथ ही साथ रणवीर सिंह जी जुड़े हैं मेरे साथ, लिखते हैं यू ना किसी के दिलों से खेलो, रिप्लाई नहीं देना तो मोबाइल बेच के रेडियो ले लो, वाह वाह कमाल कर दिया। लक्ष्मी जी सूर्य नगर से जुड़ी है सही जवाब के साथ। मोहन स्वरूप जी जुड़ चुके हैं आज की मॉर्निंग, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अभी के लिए मैं निकलता हूँ, कल फिर मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप अगली कंपनी एंजॉय कीजिए नेक्स्ट आरजे के साथ। हैव अ ग्रेट मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल अपना रखते रहिए। सर आज मेरा भी बर्थडे है, और वेरी गुड मॉर्निंग, आपने नाम नहीं लिखा है।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: To your husband and you also. So it's a song from Basha, dedicated to one and only A.R. Rahman.

हम्मा हम्मा ए हम्मा। और समय की बात करूं तो 10:19 हो चुके हैं श्रोताओं, और मॉर्निंग मसाला शुआर जरीना के साथ आप एंजॉय करेंगे आज, क्योंकि आज है

0: हुई होगी।
1: Global opportunities, Western Australia.
0: और श्रोताओं, अपने शो में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार आज का दिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज्यादा स्पेशल है मॉर्निंग मसाला शो में, जहां हर सुबह होती है ताजगी, मस्ती और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। गर्मी अपने सबाब पर है, इसीलिए घर से बाहर निकले तो पानी की बॉटल, छाता या कैप अपने साथ लेकर जाइए, बिल्कुल मत भूलिए ले जाना। और अपनी सेहत का भी भरपूर ध्यान रखिए। और हाँ, कल है संडे, और संडे यानी छुट्टी का दिन। यकीनन कई लोगों की घूमने की प्लानिंग चल रही होगी कि कहाँ घूमने जाना है हमें। तो अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, और सफर सुरक्षित रखिए, मौसम का ध्यान रखिए, और अपने परिवार के साथ हर पल को यादगार बनाइए। दोस्तों, एक दोस्तों के साथ और फैमिली वालों के साथ घूमने जाने का मज़ा अलग ही होता है। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज है 27 जून, और 27 जून को यानी कि हमारी एक रेडियो लिसनर है बहुत प्यारी, सबा खान जी, आज उनका बर्थडे है। तो रेडियो की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको हैप्पी वाला बर्थडे, और आपको जिंदगी में हर एक वो खुशी मिले जो आप चाहती हैं। भगवान आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाए रखे, और आप हमेशा अपनी जिंदगी में यूं ही रौक मचाती रहे। लड़कियां ना भाई देखिए स्ट्रांग होती है, और उनमें से एक है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत प्यारी है। इनकी स्माइल भाई साहब, अगर आपने इनकी स्माइल देख ली ना, तो मतलब आप बिना हंसे आपके चेहरे पर मुस्कान तो आएगी ही आएगी। तो हमारी तरफ से सबा खान जी को हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे, और एक बहुत ही शानदार गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं, और आप सभी के मैसेज हम जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल ये जो गाना है बहुत ही फैंटास्टिक है, क्योंकि देखिए सुबह से लेकर शाम तक आप रेडियो सुनते हैं, और ये गाना ना सुने तो ऐसा हो ही नहीं सकता है।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूँ तो 10:29 हो चुके हैं, यानी कि 10:29 हो चुके हैं श्रोताओं। और आप सभी को गुड वाला मॉर्निंग है जी। आई होप कि आप सभी अपने काम में व्यस्त हो गए होंगे, लेकिन भैया टेम्परेचर भी उतना ही हाई है, यानी कि अभी मतलब समय देखिए और टेम्परेचर देखिए, यानी कि अभी 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस टाइम का, यानी कि इतनी गर्मी, मतलब भगवान जी क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रहम कर लीजिए भगवान जी। चलिए फिलहाल हम मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं। कश्मीर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मिराज उद्दीन जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, आंखों में तुम ही हो। ओह, क्या बात है जी, आंखों में दिल जहान में बस तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। और अगले मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम, जय श्री राम जी। गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है। अरे अरे, बेकरार बिल्कुल मत होइए, आप सभी के जो गाने हैं वो हम आपको डेफिनेटली सुनाएंगे, बस आप रेडियो ऑन करके रखिए। और रेडियो की सुई ना इत्थे उत्थे बिल्कुल भी नहीं घुमाना जी, बस आपने ट्यूनिंग करके रखना है अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, जो आप सभी के लिए सुबह से लेकर शाम तक बातें अटपटे चटपटे देश दुनिया की जो खबरें हैं वो आप सभी तक पहुंचाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे आप कहीं भी सुन सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी। और रेडियो सिर्फ ये नहीं बोलता कि मुझे मेरे लिए टाइम निकालो, बल्कि ये आपके लिए टाइम निकाल लेते हैं। आप जहाँ जाओगे वहाँ रेडियो सुनोगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सफ़र में हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तभी आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं। नो, नेवर। आप हमारा रेडियो घर बैठे भी सुन सकते हैं। आपने प्ले स्टोर पर जाना है और डाउनलोड करना है, मतलब सर्च करना है आपने, FM मुरादाबाद 89.6 रेड कलर का लोगो दिखेगा, वो आप डाउनलोड करिए और रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि हमारी बातों के साथ साथ आपकी भी जो बातें हैं, आपकी भी जो फरमाइश है, वो भी यहाँ पर पूरा किया जाता है। तो चलिए फिलहाल गाना सुनेंगे हम, यानी कि आंखों में तुम ही तुम, अलका याग्निक जी की आवाज में और साथ ही साथ कुमार सानू जी की आवाज में, मतलब इन दोनों की आवाज क्या ही कहे, शब्द नहीं होते, यानी कि एक जादूगर से ये कम नहीं है जी। आंखों में तुम ही हो फ्रॉम मूवी से ये टाइटल है, सो इसी को सुनते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।

हाय हाय, ऐसे सजा मुझे मिले तो मैं हर रोज सजा लूं, क्योंकि आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना श्रोताओं, आए हाय, जिसे पढ़कर और जो आप सभी के गाने होते हैं और भी नेक्स्ट लेवल वाले होते हैं। तो भाई, रेडियो से प्यार करना, सजा मिले तो मिलती रहे, दिन रात रेडियो सुनते रहेंगे बस। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मुझे रेडियो सुनने का बहुत ज़्यादा क्रेज था, मैं बहुत रेडियो सुनती थी। कभी पापा का फ़ोन ले लेती थी, तो पहले के टाइम में घर में हर किसी घर में रेडियो होता था। अब बहुत रेयर है जो आपको घर में रेडियो मिलेंगे। अगर आपके पास रेडियो है तो आप जरूर मुझे पिक क्लिक करके जरूर भेजिए अपने रेडियो की। हम भी देखना चाहते हैं कि भैया अभी भी, यानी कि फोन, क्योंकि स्मार्टफोन है, हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है और वहीं पर रेडियो सुन लेते हैं, एप्लीकेशन है और रेडियो वहां पर सुन लेते हैं। लेकिन बहुत रेयरली ऐसे घर हैं जिनके पास रेडियो है। और पहले के टाइम में ना, जब रेडियो पर मैच सुना करते थे, कोई गाना सुना करते थे, तो उस टाइम ना हर किसी के हाथ में रेडियो, कोई बाहर निकलता भी ना तो रेडियो लेकर ही बाहर निकलता था। जिस दिन मैच हो भैया, हर किसी के हाथ में रेडियो होता था। तो मुझे क्रेज ना, सच बताऊं, वहीं से रेडियो सुनने को मिला। कि जो मेरे बड़े वाले भैया थे, वो मैच के बहुत ज्यादा दीवाने हैं, और वो जब भी, जिस दिन भी मैच चलता, नहीं भी चलता, वो सुबह सुबह रेडियो ऑन कर देते थे, बस सुनते रहो पूरा, मतलब घर में रौनक बनी रहती है रेडियो से, सच में। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में, तो देखिये रौनक क्यों नहीं होगी जी। समय की बात करूं तो 10:43 हो चुके, यानी कि 10:43 हो चुके श्रोताओं। और आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, कितना प्यारा मैसेज आता है आप सभी। हाँ जी, ये हमारे साथ कनेक्ट होते, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड आरजे, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजेस परवलीश जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, बहुत ही शानदार है, कोई सोने के दिल वाला, आय हाय। यानी कि ये माया फिल्म से गाना है ये, जो कि 1961 में ये मूवी रिलीज हुई थी। सच में फैंटास्टिक मूवी है ये, और गाना भी, यानी कि मोहम्मद रफीज की आवाज में, यानी कि कहते हैं ना सदा बहार जो गाने हैं, यानी कि सदा बहार गाने हैं। कभी अभी आप सुने, आपका मन बिल्कुल नहीं भरता है, बस मन करता है भाई सुनते जाओ सुनते जाओ। तो चलिए अगले मैसेज की तरफ बात करते हैं। अगला मैसेज आता है हमारे पास मुरादाबाद से, रणवीर सिंह कनेक्ट होते हैं। खुश रहने का मौका मिले, ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं, खुश रहने का मौका मिले तो सोचना मत, सोचते मत रहना, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती और खुशी बार बार नहीं मिलती। हेलो रीना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला बहुत ही खूबसूरत आपने लाइन लिखी है सर, सच में, कि जिंदगी आपको बार बार मौका नहीं देती है और जिंदगी इंतजार भी नहीं करती, इसीलिए आपको छोटी छोटी खुशी मिले ना तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और उस अपने आप को खुश रखिए, हर सिचुएशन में अपने आप को खुश रखिए। अगर आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हर चीज आप अच्छे से काम कर पाते हैं और आपका ऑरा भी पॉजिटिव रहता है। चलिए अगले मैसेज की बात करूं तो आर्जेरीना को गुड वाला मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये हमारे साथ विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं और ये हरियाणवी ट्रैक सुनना चाहते हैं, मैं 18 की तो 40 का, आय हाय क्या बात है। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, बबली अंजान, गीता कश्यप, रीना मैडम को हमारी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। चलिए जी, फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के पास रोता हो, और आप भी महसूस करते रहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। और कल है संडे, आपको ही पता है कि संडे को, यानी कि जो हमारा मॉर्निंग मसाला शो है वो नहीं आता है, तो इसीलिए आपको, और जिनका जिनका भी आज बर्थडे है उनको हमारी टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे। और आप मैसेज करिए, किसी का नाम लेना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं गाना, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके बिना हम कुछ नहीं है, हमारे बिना आप कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैसेज करिए। प्यार जब एक दूसरे के साथ बढ़ता है ना, तो वो बहुत ही शानदार होता है। तो चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 10:54 हो चुके श्रोताओं, और चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही प्यारा आपने हरियाणवी ट्रैक जो गाना सुना है। और देखिए जब भी हरियाणवी गाने जब चलते हैं ना तो भाई साहब जो डांस करना नहीं भी चाहता ना वो भी डांस करने लग जाता है। और आप गाड़ी में है तो वॉल्यूम बढ़ा के इस गाने को सुनिए, आए हाय मजा ही आ जाता है जी सच में। तो हमारे पास यानी कि मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, रीना जी आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। सिसवा दौरा से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं नई मुल्क अकरम जी, और इनके साथ कनेक्ट होते हैं इनके भाई नूर भाई जी, क्या बात। और ये गाना सुनना चाहते हैं, तू निकला छुपा रुस्तम, आय हाय तू निकला छुपा रुस्तम, ये वाला गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी हम ये गाना सुनवाएंगे। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है, रीना जी जय श्री राम, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, पानी में कंकर ना मार सावरिया, क्या बात है जी। और पानी से मुझे याद आया, देखिए गर्मी है, गर्मी में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और पक्षियों के लिए भी पानी ज़रूर रखिए। एक प्यासे कौवे वाली तो आपने कहानी सुनी होगी ना, जब कौवे को प्यास लगती है तो घड़े में पानी मतलब बहुत कम, मतलब इतना पानी था कि उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी वहां तक। फिर उसने क्या करा, कंकर उठा उठा कर उस घड़े के अंदर उसने डाला, और ज्यादा कंकर डालने की वजह से फिर पानी ऊपर आ गया, और तब उसने अपनी पानी पी और अपना प्यास बुझाया। तो इस दुनिया में ना हर इंसान अपने लिए हर काम करता है, लेकिन जो बेजुबान पक्षी है, पशु है, उनके लिए भी काम करिए। उनके लिए आप पानी रखिए, और उनके लिए पानी रखेंगे तो कहते ना हम हजार पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं, वो दान से भी बड़ा माना जाता है अगर आप प्यासे को पानी पिलाते हैं तो। और वंस अगेन एक बार और मैं श्रोता हूँ आप सभी से यही कहना चाहूँगी, देखिए मैं चीज़ें हर सैटरडे को आती हूँ तब भी मैं आप सभी को कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ, कृपया एक नंबर से सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मैसेज करें। आप दो दो तीन तीन बार मैसेज ना करें, क्योंकि अगर आप दो दो तीन तीन बार एक ही नंबर से मैसेज करेंगे और आपका मैसेज एक बार शामिल हो चुका है तो दूसरी बार आप उम्मीद मत कीजिए कि आपका मैसेज शामिल होएगा। एक बार मैसेज करेंगे डेफिनेटली आपके मैसेज शामिल होंगे, जो भी आप गाना सुनना चाहते बिल्कुल हम सुनवाएंगे, लेकिन उसी मैसेज से आप दो तीन दिन बार नाम चेंज करके मैसेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और भी श्रोताओं के मैसेज आते हैं वो भी शामिल करने होते हैं। सो मैसेज करते रहिए, प्यारा नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9837896896। चलिए फिलहाल ये वाला गाना एंजॉय करते हैं और इसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।
1: नागिन से बल खा के

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है कि निकला तो छुपा रुस्तम। और जब ये छुपा रुस्तम निकल जाते ना भैया, ये कब बड़ी शोर और शराबा कर देती आपको भी नहीं पता चलेगा। वेरी सरप्राइज आपके लिए लेकर आ जाएंगे। रीना के साथ कनेक्ट है, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। और समय की बात करूं तो मॉर्निंग मसाला शो में 6:11 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और सुन रहे हैं शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज 27 जून अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आज मनाया जाता है इंटरनेशनल PTSD अवेयरनेस, यानी कि एक ऐसी मानसिक स्थिति जो किसी दर्दनाक या डरावने हादसे के बाद हो सकती है। कई बार यानी कि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान एक बहुत बड़ी जंग से लड़ रहा होता है। वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन हमें उसको जज नहीं करना है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति कई बार बार डर महसूस करता है, बुरे सपने आते हैं, छोटी छोटी आवाज से घबरा जाता है या लोगों से दूर रहने लगा है, तो उसे जज मत कीजिए, उसे समझाइए, उसका साथ दीजिए। सही समय पर परिवार का प्यार और विशेषज्ञ की मदद और जिंदगी बदल सकती है। बहुत से ये होते हैं ना कि जो इंसान खुलकर नहीं बोल पाता है, वो छोटी छोटी आवाजों से चिड़चिड़ापन उसको महसूस होता है, वो बस ये चाहते हैं कि बस मैं अकेला रहूं, किसी से बात मत करूं। तो उस इंसान से आपको दूरियां नहीं बनानी है, बल्कि उसके पास रहना है, उसको समझाना है कि अगर आप समझाते हैं तो उसकी जिंदगी सवर जाएगी, अदरवाइज वो हमेशा ऐसे ही डरता रहेगा। तो याद रखिए, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी की फिजिकल हेल्थ। आज के दिन में आज आपने क्या करना है, एक वादा खुद से करना है, चुप्पी नहीं समझदारी चुनेंगे, ताने नहीं सहारा देंगे, क्योंकि कभी कभी किसी की सबसे बड़ी दावा सब आपके साथ और आपकी बातें होती हैं। क्योंकि जब आप किसी के साथ देते हैं ना, तो वो कोई मेडिसिन से कम नहीं होता है, आप उसको पुश कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, उसको समझा रहे हैं कि जिंदगी में हर चीज सहन करिए और उसकी मेंटल हेल्थ जो भी है उस पर उसे बात करिए, उसे दूर मत होइए। बस मैं ये कहना चाहूंगी। और आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ गए श्रोताओं, तो चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारे पास मैसेज आता है, हाय आरजे, गुड मॉर्निंग। मैं ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं कार्तिक गुप्ता लाइन पर मुरादाबाद से, और आज गर्मी बहुत बहुत बहुत तेज है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और केयरिंग फॉर योर एक, यानी कि ये हर कोई अपना केयर करिए, केयर करेंगे तभी आप ठीक रह पाएंगे, क्योंकि 11:09 हुए हैं और टेम्परेचर 37°C है श्रोताओं। तो बाहर जा रहे हैं तो सोच समझ कर बाहर जाइए, अपने साथ पानी की बॉटल साथ रखिए, कॉटन का जो पन्ना होता है, दुपट्टा होता है, उसको आप अपने फेस को कवर करके जाइए अगर आप बाहर जा रहे हैं घर से। जरूरत हो तभी आप घर से बाहर जाइए, अदरवाइज घर से बाहर आप बिल्कुल मत जाइए, घर पर ही रहिए, ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी जाइए। और जो बाहर काम कर रहे हैं उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे, काम ज़रूरी है लेकिन सेहत भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत सही है तो आप आने वाले काम, हर काम कर सकते हैं अच्छे से। और ये गाना सुनना चाहते हैं, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जी बिल्कुल जिया, हाँ ये धड़क धड़क वाला गाना है, सच बताओ बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट वाला गाना है। तो इस गाने को तो डेफिनेटली सुनेंगे और वॉल्यूम बढ़ा के सुनेंगे, ठीक है जी। चलिए फिलहाल और अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास मैसेज आता है, अजीत कसाना जी, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली, जिला मुरादाबाद से कनेक्ट होते। कितना प्यारा नाम है लदावली, है ना। सो ये बहुत प्यारी लाइनें भी लिखते हैं। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकते हैं। मुस्कुराहट चाहे किसी की भी हो,
वो मनमोहक, प्यारी और बहुत ही आकर्षक होती है। हंसी एक ऐसी चीज है जो बताती है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। किसी को खुशी या हंसी देने से बेहतर है कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल जी सही कहा आपने। जिंदगी में हर दम हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को इस अंदाज से जियो कि आपको देखकर हर कोई कहे, वाह देखो क्या जिंदगी है, क्या खूबसूरत जिंदगी ये जी रहा है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने लाइनें लिखी हैं। जिंदगी में आप मुस्कुराते रहिए, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराते रहिए, ताकि दूसरा इंसान भी आपको देखे तो यही बोले, यार जब ये मुस्कुरा सकता है, इसकी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं मुस्कुरा सकता हूँ। क्योंकि देखिए, जिंदगी आपको हर रोज मौका देती है अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। तो इस जिंदगी को, इस सफर को एंजॉय करिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। चलिए, फिलहाल आप सभी के मैसेज जरूर शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं। ओके, कहीं नहीं जाना है, बस आरजे रीना के साथ आपने कनेक्ट रहना है। ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। क्योंकि देखिए, जिंदगी में ना गुनगुनाना भी बहुत जरूरी है श्रोताओं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। सच बताओ, ये गाना मेरा फेवरेट वाला गाना है, फैंटास्टिक गाना। मतलब राहत अली जी की आवाज में खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। राहत फतेह अली जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना, बड़ा ही माइंड ब्लोइंग गाना। श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 11:22 हो चुके हैं। समय की बात करूँ तो 11:22 और आप अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में।
1: पड़ गया है।
0: जब सच बताओ, जब कुछ आपको अंदर से खुशी मिलती है ना, तो आपको खुद नहीं पता रहता कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। मतलब बेदास बेधड़क होकर बोलते हो। और जब मैं अपनी पसंद के कुछ गाने सुन लेती हूँ तो सच बताऊँ, मैं तो उसके अंदर ही खो जाती हूँ, गुम हो जाती हूँ। बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। और देखिए, 1 जुलाई से ना बहुत से चीज़ें हैं जो चेंजेस होने वाले हैं, महंगाई बढ़ने वाले हैं, कहीं महंगाई कम होने वाले हैं। श्रोताओं, तो देखिए, महंगाई तो बढ़ती रहती है, बस ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी का पहिया यूं ही चलता ही रहेगा। अगले मैसेज की बात करूँ तो अगले मैसेज आते हैं हमारे पास बेबी राधिका, यानी कि 16 वर्ष की एज है, 16 साल की है ये। और रीना मैम को मेरी बहुत प्यारी सी हैप्पी वाला मॉर्निंग, आपको भी जी गुड मॉर्निंग। और ये गाना सुनना चाहते हैं बच्चे मन के सच्चे, क्या बात है जी, ये गाना सुनना चाहते हैं हम, डेफिनेटली आपको ये गाना सुनवाएंगे। और अगले मैसेज की बात करूं तो मैंने आप सभी से यही पूछा था कि अगर आपके घर में रेडियो है तो आप मुझे उसका पिक क्लिक करके भेज सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट जमाना है, डिजिटल जमाना है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। तो अब रेडियो बहुत रेयर घर होंगे जिनके घर पर रेडियो होगा, अदरवाइज वो फोन से ही रेडियो सुनते हैं। तो ये हमारे पास एक प्यारा सा फोटो भी भेजते हैं रेडियो की, और ये हमारा रेडियो ट्यूनिंग करके रखते हैं, क्या बात है जी। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रानी नांगल से, रिहाना जी कनेक्ट होती है। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये गाना सुनना चाहती है प्यार तू दिल तू जान तू हर चीज बस तू ही तू तुझ में ही दिखता है हर चीज। और ये आपका रेडियो है ना, जो आपकी पसंद के गाने, आपकी प्यारे प्यारे बातें, जो प्यारी प्यारी आपकी बातें आती ना भाई साहब, सच बताऊं, मैसेज जो आप करते हैं ना, और जो आपके गाने होते हैं, कुछ गाने तो ऐसे होते हैं जिनको मैं पहली बार सुन रही होती हूँ, सच बताऊं। मतलब मैं रेडियो में काम करती हूँ लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको मैं पहली बार सुनती हूँ सच में। तो चलिए ये गाना सुनते हैं, लेकिन गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट, विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग मसाला शो एंजॉय कर रहे हैं आज जरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 11:34 हो चुके हैं श्रोताओं, और बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है, प्यार तू दिल तू यही है आरजू। अलका याग्निक और विनोद राठौर जी की आवाज में ये आपने गाना एंजॉय किया है। फ्रॉम बिच्छू मूवी से, जो कि ये रिलीज हुई थी 2000 में। चलिए, आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारे पास अब टेक्स्ट मैसेज भी शामिल करना बहुत जरूरी है। ये हमारे साथ संजू जी कनेक्ट होती हैं। हाय दी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये गाना सुनना चाहती हैं, जाट जाटनी वाला। ओके,

और अगले मैसेज की बात करूं तो रीना दी नमस्कार, ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जिला संभल यूपी से ब्रजेश मिस्त्री जी, और अपने साथ साथ इन्होंने अपने मित्रों के भी नाम शामिल किए हैं, और इनका कहना है कि एफएम मुरादाबाद हम सुनते सुनते काम कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, गर्मी बहुत ज्यादा है। सो ये गाना सुनना चाहते हैं, जेठ की दोपहरी में पाव जले है, डेफिनेटली ये हम आपको गाना जरूर सुनवाएंगे। नलीम अली जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं लाइन पर मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग रीना मैम, गुड मॉर्निंग सर, और ये गाना सुनना चाहते हैं दिल के आरजू। ओके जी, चलिए गाना हम सुनवाते हैं आप सभी को, और आप भी आप चाहते हैं, और मैंने आप सभी से एक बहुत ही शानदार पूछा है जो कि मैसेज भी आ गए हैं कि हमारे घर में रेडियो है मैडम जी, ये दीपक जी कनेक्ट होते हैं लाइन पर से, और कह रहे जो आप गाने सुना रही हो और आपकी जो बातें हैं बड़ी शानदार, बहुत ही खूबसूरत लगती है, और जो आप रात का शो करती हो ना, सच में उस टाइम आपकी आवाज़ अलग ही चेंज हो जाती है, मतलब इतना खूबसूरत ऑरा हो ना हमारा जो यहाँ का पॉजिटिव, और बहुत ही शानदार माहौल हो जाता है जब आप रात का शो करती होती जी। वो तो मुझे कभी कभी मौका मिलता है तो मैं आ जाती हूँ शो करने के लिए। चलिए जी, फिलहाल गाना इंजॉय करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं, जाट जाटनी वाला गाना इंजॉय करते हैं।

0: चले चले चले बाजो आ जाओ बाजो।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
9: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है जी। मॉर्निंग मसाला शो में आज रीना के साथ अब कनेक्टेड समय की बात करूँ तो 11:47 हो चुके श्रोताओं, और आप सभी से यही कहना चाहेंगे। देखिए, रीना का अब जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले जो आप सभी के मैसेज है वो डेफिनेटली शामिल करेगी। गीता कश्यप जी कनेक्ट होती है। रीना मैडम गुड मॉर्निंग, और ये गाना सुनना चाहती है, ये मौसम का जादू है मितवा। क्या बात है जी, ये मौसम का जादू है बिल्कुल जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये पूनम जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि कल संडे है, और आपने पूछा भी था कि संडे की प्लानिंग क्या रहती है, तो सच बताऊँ मेरा तो ऐसा कुछ खास प्लानिंग नहीं रहता है, लेकिन संडे को स्पेशल ज़रूर होता है हमारे घर पर। सब बच्चे एक साथ जो बाहर रहते हैं वो भी घर पर आ जाते हैं, और उस दिन मेरा सारा दिन किचन में ही जाता है, बच्चों के लिए कुछ अलग अलग बनाना, और जो कि मुझे बेहद बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो मैं बच्चों के लिए खाना ज़रूर बनाती हूँ। और आप एक गाना प्ले कर देना अपनी तरफ से। ओके जी, हम मैं अपनी तरफ से गाना ज़रूर आपके लिए प्ले करूँगी, लेकिन उससे पहले यानी कि गीता कश्यप जी के रिक्वेस्ट पर ये गाना सुनते हैं, ये मौसम का जादू है मितवा।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है आर्जेरीना के साथ। आप कनेक्ट हैं और समय की बात करूँ तो 11:56 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सभी के मैसेज शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक बहुत ही प्यारी अपडेट जो मेरे पास है, मैंने सोचा कि चलिए आप सभी तक सुनाना और आप सभी तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर अखबारों का इंतज़ार नहीं करते हैं। रेडियो पर जो बातें होती है वो बड़ी शानदार लगती है, और हर कोई मतलब अखबार पढ़ भी नहीं सकता ना, तो इसीलिए रेडियो पर आप सुनते रहिए आपके फेवरेट वाले प्यारे प्यारे मैसेज और बातें, जो देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो इसी बीच एक बहुत ही शानदार वाला अपडेट, जो कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव, बहुत ही प्यारा कदम उठाया गया है। यानी कि देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे जवान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। अब पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 वीरों सैनिकों के नाम आखिरकार देश के यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज करा दिया गया है। इनके जो नाम है यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल में इनका नाम दर्ज हो चुका है। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि साहस, देशभक्ति और बलिदान की पहचान है। आने वाली पीढ़ियां भी इन वीरों की जो त्याग है उनको याद करेगी और उनसे प्रेरणा लेंगी, और हम सब मिलकर अपने इन अमर वीर सपूतों की संधान को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यानी कि जो शहीद हो जाते हैं वो हमारे दिलों में हमेशा हमेशा रहते हैं, और उनके लिए शत शत नमन, जिनकी वजह से हम अपने घरों में चैन की सांस ले पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, और वो हमारे लिए हर एक परिस्थिति में आगे खड़े रहते हैं। ना कभी ये सोचते हैं कि हमारे अपनों का क्या होएगा, बस मातृभूमि के लिए वो खड़े रहते हैं और अपनी देश की रक्षा करते रहते हैं। तो मेरी तरफ से एक गाना है, देशभक्ति का ही गाना है ये, आप सभी के लिए और उन शहीद वीरों के लिए ये डेडिकेट रहेगा ये गाना। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त श्रोताओं, हम आपको मिलेंगे दोपहर में यानी कि फरमाइश शो में। जो भी आपके फरमाइश वाले गाने होंगे उनको प्ले करेंगे हम, तो कॉल करना बिल्कुल ना भूले। यानी कि टाइम है 3 बजे और नंबर है 9823789686। बाय बाय, टेक केयर। गर्मी है, पानी पीते रहिए। टेम्परेचर की बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस टाइम।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति संग खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत है? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
0: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
1: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
0: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसी

0: ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है।
0: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
1: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
0: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
1: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
0: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
0: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हो, CHCs हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
1: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
0: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद

0: लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का अब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है।
1: अच्छा, हमें ये भी बताया डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
0: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो दो केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: मैं इसमें दो बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
1: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
0: देखिए, एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करें?
0: देखिए ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे, शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है तो आप इसे घबराएं नहीं, ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं, ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कोई दवाई किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर एनीमिया हो, मॉडरेट एनीमिया हो, तो जरूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर CSCPSC पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या ANMs हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किशोरियों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। 10 से 19 साल की उम्र में ना सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं, ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सेहतिया भैया जी हैं।
7: नमस्कार खुशी जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलट सकता है, इसलिए सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
6: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे पूर्वावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
7: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
6: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
7: देखो जी, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है, ये समझना ही असली समझदारी है।
6: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे कैसे क्या करना चाहिए?
7: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए, अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
6: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती है, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन, ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधाएं कितनी जरूरी हैं?
7: बिल्कुल आरजे खुशी, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है, लड़कों से कहा जाता है कि अब घलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे, इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
6: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ऐसे करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
7: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। फिर लड़के की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है।
6: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो डर की वजह से चोरी चुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है।
7: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
6: ठीक कहा आपने। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।
7: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत ही नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कॉन्डम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
6: सेहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
7: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है रो नहीं सकता, तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है तो क्या होगा, सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरते रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो वो कमजोर नहीं है, एक समझदारी वाला काम है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
6: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
7: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते होंगे इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसी समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई न कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
6: बिल्कुल सही कहा आपने। किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
7: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगे तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो तो वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत पर भी खतरा पड़ सकता है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कॉन्डम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होता है।
6: लेकिन एक बात बताइए सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया वे गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
7: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं होता है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
6: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ही पहल हुई है?
7: बिल्कुल जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
6: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
7: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्याएं खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गाँव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों

0: आपको सेहत के बारे में बता सके।
1: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा क्या है?
0: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 2 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाते थे, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोर के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह सभी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
1: सिहतिया जी, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
0: देखिए जी, एक और बढ़िया योजना है अर्श, इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
1: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सिहतिया जी।
0: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुराने शुरू कर देती थीं, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKS की योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई, उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी है। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गयी। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
1: बिल्कुल सिहतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है।
0: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आ जाते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई और वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
1: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
0: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये है कि पास के गाँव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे उसने, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। बोली अब ज्यादा पढ़ाई का फायदा नहीं है, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल के पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनी गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग दे रही है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करती है।
1: अरे वाह सिहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिल जाए तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
0: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा सिहतिया जी। दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुलेगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई में। तब तक के लिए सुनते रहिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजना का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी सेहत के लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना। तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
5: कॉल 8826213131।
6: और बहुत ही अच्छा लगता है मैम। अच्छा, एक विमेंस के लिए सही खान पान, सही न्यूट्रिशन का होना कितना जरूरी है? अगर मैं खुद से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक फीमेल के लिए उसकी उसका डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लाइफस्टाइल को बदलने में?
7: सी यार, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये अभी हो रही है, ठीक है। पुराने जमाने में आप अपनी दादी नानी से बात करो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो बोलते थे, मतलब माई दादी यूज टू से, कि हमें तो हमारे हस्बैंड छूते थे और बच्चे हो जाते थे। पता नहीं आजकल की लेडीज का क्या हाल होने लगा है, ये तो इनफर्टिलिटी ही ट्रीट कराती रहती है, IVF करा रही है। प्रॉब्लम क्या थी? सी प्रॉब्लम थी, उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, प्लस वो इतने एक्सपोज नहीं थे केमिकल्स के लिए, बैलेंस डाइट ले रहे थे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज इन अ सेंस, हमारे सारे काम जो होते थे मैनुअल होते थे, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेते थे। अब जब से ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक आ गया है, बच्चे रात भर 2-2 बजे तक ही मोबाइल ही देखते रहते हैं। दिस इज अ रेडिएशन, है ना? आप रेडिएशन एक्सपोज कर रहे हो, प्लस उनका खान पान बदल गया है, हर चीज स्विगी हो गई है, हर चीज स्विगी हो गई है, तो आप घर बैठे ही सब कुछ मंगा रहे हो, ठीक है। बाहर का खाना ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आएगा, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, उसके बाद जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है,
6: करेक्ट,
7: ठीक है। हाँ, सब चीज ऑनलाइन हो गई है, सब चीज कैब्स पे आने लगी है, तो इवन पार्क में भी यू विल गेट अ वेरी लेस गैदरिंग,
6: करेक्ट।
7: तो दिस ऑल लीड टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये PCOS, PMS कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इट इज ओनली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कि आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा। आप कार लेते हो, ठीक है, कार लेते हो तो कार की सर्विस कराना जरूरी है, वंस इन अ ईयर उसकी सर्विस होना जरूरी है। आप नहीं कराओगे तो 2-3 साल बाद उसका माइलेज जीरो है, ऐसी आपकी बॉडी का हाल है। अगर आप उसको नहीं सर्विस करेंगे, उसको नहीं नेचुरल चीजें देंगे, तो ऑब्वियसली ये बॉडी नहीं रिएक्ट करेंगे। एंड आई एम गेटिंग PCOD के पेशेंट, इतनी जिद्दी PCOD कि हम सब कुछ कर चुके हैं, बहुत सारे साइकल्स ऑफ हार्मोन दे चुके हैं, बट बेसलाइन बॉडी आने को तैयार।
6: बिल्कुल मैम, यू नो मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप अभी बता रहे हो ना, ये चीजें मुझे लगता है हमें बताने की जरूरत ही नहीं वैसे। लोगों को खुद ही इन चीजों को समझना चाहिए, बट आजकल का लाइफस्टाइल अलग ही हो गया है ना, बात ये भी है। अच्छा मैम, एक चीज और है, आजकल का स्ट्रेस, सोशल मीडिया की तो हमने बात ही कर ली, आजकल का लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस और हमारा खान पान, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रीजन कहीं ना कहीं बनी रहा है।
7: Exactly.
6: जैसे आपने बताया कि लोगों को आजकल हर चीज ऑनलाइन करानी है, शॉपिंग ऑनलाइन करनी है, फूड ऑनलाइन करना है, हर चीज की फैसिलिटी उन्हें घर बैठे ही चाहिए।
7: Exactly.
6: तो इन सब चीजों की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना। बिल्कुल, आपने ये चीज पे अभी जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज, हमारा भी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी को प्लीज अब कीजिए, अगर जितना हो सकता है ना आप प्रैक्टिकली बाहर निकलिए। छोटी छोटी चीजें जो हम अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार शाम को बाजार निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, आज ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ये सब चीजें जो हमें उस तरफ लेके जा रही है जिस तरफ हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, आज हम जहाँ पहुँच गए हैं कहीं ना कहीं।
7: और तो वर्स ही होंगी,
6: एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं
7: इंटरवेंट, राइट,
6: करेक्ट, करेक्ट। अच्छा मैम, जो लोग अभी मैं उनकी अगर मैं बात करूँ, उन महिलाओं की जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, जो प्रेगनेंसी से पहले कपल्स को किन किन बातों का और यू नो ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से हेल्थ चेकअप है जो उनको डेफिनेटली दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए?
7: 5 मोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। एक, प्री प्रेगनेंसी आप अपना चेकअप कराएं, ठीक है। दूसरी बात, फोलिक एसिड स्टार्ट करें। जब भी आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड है उसके कम से कम 3 महीने पहले हम ये कहते हैं कि आप फोलिक एसिड काम करना शुरू करें। तीसरी चीज, थायराइड, शुगर, ये सब आप बिल टेस्ट कराएं। चौथी चीज, हेल्दी वेट मेंटेन करें। और पांचवी चीज, यदि आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल इनटेक है तो ये बिल्कुल बंद हो।
6: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैम, सोशल मीडिया का थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, स्पेशली लेडीज बहुत ज्यादा ये चीज को मैंने देखा फॉलो करती है। तो मतलब कोई भी आ गया, किसी ने भी आके ज्ञान दे दिया, आप ये चीज करो, आप ये रेमेडी करो, ये करो, और लोग वो करते भी हैं।
7: Exactly.
6: तो क्या ये विमेंस को करना चाहिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो घर में महिला है, उनको ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया देख के फॉलो करना चाहिए?
7: नहीं, एक्चुअली इससे ही बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, कल मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको कि सीजर की हिस्ट्री थी, सीजर डिसऑर्डर है, दौरे पड़ते थे,
6: ठीक है, ठीक है,
7: पूरी टर्म प्रेगनेंसी थी, बट उसने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, कोई इंस्टाग्राम की रील देखी, उसमें कोई दवाई जो थी वो खा रही थी। अब वो ओपीडी मैं एक रूटीन चेकअप के लिए आई थी और रूटीन चेकअप के लिए बाहर बैठी थी और उतने में उसको सीजर्स आने लगे एंड शी स्टार्टेड ड्रूलिंग फ्रॉम माउथ, ब्लड आने लगा और वो आने लगा. तो उस वक्त और प्लस बच्चे की धड़कन जाने लगी, तो हमें एकदम इंटरवीन करके उसको सिजेरियन में लैंड करना पड़ा. हालांकि वो सेकंड ग्रेविडा थी, तो आई वुड नेवर गो कि दूसरा बच्चा पहला बच्चा नॉर्मल है, तो आई वुड हैव ट्राइड कि हमें नॉर्मल कराऊंगी. बट मेरे सामने उस वक्त इट वॉज एन इमरजेंसी, डाइंग इमरजेंसी कि मुझे बच्चा और माँ दोनों बचाने थे. तो उसके लिए हमने जल्दी से ओटी शिफ्ट किया गया, पेशेंट इंट्यूबेट हुई, दो दिन आईसीयू में रही. तो दिस कुड ऑल बी प्रिवेंटेड कि अगर आप एक न्यूरो फिजिशियन का रेफरेंस कर लेते, टाइमली हम इंटरवीन करते, प्लान करके डिलीवरी कराते. सो दिस इज ऑल डिवास्टेटिंग इफेक्ट. अब उसमें सोशल मीडिया में हर कोई डॉक्टर, आप पहले उसकी डिग्री तो एटलीस्ट टैली करें.
6: करेक्ट.
7: कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट लिख रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट इज अ सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट. प्लस सोशल मीडिया पे कभी दवाइयां फॉलो नहीं करनी चाहिए.
6: करेक्ट.
7: कैन फॉलो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या फिर सोशल मीडिया इज ओनली, आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. आई ओनली मेक कि ये पेशेंट के सीरियसनेस है, इसमें डॉक्टर को दिखाएं. इट इज नॉट लाइक आप दवाई खाने लगोगे उस सोशल मीडिया से ना.
6: करेक्ट.
7: सर्टिफाइड डॉक्टर्स की एडवाइस ले, क्रॉस चेक करे, डाउट्स हो तो डॉक्टर से पूछे. जितनी भी बात है आप 10 मिनट 15 मिनट आप उस ओपीडी में बैठे हैं तो यू कैन आस्क एवरीथिंग यू वांट. तो उससे ये जो अचानक से लास्ट में डायग्नोसिस बनती है ये नहीं बनेगी. तो सोशल मीडिया का प्लीज फायदा उठाएं. इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल. आई अपडेट कि थोड़ा सा पेशेंट को ये लगना चाहिए, पेशेंट फील कि हाँ भैया मैम घर का पार्ट है, कल थोड़ा सा फनी रील्स, थोड़ा सा ये. सो इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल, नॉट कि हम उसपे ट्रीटमेंट. हमने 10 MBBS, PG, सो इट्स ऑल कंस्टिट्यूट 10 साल की मेहनत. हाउ कैन आई इंस्टाग्राम रील ऑफ 1 मिनट 30 सेकंड रिप्लेस दैट नॉलेज. एंड अब सुपर स्पेशलिटी हो रही है, पीपल आर डूइंग MCH. तो आप ये सोचो कि 13-14 साल की पढ़ाई इंस्टाग्राम की रील से अगर हो जाती है. आई हैव सीन पीपल इनफर्टिलिटी वाले, वो किसी ने बता दिया लिट्रोस से है, लिट्रोस खा रही है, 5 महीने के बाद एक मोटी सिस्ट है, अब वो ओवरी भी खराब हो गई है और हमें सिस्ट भी निकालनी पड़ रही है. वी हैव टू ऑपरेट हर, बिकॉज हर चीज के साइड इफेक्ट है. पीपल आर ओनली टेलिंग इफेक्ट, देयर नॉट टेलिंग साइड इफेक्ट. तो प्लीज वाइसली चूज करें, अपने डॉक्टर से बात करें. एक कंसल्टेशन महीने में एक बार का कंसल्टेशन होता है. जो भी है आप अपने पेपर पे लिस्ट बना लो. आई ऑल्सो टेल माई पेशेंट की टू डू लिस्ट आप अपने पेपर पे लेके आओ, जितने क्वेश्चन से मुझसे पूछो कि मैम ये करना है या नहीं करना.
6: नहीं करना.
7: और प्लीज सर्टिफाइड डॉक्टर्स को ही फॉलो करें. यू विल गेट द इंस्टाग्राम प्रोफाइल कि कौन सर्टिफाइड है कौन नॉन सर्टिफाइड.
6: एब्सोल्युटली. और सोशल मीडिया पे कुछ रील्स और व्यूज के लिए, कुछ लाइक के लिए लोग कुछ भी डाल रहे हैं और हम कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट अ गुड. दूसरी बात, हर मेडिसिन का हर एक यू नो कह सकते हैं जो इंसान है उसके साथ कनेक्शन नहीं बन सकता है.
7: Exactly.
6: मैम हर मेडिसिन हर इंसान के लिए नहीं बनी होती है.
7: बी इंड्यूस्ड विद लिट्रोसोल, बी इंड्यूस्ड विद क्लोमिफेन, बी इंड्यूस्ड विद HMG इंजेक्शन.
6: करेक्ट.
7: वी डिसाइड.
6: एब्सोल्युटली.
7: और शुगर के लिए 1000 दवाएं मार्केट में. वी डिसाइड
6: 100%.
7: एंड दैट इज ऑल्सो की वी, ऐसा नहीं है कि हमने एक दवाई लिख दी तो वही 100% दवाई होगी. नो, वी हैव टू चेंज. अगले पेशेंट आया उसने कुछ कंप्लेन करी तो वी हैव टू चेंज दैट दवाई. अगर इतने से ही ChatGPT और ये सभी बता देते तो फिर कोई फायदा ही नहीं था.
6: Important.
7: एक पेशेंट यूट्रस, वो बेबी अनोमलस बेबी, पूरा अनोमलस जिसकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, उसने ChatGPT पे डाला. ठीक है, वो मेरे पास 26 वीक पे आया. उसका जो लेवल 2 स्कैन था 20-22 हफ्ते का, उस आगे एनोमली जो कि सर्वाइवल मोड पे नहीं था वो बच्चा, तो हमें उसका अबॉर्शन कराना चाहिए था. बट उन्होंने ChatGPT पे डाला. ChatGPT सेड कि कुछ नहीं है कि कंटिन्यू करने का. उन्होंने कंटिन्यू किया. शी केम एट 26 वीक. अल्टीमेटली बेबी की तो प्रोग्नोसिस नहीं थी. वी हैड टू मतलब अबॉर्ट दैट बेबी. बट अगर वो 20-22 हफ्ते पे होता तो मेडिको लीगल चीजें भी कम होती.
6: Absolutely.
7: और प्लस इजी होता. अब जितना बेबी बढ़ जाएगा, प्रोग्नोसिस तो उसकी है ही नहीं. अगर मान लीजिए आप टर्म तक भी पहुंचा दीजिए, उसको पूरे टाइम पे डिलीवर कराइए, आप बच्चा आपके हाथ ही नहीं लगना है. तो फिर ऐसी चीजें ChatGPT से नहीं पूछी जाती, ऐसी चीजें डॉक्टर से पूछी जाती हैं.
6: करेक्ट. तो कहीं ना कहीं हमारा इसका मोटिव भी यही है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं या आपके घर में कोई चीज कर रहा है तो प्लीज ये मत कीजिए, डोंट डू दिस. एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बहुत जरूरी है मैम. क्योंकि जब तक आप सही लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक आपको सही एडवाइस नहीं मिलेगी.
7: सी, और एक गायनी का ना ऐसा नहीं होता कि आप गए आपको गॉलब्लैडर स्टोन निकलवाना है, काम खत्म हो गया. गायनी से आपको 9 महीने का एक ताल्लुकात बनाना पड़ता है, ताकि जब आपकी डिलीवरी होगी तो शी इज योर होल सोल, क्योंकि उस चैम्बर में वही है. अगर आप फील कनेक्टेड नहीं करते हैं, लाइक आई वॉज देयर इन एन हॉस्पिटल, माई हस्बैंड गॉट शिफ्टेड टू अनदर प्लेस, आई डिडंट चेंज द प्लेस, आई लेट हिम गो कि तुम जाओ, आई विल नॉट, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रही थी. आई कुड फील दैट गायनी एज माई ओन. तो मैं भी यही चाहती हूँ कि पेशेंट्स आप जिसको भी चूज करें, उसको रिलीजियसली फॉलो करें और उससे डिलीवरी के टाइम पे कनेक्टेड रहें, सो दैट देयर इज अ स्मूथ डिलीवरी इन पोस्टपार्टम।
6: एब्सोल्युटली। और आजकल तो सोशल मीडिया है अच्छी चीजों के लिए, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो देंगे बैक टू बैक। बट हमारी भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इन सब पे प्लीज अपनी हेल्थ को लेकर तो बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। मैम थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने इतना टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारे लिसनर्स को तमाम इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर जितने भी लोग ये सुन रहे हैं सभी को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला होगा और जानने को मिला होगा। आई एम थैंक्सफुल टू यू, इतना टाइम आपने निकाला, बिकॉज यू हैव ऑल्सो वेरी बिजी, शी इज नॉट फ्री भाई, जब भी जाओ मैम बिजी इतना ऑक्यूपाइड रहता है आपका। बट अभी भी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कल का बना, फिर उसके बाद आज का बना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैम, आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत बिजी रहता है आई नो, एंड फिर भी आप इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे आए, आपके लिए दिल से थैंक यू मेरी ओर से और एफएम मुरादाबाद की ओर से भी। जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या संदेश आप देंगी, जो लेडीज या जो जेंट्स आपको सुन रहे हैं?
7: यार आई वुड से भैया मैं लेडीज की डॉक्टर हूँ, तो एडवाइस तो सिर्फ लेडीज को ही देनी है,
6: ठीक है,
7: ठीक है, लेकिन जेंट्स को भी एक एडवाइस देनी है कि देखो लेडीज आप इग्नोर मत करो अपने आप को, अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो, सिम्टम देगी वो सिग्नल देगी और उसको आप एक्नॉलेज करो और उसके लिए ट्रीटमेंट करो। और जेंट्स को सिर्फ यही संदेश है कि अगर आपसे लेडीज कुछ कह रही है तो डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड, ये नहीं कि वो आपका सब्स्टिट्यूट है, गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों चलेंगे तब गाड़ी अच्छी चलेगी। सो अगर वो कुछ कह रही है तो प्लीज, बहुत सारी फैमिलीज मैंने ऐसा देखा जहां मेल्स ही होते हैं उसे, अरे अरे अरे ठीक है सबको ही होता है, क्या हो गया ब्लीडिंग ही तो हो रही है, सबको होती है, मेरी मम्मी को भी होती थी। नो प्लीज, जस्ट टेक केयर ऑफ हर, वो आपके घर की अन्नपूर्णा है, उसके बिना घर नहीं है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपसे वो कुछ कह रही है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, उसको भी लगना चाहिए शी इज इम्पोर्टेंट, तो हर किसी का ध्यान वो रख पाएगी, उसको और भी अच्छा लगेगा। आई हैव सीन पेशेंट्स विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई हैव सीन लेडीज जिनकी शादियां हो गई होती है इनफर्टिलिटी विद डिप्रेशन। तो मेल्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि कोई भी प्रॉब्लम उसकी अलग नहीं है, यू बोथ आर गाड़ी के दो पहिए, तो दोनों को एक साथ ही चलना होगा, उसको समझना होगा और उसकी बात आपको सुननी होगी। एंड फीमेल्स प्लीज डोंट हेजिटेट, सामने आइए और अपनी प्रॉब्लम को प्लीज बताइए।
6: थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल मैसेज, सच अमेजिंग मैसेज, एंड इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए एंड आपने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करी, एंड आई एम श्योर आप आगे भी आते रहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए।
7: या
6: सो गाइज प्लीज आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम था हेलो डॉक्टर, और आज एशियन हॉस्पिटल से डॉक्टर राशिका गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में थे, मैम से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा ये प्रोग्राम, आपको कैसे लगी ये कॉन्वर्सेशन, डू शेयर योर फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम पे, आप आके मुझे शेयर कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, और हमारा एफएम का ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको मिल जाएगा, सो प्लीज आइए फॉलो कीजिए। अच्छा मैम आपका इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया पे इतनी देर से बातें कर रही हैं, सो प्लीज डू शेयर योर सोशल मीडिया।
7: आई डोंट हैव मेनी फॉलोअर्स, ऐसा नहीं है, बट आई फील रिलैक्स्ड कि मेरे दिन में जो एक्टिविटी हुई है, आई लाइक बी शेयरिंग विद पीपल, नॉट टू मिसगाइड एनीबॉडी, नॉट टू मिसगाइड एनीबॉडी, बट ये दिखाने के लिए कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उस 15 मिनट में आप मुझसे नहीं पूछ पाते हो, लाइक कल ही मुझसे कोई पेशेंट पूछ रहा था कि मैम आम खाना होता है प्रेगनेंसी में, सो आई पोस्ट स्मॉल स्मॉल रील्स बस इसीलिए कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाए, आपको भी अच्छा लगना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हाँ डॉक्टर राशि का कोई है, सो इट इज ओनली टू मेक अ प्रेजेंस इन योर होम, ठीक है। और बाकी
6: एक सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का भी एक जरिया तो है ना मैम सोशल मीडिया पे, आप जैसे लोग ही हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, जैसे मेंटोर, ये चैट जीपीटी और इंस्टाग्राम से तो बेटर है कि आप सही इंसान को फॉलो करेंगे तो वो डायरेक्शन तो देगा।
7: देयर आर मेनी मिसगाइड्स ऑन सोशल मीडिया ना, तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये लगेगा कि वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम ही नहीं रहे।
6: एब्सोल्युटली,
7: तो पीपल विल थिंक, तो अब कोई भी ए बी सी डी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, so it takes a lot of मेहनत, प्लस हम भी gynecologist with degree नहीं बने, with our experience lot of things, हम कभी हम भी फंस जाते हैं, we ask our seniors, we ask surgeon की हमें वो लेनी पड़ती है, so nobody is complete, it is always, जैसे हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आई एडमिटेड अ पेशेंट जिसको एक्यूट ब्रेनकेटाइटिस थी, तो एक गैस्ट्रो इन्वॉल्व हुआ उसमें, उसको सीजर डिसऑर्डर था, तो उसमें एक न्यूरो फिजिन इन्वॉल्व हुआ, प्लस एक गायनी थी और उसको एक AI में चली, तो एक यूरो सर्जन इन्वॉल्व हो गया, तो दिस कैन नॉट बी, एक कोई ले मैन ये सब चीजें नहीं संभाल सकता है। तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप जो है डॉक्टर्स से ही कनेक्ट करें, उनकी बातों को, आजकल लोगों का एक्चुअली विश्वास कम हो गया है, ठीक है। विश्वास कम भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो ए बी सी डी बीच वाले लोग हैं ना, दीज पीपल डू रैंडम थिंग्स, बट वो ग्रॉस ये आ जाता है कि डॉक्टर्स ने किया, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली डॉक्टर्स।
6: करेक्ट, राइट। अच्छा मैम, जो लेडीज आपको सुन रही, कोई आपसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहती हूँ या आपको विजिट करना चाहती हूँ, तो कहाँ आप उनको मिल सकते हैं?
7: आई सिट एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल, 10 to 4 एवरी डे, ठीक है। संडेज आर ऑफ डेज, तो यू कैन कम
6: मंडे टू सैटरडे, मतलब वो आ सकते हैं।
7: सो वी हैव अ वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर नॉर्मल डिलीवरीज, फॉर सिजेरियन सेक्शंस विद अ एक्सपर्ट केयर, तो एनी बॉडी कैन कम एनी टाइम।
6: आपका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आपने बताया?
7: हाँ, आई एम, मुझे मेरा तो डॉक्टर राशिका के नाम से ही है।
6: तो गाइस प्लीज फॉलो कीजिए।

छोटा सा अकाउंट बड़ा अकाउंट तभी होगा जब हम और आप फॉलो करेंगे, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन को हमें आगे डिलीवर भी करना चाहिए। वो कहते हैं ना ईच वन टू कीच वन, मैं हमेशा कहता हूँ आप भी फॉलो करें औरों को भी कराएं, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक डिलीवर होना बहुत जरूरी। सो अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, वेरी वेरी सून फिर मिलेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
5: और हूं आपकी दोस्त प्राची।
4: मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है
5: दोस्तों। उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गांव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
5: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ओटीओसी योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
4: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद, मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देशी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गाँव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया, इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख आ देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देशी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात की कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ, सुनिए। छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गांव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग वे पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम दोनों की तरफ से नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्दी मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद।

0: कॉल नाउ 9412211111।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे RJ आनंद को। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त RJ रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों RJ रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
5: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
4: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
5: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
4: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से AC में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
5: बिल्कुल सही।
4: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
5: और स्टूडियो में ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
4: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती हैं, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बहता रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं, हाँ, और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गाँव में फिर से वो गाँव हरा भरा लगने लगा, नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पर हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी
0: हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा, आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए,
0: जरूर लगाइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में, किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी, और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था,
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगे खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे, और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज से। तो श्रोताओं, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी, लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्राकृतिक है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है, तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है और जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपनी प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों, अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियाँ हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते हैं ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते हैं, पानी ऐसे बहा देते हैं जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो पर उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इंजनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट होता है। तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से. यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे. आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं. प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो. रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी. साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है. अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी. कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए. और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है. पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला. लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली. लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताज़ी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और ज़िंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा. इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें. क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी ज़िंदगी भी सुरक्षित है. तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीज़ों का ज़रा खास तौर पर ख्याल रखें. स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत ज़रूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी ज़रूरी है. बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को ज़रा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और इसी की वजह से जो जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है हवा की वजह से, सांस

0: देने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है।
1: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों, आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी ना जाते जाते?
0: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
1: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए,
0: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
1: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाज़त, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
0: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
0: बाय।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहां पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठाई मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली किरण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ का, बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे स्पेस आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है,
2: तो उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके यहाँ हमेशा बनेगी। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा है,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा है वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यवसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके।
0: स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, किटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग

0: वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बना

0: आने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। हमारा अगला कार्यक्रम है एक ही कलाकार। तो आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के प्रिय श्रोताओं का मैं सुनिधि गुप्ता हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार में। तो आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हिंदी फिल्म के संगीत के उस जादूगर को जिसने अपनी धुनों से संगीत की दुनिया को एक नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार राहुल देव बर्मन की, जिन्हें दुनिया प्यार से पंचमदा के नाम से जानती है। दोस्तों, 27 जून यानी आज ही के दिन सन 1939 को जन्मे पंचमदा महान संगीतकार सचिन देव बर्मन के पुत्र थे। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। कहा जाता है कि बचपन में वो जब रोते थे तो उनकी आवाज प यानी पांचवें सुर जैसी लगती थी। इसी कारण अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें प्यार से पंचम कहना शुरू कर दिया और यही नाम हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पश्चिमी गीत, जैज, लैटिन और रॉकिन, इन सभी शैलियों का ऐसा अनूठा संगम उन्होंने अपने संगीत में किया कि हर धुन आज भी नई जैसी लगती है। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके एक सदाबहार गीत के साथ।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: आपने ट्यूनिंग किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और वैसे तो इस प्रोग्राम में सच बता रहा हूँ, मेरी एंट्री होना बिल्कुल पूरी तरह बैन है, निषेध है मेरा आना, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस गया हूँ। आज प्रोग्राम का नाम है महिला मंच, इसमें खुशी और रीना आपको मिलती है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी महिलाओं ने कहा, बेटा आप चलो हमारे साथ, आज तुम्हें नई नई जानकारियां देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितने भी पुरुष लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है महिला मंच है तो यहाँ पुरुषों का काम नहीं है। भाई पुरुष और महिला से ही एक समाज बनता है, तो जितनी इंपॉर्टेंट पुरुष है उतनी इंपॉर्टेंट महिला भी है, और जितनी महिलाएं उतनी पुरुष हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी होस्ट है रीना। हाय रीना, वेलकम। कैसा लग रहा है महिला मंच पे पुरुष मंच को खड़ा करके?
6: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बोला भी था तुम्हें कि भाई आ जाओ,
5: हाँ
6: महिला मंच में तुम भी शामिल हो जाओ। फाइनली तुम आज हो गए।
5: गाइस मैं महिला मंच में शामिल हुआ, महिला मंडली में शामिल हुआ, इफ यू डोंट माइंड। और आज मजे की बात है कि महिला मंच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की महिला ना किसी से कम नहीं है। क्यों रीना? आज की लड़कियां हो गई, महिलाएं हो गई, जो घर में पहले हमें लगता था सिर्फ हमारी मम्मियां घर तक ही सीमित है, अब वो घर से रील बना बना के भी फेमस हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। स्टोरी लगा लगा के फेमस
6: है, काम से लेकर ऑफिस तक
5: सब चीज मैनेज कर रही है हमारी मम्मियां। तो अब हमारी मम्मी सिर्फ होम मेकर नहीं बची है, और इसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मम्मी को इन्वाइट किया है, मैं तो यही कहना चाहूंगा उनको। आज महिला मंच में हमारे साथ कुमकुम भी है। हेलो, हाउ आर यू?
7: मैं बहुत ही कि मैं भी आती हूँ खुशी दी और रीना दी के साथ।
5: हाँ हाँ हाँ, मुझे मैं महिला मंच में बहुत कम आता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। तो आपने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो मैं बहुत भूखा हूँ खाने का। गाइस अभी जाके खाना खाऊंगा और जो हमारी गेस्ट है उनको वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं? वेलकम टू एफएम मुरादाबाद एंड दिस इज महिला मंच ब्रांड न्यू शो, आपका स्वागत है।
7: मैं शैली सिंह मुरादाबाद से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके। और
5: अरे वाह क्या बात है, और बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है शैली जी एक महिला होने के नाते ही अपने आप में एक बहुत गर्व का मोमेंट होता है कि जब आप कुछ अच्छा करके आ रहे हो, कुछ बड़ा करके आ रहे हो, तो ये आपके लिए और भी बढ़िया होता है। क्यों रीना? जैसे कि आज जो शैली जी हमारे साथ मौजूद है, वो सिर्फ शैली नहीं है, उनके काम भी बिल्कुल सराहनीय है, बहुत अच्छे अच्छे काम करके आई है वो, तभी आज स्टूडियो में आपके बीच में हमने उनको आमंत्रित किया है। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारी महिलाओं को जो लोग सुन रहे हैं।
7: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल छजलैट। मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, योगा मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, योगा जिम ये सारी चीजें।
5: तो कहना योगा में रुचि भी है आपकी, योगा टीचर भी आप बन रही हैं?
7: रुचि मदान, मैं उनके स्टूडेंट हूँ।
5: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिसेंटली आई थी रुचि जी वैसे हमारे स्टूडियो में, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने बताया प्रिंसिपल भी?
7: हाँ प्रिंसिपल RSM पब्लिक स्कूल छजलैट।
5: ओके, छजलैट में आप वर्किंग है। मैम इतने सारा काम कैसे कर लेती हो आप?
7: मैं बस कहते ना महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं से आप नौ दुर्गों में जो पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? शक्ति के लिए करते हैं। और शक्ति क्या है? हम ही धन भी हम है, विद्या भी हम है।
5: सही बात,
7: सब कुछ हम।
5: मुझे लगता है अगर देखा जाए ना तो हमारे आसपास की चीजें हैं ना, वो सब भगवान देवियों से जुड़ी है। धन की देवी लक्ष्मी है, ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं, शक्ति की देवी माँ दुर्गा हैं, काली देवी सर्वनाश करने वाली
7: है,
6: अन्न की देवी अन्नपूर्णा है।
5: हाँ तो मतलब हर माँ गंगा जो जिसमें हम नहाते धोते हैं वो गंगा मैया है, वो भी गंगा माँ है। तो सारी नारियों से ही हमारा जो है सजा हुआ है पूरा संसार,
7: और जिसके माध्यम से हम आते हैं वो भी नारी
6: नारी।
5: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि आज जो है नारियों के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है, और इस प्रोग्राम में हमने मैम को इनवाइट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। और इसके अलावा वो गाड़ियों में रील भी बनाती है बैठ के, वो बात तो बहुत अलग है क्योंकि वो भी उनको बहुत पसंद है, मुझे लगता है कहना चाहिए। वो इतनी एक्टिव है कि लोग गाड़ी चलाएं बट वो रील भी बना लेती है, वैसे ये बहुत रिस्की भी होता है, आप कैसे करती हो ये?
7: नहीं, अपने अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टैलेंटेड है, कि वो गाड़ी चलाने के साथ साथ आप बीच बीच में आपको एक्सप्रेशन भी देते जाएं।
5: वो तो जबरदस्ती उनको बीच में ऐड कर लेते हो कि आओ ना,
7: ये तो शक्ति है कि आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं, कि आपकी तरफ नहीं, मेरे को पहले एक्सप्रेशन दो, बड़ी बाद में चलाओ।
5: क्या बात है।

0: नहीं, अच्छा हम बात कर लेते हैं अब महिलाओं के बारे में। जैसे शैली जी आप बहुत सारा काम करती हैं और ऐसे आपकी जैसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो बस सोचती हैं, कर नहीं पाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए एक कदम का आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो आपको कैसे आया ये और जो लोग आपको सुन रहे हैं ताकि उनको भी ये चीज आएगी वो भी शुरुआत करें।
1: देखिए आजकल की अगर हम बात करते हैं कि महिला इतनी कमजोर है तो आज की महिला तो नहीं,
0: करेक्ट,
1: ये 90s के दौर की जब हमारी मम्मियाँ थी तब की बात है ये कि उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता था।
0: करेक्ट,
1: अपने लिए एक साड़ी लाने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं इस फंक्शन में यही पुरानी वाली पहन लेती हूँ। आजकल की लेडीज सशक्त हो चुकी हैं, वो समझ चुकी हैं अपनी प्रायोरिटीज कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। वो सेल्फ डिपेंड भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं और वर्किंग भी हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं। उन्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है। लेकिन जो पहले की हमारी मम्मी लोग होते थे उनके लिए उनका दायरा इतना सीमित होता था कि वो घर और बस बच्चे और उनका पति और ससुराल मायका, उनका दायरा बस यहीं तक था। वो अपनी जो फीलिंग्स होती थी ना वो भी घर में शेयर नहीं कर पाती थी, उनके लिए भी उनको कोई नहीं मिलता था कि वो अपनी फीलिंग्स भी किसी को कभी शेयर कर पाए।
0: करेक्ट, बिल्कुल। तो मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा, आज की नारी जो है किसी से कम नहीं है। क्यों रीना, ये बिल्कुल बात सही कह रही है मैम, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इन बातों को बहुत फॉलो करती हैं और उनके फैमिली में एक रिचुअल्स बना आया है कि भाई वो शादी के बाद कुछ नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे, मतलब ऐसा भी
2: अभी भी बहुत ऐसी फैमिली
1: है। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी वो ऐसी है लेकिन उनको ऊपर ये प्रेशर है कि ये हमारे संस्कार है, इन्हें ही आपको आगे ले जाना है, मेंटेन करना है। लेकिन संस्कारों को भी मेंटेन करने के साथ साथ भी आप अपने आप को ग्रो अप कर सकते हो,
0: करेक्ट,
1: कॉन्फिडेंट बन सकते हो, ये नहीं बताते हैं।
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाली जी आप जो कर रही है ना ये एक तो मोटिवेशन है ही और महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहा है ये चीज, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी तो स्ट्रांग बना रहा है ना।
1: फाइनेंशियल स्ट्रांग बना रहा
0: है, आने वाला टाइम देखिए आप कितना महंगा हो रहा है, आजकल कितनी सारी शॉर्टेज पड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर, आपको बच्चों को भी अच्छे स्कूल देने हैं, अच्छी उनकी चीजों का भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना महिलाओं को भी।
1: बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो मैं पुरुषों का सहयोग चाहूंगी कि वो घर में रह करके उनसे जो भी बन पड़ता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एवरी टाइम आप घर में रह के उनका घर के कामों में सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उनको हेल्थ को लेकर के कि आप कुछ अपने लिए, पहले तो सबसे पहले हेल्थ है हमारी, आप अगर महिला अगर घर की स्वस्थ है तो वो सबका ध्यान रख पाएगी। अगर एक दिन आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या सिस्टर बीमार पड़ जाती है तो अस्त व्यस्त हो जाता है,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: वो कहानी बिगड़ जाती है घर की। लेकिन सबसे पहला हमारा है कि उनको स्वस्थ रहने पे उनके टाइम से नाश्ता करें, टाइम से खाना खाएं, उनसे भी पूछें आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। ये केवल पत्नियों का ही नहीं बन रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन भी कैसा रहा, तुमने आज क्या सोचा, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीज है।
0: तो मतलब दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है।
1: हाँ जी,
0: करेक्ट, बहुत अच्छा बोला आपने। और कुमकुम तुम क्या कहना चाहते हो?
3: मैं भी यही कहना चाहूंगी जैसे कि मैम ने भी बताया, संस्कार और रीति रिवाज के साथ जो हस्बैंड कहते हैं ना कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हमारी रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, आगे नहीं करना हमारी फीमेल्स को, उस नाम पे ना उसको रोक दिया जाता है।
0: करेक्ट,
3: लेकिन हमें ना उन चीजों को वहां तक सीमित नहीं रख के उस सबके साथ साथ अपनी फीमेल को, मतलब अपने पार्टनर को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनके साथ उनको मेंटली हेल्थ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ इनका मेंटल हेल्थ भी अगर ठीक है ना तो वो हैप्पी रहेंगी, और जब वो हैप्पी रहेंगी तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा।

0: दोस्तों बिल्कुल, देखिए एक्चुअली ना मुझे भी ऐसा लगता है कि लेडीज के साथ साथ ना हम पुरुषों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक हम चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे उनको पुश नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें अच्छे लेवल पे जा सकती है ना। जैसे आज ही मैं राजमा चावल बनाना सीख के आया हूँ भाई, कल मेरी शादी होगी तो मेरी बीबी को कुछ तो रिलैक्स मिलेगा भाई। अगर वो अपने घर चली जाएगी तो मुझे होटल का वेट नहीं करना पड़ेगा। शैली जी,
1: तो ये तो एक बड़ी एक सबसे बड़ा मिथ लगता है मुझे कि सिर्फ महिलाएं ही खाना
2: बनाती
1: हैं। आप रेस्टोरेंट्स में देख लो, होटल्स में देख लो,
0: मेल खाना
1: शेफ कौन है? आप फीमेल शेफ बहुत ही कम
2: पुरुष
1: मिलेंगे नहीं।
0: तो फिर ये समाज में क्यों है कि
1: आप घर में हलवाई बुलाओगे कोई लेडीज नहीं आएगी, पुरुष ही आ रहा है।
0: हाँ।
1: ये केवल घर का ही चल रहा है कि आप ही को खाना बनाना है, आप ही को ये करना है।
3: ये तो ना हमारे कुकिंग वर्ड में ही डिफाइन कर रहा है, कुकिंग। यहाँ किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात नहीं हो रही।
0: करेक्ट,
1: बिल्कुल सही बात है।
2: वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने,
0: तो जितने भी जैन से वो किंग बन जाए, कुकिंग करने के साथ साथ कुकिंग करें।
1: नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुकिंग करें, लेकिन अगर आपकी वाइफ बीमार है, आपकी मदर बीमार है, तो आपको इतना आना चाहिए कि उस 3-4 दिनों में उनका ध्यान रख पाए, उन्हें जैसे वो पहली थी वैसे ही उन्हें फिर से खड़ा कर पाए, उनका सपोर्ट कर पाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सुबह खाना बनाए बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल जॉब पे छोड़ दें, या देखिए जेंट्स के बस की बात नहीं है। जितना एक लेडीज संभाल लेती है ना घर बाहर दोनों, सोसाइटी वगैरह सब, वो उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: क्या बात है गाइस, आज महिला मंच में मैं बिल्कुल सीख के जाने वाला हूँ, बहुत सारी तैयारियां मेरे साथ हो रही है, अप्पे चप्पे खप्पे सब सीखूंगा आज मैं, आप टेंशन ना लो। रीना तू कुछ कह रही थी, टेल मी।
2: मैं ये कह रही थी, तुम्हारी बातों पे बोल रही थी, तुमने बोला कि मैंने आज ही राजमा चावल बनाने के लिए सीखा है, तो जब जैसे मैम ने बता ही दिया कि घर में महिलाएं बीमार होती है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप घर में एक दूसरे का साथ दोगे तभी परिवार आगे बढ़ता है और ग्रो भी तभी करता है। और क्योंकि अब देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक अगर कोई पुरुष कमा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसमें नहीं हो पाएगा कि बच्चे भी है, फैमिली को भी लेकर चल रहा है, इसीलिए दोनों को ग्रो करना चाहिए। सपोर्ट करिए आप महिलाओं को,
1: हो भी पाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाएं दबाएंगे,
2: लो वही ना, तो दबाना उस चीज को आगे करिए।
1: और ये चीज आप सोचो, पहले के टाइम में चल भी जाता था कि महिलाओं हैं बहुत सारी, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, मगर अब ज्वाइंट फैमिलीज है कहाँ, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे,
0: छोटा परिवार सुखी परिवार,
2: लेकिन खर्चा आज
1: वो इतना छोटा हो गया है कि अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको घर के काम ही नहीं आते। पहले केवल बेटी का ही फर्ज बनता था कि पापा आए हैं आपको पानी देना है, आजकल क्या है कि बेटों को भी भाई पापा आए आप पानी दीजिए,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनको आदत में डालिए।
0: करेक्ट, छोटे छोटे काम में उनका जो है एनरोलमेंट कराइए,
1: क्योंकि बेचारे उन बॉयज को बाहर जाके बहुत परेशानी होती है, उनकी तकलीफ नहीं। आप सोचो जो जिस बच्चे ने एवरी टाइम घर में बेड पे खाना खाया है, बेड पे चाय पी है, वो हॉस्टल जा रहा है रहने के लिए, उसको अपना खुद या जॉब पे बाहर है, खुद बना के कुछ खाना है, तो वो कितना परेशानी होती है उसको, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं होती। लड़कियों को आपने कभी देखा है कि परेशानी हो रही है?
2: नहीं, क्योंकि घर पे भी उसको काम करवाया जाता है,
1: उनके लिए 5 मिनट मैगी नहीं, उनके लिए 5 मिनट में खाना भी बन जाता है।
0: नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, अब लड़के भी बहुत ज्यादा अंकल आंटी के साथ साथ सब एक्टिव हो रहे हैं,
1: सब एक्टिव हो रहे हैं आजकल के बॉयज बहुत नहीं, आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, वो कोऑपरेटिव आ रही है, लेकिन उनको वो कोऑपरेट करते हैं ना तो उनको फिर लोग ये कहते हैं अरे यार तुम कर रहे हो ऐसा, तुम्हारा नहीं करने का है, तो वो जो नहीं वाला शब्द है, नहीं अच्छी, उनको ये बोलो कि नहीं अच्छी बात है आप सपोर्ट करते हो।

0: ये बात तो आपने सही बोली, और मुझे भी लगता है कि गाइज अब सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी, मतलब कहने का ये कि दोनों लोग साथ में चल रहे हैं और दोनों ही लोग बराबरी में काम करते हैं। कोई प्रोफेशन नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़के लड़कियां काम ना कर रहे हो, हर जगह कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये भी था आपको बुलाने का शैली, जिस प्रोग्राम में महिलाओं को एक मोटिवेशन आप जो आपसे मिलेगी ना उसकी बात अलग होगी। तो हमने कर ली, अभी जो हमने बात करी है, खैर ये महिलाओं की और पुरुषों की बात कर ली खाने पीने की, कि मर्दों को भी आना चाहिए और जरूरी भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं उन महिलाओं की जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आता भाई कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो उन्हें आप क्या कह सकती हैं? आजकल तो घर से भी बहुत सारे काम कर सकती हैं
1: उन्हें, तो सबसे पहले तो उन्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, उन्हें बस ये सोचना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: करेक्ट।
1: उन्हें सिंगिंग अच्छी लगती है, उन्हें डांसिंग अच्छी, उनका शौक क्या है, उस शौक को प्रोफेशन बनाए।
0: अच्छा, आपकी बात को बीच में रोक के बोलूंगा। रिसेंटली ना एक लेडी से हमारी मुलाकात हुई, हमारे स्टूडियो में ही आई थी वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनको बहुत अच्छा गाना आता है, उनके गाने का बहुत शौक है और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पैकेज। उनकी गवर्नमेंट टीचर है, उनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे लेवल पे टीचर है, उनका बेटा मुंबई में बहुत ही बड़े स्टूडियो में प्रोड्यूसर है, मुंबई बॉलीवुड में काम करता है, मुरादाबाद की ही है वो। तो उन्होंने बताया कि उनके उनको गाने का बड़ा शौक है, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके उनका बेटा और उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, तुम यहीं घर में ही रहो, तुम्हारी आवाज यहीं तक अच्छी है, तुम्हें ऐसा मिथ है कि तुम अच्छा गाती हो, तुम घर पे खाना वाना बनाओ, तुम्हारे लिए यही सफिशिएंट है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन वो कहती है कि मेरा बेटा भी, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ना, तो बेटा भी बोलता है नहीं मम्मी मैं मुंबई में रहता हूँ, तुम्हारी आवाज घर की दीवारों में ठीक है, बाहर बेइज्जती हो जाएगी। तो उनको घर में डिमोटिवेट कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा मतलब ये नहीं कि गलत चीज है, शायद उनको ऐसा लगता है, लेकिन जितना हमने आंटी मैम को देखा, उनको सुना, तो मुझे लगा नहीं, शी इज वेरी ब्रिलियंट, वो अच्छा कर सकती है। बट अगर उनको एक मौका दिया जाए, उनको एक सपोर्ट किया जाए उनके पेरेंट्स से, उनके हस्बैंड से या उनके बेटे से, तो शायद वो और अच्छा कर ले। तो बात वही आ गई है कि लेडीज करना तो चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर है कि तुम अच्छा, उनको डिमोटिवेट कर दिया जा रहा है।
1: तो उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक बार अपना सॉन्ग इंस्टा पे डालिए, जो भी आपको एक बहुत अच्छा आता है, व्यूअर्स आपके कितने आते हैं, कौन आपको लाइक करता है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या है आपकी।
0: लेकिन कभी
2: अपने प्लेटफॉर्म को खुद जनरेट
0: तो करना है, लेकिन अब जब अलाउड ही नहीं है घर में, जब लोग उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा गाती नहीं हो, तो फिर
1: ठीक है अलाउड नहीं है, तो जो घर के मेंबर्स है ना, चार दीवारी में ही गाना है, तो उन जो हमारे चार लोग हैं, हमारे घर के रिलेटिव, हमारे भाई हो गए, हमारी बहनें हो गई, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हो गए, व्हाट्सएप पे डालिए सिंगिंग करके, हाइड कर दीजिए सबको, फिर वो उनके व्यूज क्या होते हैं आपके गाने के प्रति पता चल जाएगा।
0: ये अच्छा आपने,
1: क्योंकि साँच को आज क्या,
0: सही
3: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि ये जो लेडीज प्रोग्राम है ना, इसके इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि हम लोग लोगों की सोच को बदलें, और सिर्फ महिलाओं की क्यों, जेंट्स की सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है।
1: नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, आप घर में कीर्तन रखिए, आप अगर अच्छा गाते हैं बजाते हैं, आपको चार लोग इनवाइट करेंगे, यार वो उनकी वाइफ बहुत अच्छा गाती है, और देखिए लोग उन्हीं को बुलाना चाहते हैं जिनमें कुछ बात
3: है।
1: चार लोग जो पीछे बैठने वाले होते हैं उन्हें लोग कम इनवाइट करते हैं, आपको बजाना आ रहा है, आपको गाना आ रहा है, आपको डांस आ रहा है, तो आपको जब आपका घर में ऐसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो आप सोचेंगे चलो उन्हीं लोगों को ज्यादा बुलाएंगे,
2: उन्हीं लोगों का नाम सबसे पहले होगा।
0: सही कहा आपने। तो श्रोताओं, फिलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अब जो है मेरा तो जाने का समय हो रहा है, लेकिन अभी इन लोगों की बात आप सुनते रहिए, शायद आपको कुछ अच्छा सीखने को जानने को मिले। थोड़ा सा मैं बस जाने से पहले शैली मैम से और पूछना चाहूंगा, वो आज हमारे बीच में आई है, तो इतना अच्छा काम करती है और इतनी फिट भी है वो, और इतनी अच्छी फ्लेक्सीबिलिटी उन्होंने मेंटेन की हुई है, तो इसका राज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि घर की महिला अगर स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है ना, परिवार की भी पूरा समाज स्वस्थ है। अगर हमारे घर की नारियां कमजोर पड़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, थकेंगी, दिक्कतें होंगी, तो वो नहीं चला पाएंगी, और पुरुष तो इतना नहीं कर पाते भाई, सिंपल सी बात है। तो महिलाओं को आप क्या टिप्स देंगी, क्या एडवाइस देंगी, दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे वो खुद की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करें?
1: मैं महिलाओं के लिए बस यही बोलना चाहेंगी कि अगर आप 45 मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 2 घंटे निकालिए, 45 मिनट अगर आप पूरे दिन में नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी लाइफ ना बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स में वो आपकी हेल्थ इश्यूज से लेके आपकी मेंटल हेल्थ तक वो सही करेगी, और जब हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है तो हमारी फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो उस 45 मिनट में आप प्राणायाम है वो करिए, आजकल ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, जिम नहीं जा पा रहे हो, योगा नहीं जा पा रहे हो, सारी चीजें अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, वो आप उनको सर्च करके 15 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भारती कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इतनी सारी एक्सरसाइज है वो 45 मिनट। और सबसे पहला जो दिन की शुरुआत करो एक फ्रूट से करो, चाहे आप ये नहीं है कि रोज आप एप्पल ही खाओ, बनाना खा लो, किसी दिन गुआवा खा लो, मैंगो खा लो, सीजनली फ्रूट्स पे अपने जो भी चीजें अपने उनको हेल्थ इश्यूज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैल्शियम, विटामिन D3 वुमेन्स का, विटामिन B12 बहुत कम होता है, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है क्योंकि वो खाने को ना बिल्कुल साइड कर देती है। तो अपने खाने का सबसे पहले ध्यान रखें, टाइम से नाश्ता, टाइम से डिनर, टाइम से लंच, ये चीजें उनको जरूर करना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी पे उन्हें 45 मिनट्स अपने हेल्थ को देने हैं। और दूसरी बात, अगर वो टाइम से खाना वाना खाएंगे तो वो वैसे ही स्वस्थ रहेंगी। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव चीजें सुने, निगेटिविटी अपने पास से हटाने की कोशिश करें।
0: बहुत ही अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और गाइज अब हम लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत। रीना तुम्हारा क्या टेक रहेगा, तुम क्या कहना चाहोगी जाते जाते?
2: मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं से कि अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ है तो पूरा परिवार पूरा समाज स्वस्थ है। और जब महिलाएं आगे बढ़ती है, महिलाएं पढ़ती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि अपने लड़कियों को ये नहीं चाहता हो कि तुम ना पढ़ो, क्योंकि जब महिलाएं पढ़ती है ना तो वो एक पीढ़ी को नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। तो वो पढ़ शिक्षित है, स्वस्थ है तो समाज भी शिक्षित है और स्वस्थ है।
0: क्या बात है कुमकुम, तुम क्या कहोगी जाते जाते?
2: मैं भी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी महिलाएं, आपकी वाइफ, आपकी बेटियां आपका साथ दें, तो आप भी उनका उतना ही साथ दें। अगर वो थकी हारी आती हैं तो आप उनको एक गिलास पानी दें, उनसे कहें कि हाँ 2 मिनट रेस्ट करो, जो काम करना है आप आराम से करो।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस फिर मिलेंगी आपको रीना और खुशी, मैं लेता हूँ इस महिला मंडली से इजाजत, फिर आपको जल्दी मिलूंगा, आप ख्याल रखिए अपना। और जाते जाते थोड़ा सा फन करते हैं, एक छोटी सी शायरी है मेरे साथ आपको बोलनी है, आर यू रेडी गाइज? ठीक है चलो तो शुरू करें। तो गाइज महिला मंडली में एक थोड़ी सी फनी शायरी, माफी चाहता हूँ आप सभी को, बोला है दिल जवा है तो बेबसी कैसी, बोलो गाइज।
2: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
0: आपको भी बोला है फिर से बोलना है, दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
2: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
0: सफेद बालों की ऐसी की तैसी,
2: सफेद बालों की,
1: सफेद बालों,
2: फिलहाल सफेद बाल भी इनके ही है इसीलिए बोला है।
1: सबसे ज्यादा काउंट करे आएंगे तो आरजे,
0: मैं नमक के पानी से नहा लिया था किसी एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था एक ग्लास एक चुटकी नमक डाल के नहाना है आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो बालों के कार्य पूरे सिद्ध हो गए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और टिप्स आप उनसे ले लें, हाँ। आपके बाल ही चले जाएं।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा,
1: रहेगा बांस नबजेगी बांसुरी।
0: ये तो इन्होंने मेरी नानी की कहावत जोड़ दी। फिलहाल तो मैं लेता हूँ जाने की अनुमति, और आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बाय बाय।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया था कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, और साथ चलने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। श्रोताओं, आज रीना के साथ आप कनेक्ट है और शो है यानी कि फरमाइश शो, तो आपने क्या करना होता है इसमें, हमें कॉल करना होता है, नंबर है 9823789896 और आप अपने फेवरेट वाला गाना सुन सकते हो। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि गर्मी बहुत तेज है। श्रोताओं, बाहर से आने के बाद फील होता है कि बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, और इस चीज़ का आज मुझे फील हुआ है, क्योंकि जब मैं आज बाहर गई हूँ और बाहर जब आने के बाद, आपको भी पता है कि मैं शो मतलब 13 मिनट लेट हूँ मैं शो स्टार्ट करने में, तो यही कहूँगी आप सभी से कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ चाहे थोड़ी दूरी के लिए ही जाए, अपने साथ पानी की बोतल ORS अपने साथ ज़रूर रखिए, ताकि आपकी एनर्जी लो ना होए। और कहीं भी आप इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं तो मेरे जैसा गलती तो बिल्कुल मत करना कि आप कहीं जा रहे हो और कुछ ऐसे फॉर्म ऐसे कागज़ जो आप भूल जाओ, और आपको वहाँ जाकर पता चले कि अच्छा ये कागज़ भी लेके आना था, एक्चुअली जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जब आप भूल जाते हो तो फिर आपको दोबारा चक्कर लगाना पड़ जाता है। इसीलिए जब घर से बाहर निकले, जहाँ जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, आप ज़रूर एक बार अपना बैग ज़रूर चेक करें कि जिस चीज़ के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और जो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए एक्चुअल में वो चीज़ है मेरे पास या नहीं है, क्योंकि मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो अपनी अपने साथ अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें ज़रूर लेकर जाए। और चलिए यानी कि फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो रीना जी, गुड आफ्टरनून।
0: जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताओ।
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, लग रहा है आपको जुकाम हो गया है।
1: हाँ सही कहा
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है, लाइन पार मुरादाबाद से बोल रहा हूँ मैं।
0: ओके कार्तिक जी, क्या करते हैं आप ऐसे?
1: कुछ नहीं करते, बस लेट ही थे, अभी आपका रेडियो सुन रहे थे।
0: अच्छा अच्छा रेडियो सुन रहे थे, तो बताइए कौन सुनना है आपने?
1: एक सॉन्ग सुनना है, वो आज दिन चढ़िया।
0: आज दिन चढ़िया की गर्मी बहुत ज्यादा है
1: गर्मी तो है ही, जब गर्मी का मौसम चल रहा है।
0: चलिए जी, किसी का नाम लेंगे?
1: जुकाम भी इसी वजह से हो जाता है, ठंडा गर्म से।
0: हाँ वो एक्चुअली बाहर से आते हैं ना तो हम इंतजार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है ना। ठंडा पानी पी लेते हैं, एकदम नहाने की तलब लग जाते कि नहा लो बस ठंड, फिर गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, और ये छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए बहुत बड़ा रुक लेते हैं। ठीक है जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है,
1: ठीक है,
0: ओके चलिए जी, आज दिन चढ़िया वाला गाना सुनते हैं, और आपसे भी यही कहना करिए, नंबर है 9823789698 9 6

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है कि आज दिन चढ़िया तेरे वर्गा कोई और नहीं। डिसाइड आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 3:21 हो चुके श्रोताओं, और आपका शो है यानी कि फरमाइश शो वो शुरू हो चुका है। सो आपने कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपने अपना फोन उठाना है और हमें कॉल करना है। नंबर है 9837896896। और आपको मैं बता दूं, आसपास ना कहीं तो हमारे बारिश जरूर हो रही है, जो थोड़ा बहुत हवाओं में नमी है। सो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। चलिए जी, हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है? गुड गुड आफ्टरनून
1: मेरा
0: जी, बताइए क्या नाम है आपका?
1: नाम सोनू कुमार सर के 10 बुद्धि विहार से बोल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा जी, बुद्धि विहार से बात कर रहे हैं आप, बताइए सोनू जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप कैसे हो?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, क्या करते हो आप?
1: मैम हम घर बनाते हैं।
0: अच्छा, घर बनाते हो आप, बहुत अच्छी बात है सर। तो अपना ध्यान रखते हैं आप, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है।
1: गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है मैम, ध्यान तो रखते हैं।
0: हाँ ध्यान रखा करिए,
1: क्या
0: गर्मी बहुत ज्यादा है, ORS अपने साथ रखा करिए।
1: पानी की बोतल तो साथ ही रहती है, अब क्या करें, काम तो करने पड़ेगा।
0: हाँ वहीं पर वो जो घड़ा होता है ना वो भर के रख लिया।

0: करिए, उसमें पानी भी ठंडा रहेगा छाव में।
1: हाँ
0: और बताइए जी, सब बढ़िया है?
1: सब बड़े आम है। और आपके परिवार में मैम
0: हाँ जी, हाँ जी, सब बहुत बढ़िया है। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: आपके पसंद का गाना सुनना है हमें।
0: मेरी पसंद का गाना सुनना है आपको? ठीक
1: हाँ
0: है
1: बहुत अच्छा
0: जी,
1: लग रहा है, काफी समय के बाद बात हो रही है।
0: हाँ जी, हाँ जी, बाकी आपका मैसेज आता है।
1: हाँ हाँ मैम
0: हाँ
1: मैम आपका प्रोग्राम डेली सुनते हैं वैसे।
0: हाँ मेरे को पता है सर, आपका मैसेज आता है ना।
1: हाँ बहुत
0: अच्छा,
1: अच्छा लगता है रेडियो पे।
0: थैंक यू सो मच सर कि आप हमारा शो सुनते हैं। और चलिए, गाना बहुत ही प्यारा, मैं आपको गाना सुनवाती हूँ, ठीक है
1: नमस्ते।
0: जी? नमस्ते। चलिए श्रोताओं, एक गाना है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, सो ये गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि कॉल करते रहिए और अपना फेवरेट वाला गाना सुनते रहिए, क्योंकि ये रेडियो है जहाँ आपकी और हमारी बातें होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए जी।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है। आज रीना के साथ फरमाइशों में और समय की बात करूं तो 3:31 हो चुके हैं श्रोताओं, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, कृष मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। सानू निगम जी की आवाज़ में, श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में, मतलब श्रेया घोषाल जी की आवाज़ और सानू निगम जी की आवाज़, ओ माई गॉड, बड़ी खूबसूरत है श्रोताओं। और इस टाइम इनकी आवाज़ सुनो और वो भी ट्रैफिक में हो, तो सफ़र कैसे, मतलब लंबा सफ़र भी आपको शॉर्ट लगने लग जाता है कि यार काश थोड़ा सा ही लंबा सफ़र और हो जाता है। और देखिए श्रोताओं, ये टाइम ऐसा होता है कि हर किसी को बस नींद आती है, तो आप चाहते हैं कि आपको प्यारी प्यारी सी नींद आ जाए तो हमें कॉल कर लीजिए, यानी कि अपने पसंद वाला गाना सुनिए और सो जाइए। नंबर है 9823789689। तो चलिए हम कॉलर, अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
4: हेलो फरमाइश।
3: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून।
4: गुड आफ्टरनून, आर जे रीना शुस्तर जी को ग्राम बेपोल लदावले से अजीत कसाना का प्यार भरा नमस्कार।
3: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
4: बहुत बढ़िया हूँ, और आपका प्रोग्राम सुन रहा था, और सुबह भी आपका मॉर्निंग में प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत शानदार प्रस्तुति रही आपकी, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच जी, हमें बोलना चाहिए धन्यवाद जी कि आप सभी को अच्छा लगता है।
4: और आज की मेरी पसंद है फिल्म का नाम है जवाब, और गाने के बोल है आज है मेरी जान, जून का है महीना,
3: सदाबहार गाने
4: जी, ओल्ड इज ऑलवेज प्योर गोल्ड, कितना भी सुनो मन नहीं बढ़ता।
3: बिल्कुल करेक्ट, सही बोला आपने, ये सदाबहार गाने आप जितनी बार भी सुनो मन नहीं भरता है।
4: जी हाँ,
3: तो किसी का नाम लेना चाहेंगे सर आप?
4: जी हाँ, मेरे साथ में मेरी पत्नी माया देवी है, और दोनों बेटे हैं आदि और ऋतिक कसाना, और साथ में बिना सर राजवीर सिंह यादव और यूनुस खान जी हैं जी। और इस टाइम मैं खेत पर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और खेत पर ट्यूबवेल चल रहा है, खेत पर गंदे की सिंचाई हो रही है।
3: अरे वाओ, 12 में सर आप मतलब खेत में हैं, 12 भी चल रहा है, तो आप 12 में अभी कभी नहाए आपने?
4: जी हम तो नहाते ही रहते हैं, और इस टाइम तो 12 की छांव में बैठा हुआ हूँ।
3: हाँ, बड़ी ठंडी ठंडी पानी, मतलब 12 की जो पानी होती है बहुत ठंडी होती है, जब मैं घर जाती हूँ तब हम सारे बहन भाई जाते हैं।
4: अच्छा।
3: हाँ, तो अभी गन्ने की भी शुरुआत हुई है ना?
4: जी गन्ने की कटाई होगी नवम्बर में,
3: मतलब अभी शायद उनकी मतलब बुआई हुई होगी।
4: बुआई तो 1-1.5 महीने पहले हुई थी, और इस टाइम उसके मिराई गुड़ाई पलाई बढ़ाई हो रही है।
3: अच्छा अच्छा, तो सर गन्ना हमारे वापस भिजवा दीजिएगा।
4: जी जरूर भिजवा दूंगा, और कमल भाई साहब के हाथ भिजवा दूंगा, बेर तो यहाँ आते रहते हैं, और इनके मामा जी का गांव है ये।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, मामा जी का गाँव है लदावली में।
4: जी हाँ,
3: ओके,
4: और कभी आप भी आइए, आपका मोस्ट वेलकम है।
3: जी बिल्कुल आएंगे,
4: और मुराद से गांव की दूरी 13 किलोमीटर, ये कांट रोड हरिद्वार रोड पे पड़ता है।
3: अच्छा अच्छा, का हरिद्वार रोड पे पड़ता है, ठीक है जी।
4: जी हाँ, तो आपका मोस्ट वेलकम है, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद है।
3: बिल्कुल बिल्कुल जी आएंगे। चलिए सर हम आपको ये गाने सुनवाते हैं, ठीक है?
4: ठीक है, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।
3: ओके जी, ओके ओके, तो चलिए गाना सुनते हैं आजा मेरी जान, जून का है महीना। आशा भोसले जी की आवाज में, किशोर कुमार जी की आवाज में गाना है

0: हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है अर्जुरीना के साथ फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 3:39 हो चुके हैं श्रोताओं, और गर्मी पूरे ताबड़तोड़ वाली पड़ रही है। इस चुलचुलाती गर्मी में आपसे यही कहूँगी कि आप बाहर जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। और बाहर से जैसे ही आप आते हैं घर में, तो आपने क्या करना है, एकदम आपने एसी वाले रूम में भी नहीं जाना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, पंखे में बैठना है, पसीना सूख जाए तब एसी वाले रूम में जाइए, और कोशिश करिए कि तभी आपको पानी पीना है। अदरवाइज़ आप बिना पसीना सूखे ही आप पानी पी लेते हो तो आपको सर्द गर्म हो जाती है, यानी कि फिर जुकाम खांसी। और ये मौसम भी ऐसा ही है, आता जाता जुकाम खांसी, तो ये हमेशा मतलब ये बिन बुलाए मेहमान होते हैं, आप ना भी बुलाओ तब भी आ जाते हैं। और आप चाहो इनको बुलाने के लिए तो बर्फ़ के गोले जब भी आप बाहर से आते हो खाइए, एकदम आ जाता है ये, तो इस पे अपना ध्यान रखना होता है जी। बाकी बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, तो आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल रीना मैम को।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं मैम रेडियो दोस्त परवेज अहमद शुक्लपुरा बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: अच्छा जी, बनारस से बोल रहे हैं, बनारस की वो कचौड़ी हाँ लस्सी, और वो भी मैंने सुना है सर, वो क्या बोलते हैं, मतलब एक ऐसी मिठाई बनती होगी वहाँ पर जो जैसे तिरंगे कलर में होता है कुछ।
1: जी बनारस की तिरंगे की जो बर्फी होती है, काजू कतली मैम, सिर्फ बनारस में ही बनती है मैम, वो कलर जो तिरंगे।
0: हाँ एक्चुअली मैंने उसके बारे में पढ़ा था ना, तो मेरे को याद है ये तिरंगे वाली बर्फी वहाँ पे मिलती है। मैं कह ये तो कभी बनारस जाओ भैया तो इसको तो खा के जरूर आना है।
1: जी जी जी मैम, आप 100% सही कह रही हैं, ये सिर्फ बनारस में ही तिरंगे वाली झंडी जो मिलती है, बर्फी जो तिरंगे कलर के झंडे की बनती है।
0: अच्छा मतलब वो तीन कलर में ही होते हैं ना?
1: जी मैम, और उसकी जो कटिंग होती है और जो काजू कतली की बर्फी होती है सिर्फ उसी तरह होती है, और उसमें तीन कलर डालते हैं मैम।
0: अच्छा केसरिया वगैरह सफेद हैं?
1: जी जी जी मैम, और खाने में भी स्वादिष्ट रहती है वो।
0: जी बिल्कुल, तो जब मैंने इसको बारे में पढ़ा तो मैंने कहा चलो यार कभी जब इन फ्यूचर बनारस आना होता है तो ये वाली मिठाई तो जरूर खानी है।
1: जी मैम, मैं आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, और देखिए कब तक इंतजार खत्म होता है।
0: एक ना एक दिन तो वो टाइम आएगा जब इंतजार खत्म हो जाएगा।
1: होता है मैम, कभी ना सोचते हुए भी कभी एक तैयारी हो जाती है।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: तो आज मैम फिल्म रहेगी कर्तव्य से, और गाने का बोल है छैला बाबू तू कैसा दिनदार निकला, और चोर समझी मैं तू थानेदार निकला।
0: सदा बहार गाने सुनना चाहते हैं आप?
1: जी जी मैम, और ये फिल्म जो है कि बचपन में देखे थे, अभी भी ये गाना जो है कि याद आ रहता है, और इसमें एक गाना और भी है चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा।
0: हाँ मामा, मामा तो होते ही है प्यारे घर जाके उनके
1: जितने भी गाने हैं इसमें मैम और लता जी की आवाज में है, और बहुत ही प्यारे गाने हैं। और फिल्म जब देखे थे हम लोग तो मैम फिल्म देखते देखते हम रोज मतलब सभी लोग बैठ के रोते थे।
0: कुछ मूवी बहुत शानदार होते हैं सर जो रिलेट कर जाते हैं ना।
1: जी उसकी स्टोरी मैम ऐसी थी ना, वो जो बांदी उनकी थी, तो बांदी को जो जब लास्ट में उसको शेर जब पकड़ लेता है, तो जब शेर पकड़ के मुंह से दांत को उसको लेके जाता, जो भी डायरेक्टर जी बनाए ऐसा इमोशनल बनाए थे कि सभी लोग जब हम भाई बहन सब लोग VCR में कैसे जब देखते थे तो सभी लोग रोने लगे थे, तो इसलिए जो गाना और स्टोरी सब याद रहता है।
0: जी जी जी, तो चलिए सर हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: कुछ दोस्तों के नाम ले लें मैम आपकी इजाजत?
0: बिल्कुल बिल्कुल श्योर।
1: तो पहले तो मैम आप भी इस गाने में डेडिकेट रहेंगे, और हमारी जो आरजे हैं खुशी जी वो भी, और आनंद सर और राज सर, और हमारे एक दोस्त हैं चंडीगढ़ से सतीश शर्मा जी, और नेत्रपाल सिंह जी, और प्रिंस पासवान जी, और सुनील कुमार बाका ब्याज, और मुक्ति नाथ जी, और तमाम रेडियो मुरादाबाद सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा मैम आपके माध्यम से।
0: चलिए जी, बहुत शुक्रिया।
1: ठाकुर जी भी हैं हमारे दोस्त, वो भी आपके यहाँ कॉल करते हैं मैम, वो हरियाणा से जुड़ते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए सर सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, हम ये गाना सुनना चाहते हैं, बहुत प्यारा गाना है, इस गाने को सुनते उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जेरीना के साथ फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 3:49 हो चुके श्रोताओं, और आइए बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो जी, सर बताइए कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: शाकिर बोल रहे हैं, करूला मुरादाबाद से।
0: शाकिर बात कर रहे हैं जी, बताइए क्या करते हैं सर आप?
1: गरम ढलाई करते हैं, पीतल के खाली गिलास बनाते हैं।
0: पीतल के गिलास बनाते हैं आप?
1: जी जी
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम, गोविंदा की फिल्म का गीत है लेवेटी सिक्स का कोई सा भी गीत सुना दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल, आपको हम गाना सुनवाते हैं। आप किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ, अपने फैमिली है, बस अपने फैमिली
0: ठीक है, ठीक है जी, उन्हीं के लिए खूबसूरत सा गाना है और मैं आपको सुनवाती हूँ, ठीक है सर?
1: ओके ओके मैम।
0: ओके जी, ओके। तो चलिए श्रोताओं, एक लव 86 का गाना सुनते हैं, गोविंदा की मूवी है ये, और इसमें कृष्णा मूर्ति जी की आवाज़ में आप ये गाना सुनेंगे, मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ में। और अभी कॉल करते रहिए, नंबर है 9837896896, क्योंकि कल संडे है और संडे को ये शो नहीं आता है जी।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है आज रीना के साथ। हेलो फरमाइश शो में श्रोताओं, जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं। और समय की बात करूं तो 3:56 हो चुके हैं श्रोताओं। तो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है? गुड आफ्टरनून
1: जी, मेरा नाम मोबीन है।
0: सर जरा बैकग्राउंड की रेडियो बंद कर लीजिए, वॉल्यूम कम कर लीजिए।
1: जी बंद हो गया है।
0: हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोबीन है।
0: मोबीन
1: जी, मोबीन
0: जी, मोबीन जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, बस गर्मी बहुत हो रही है। हवा में
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी बहुत हो रही है, इस गर्मी में अपना ध्यान रखना है।
1: धूप जो है बहुत तेज है।
0: अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: ये एक गांव पड़ता है मैलकपुर निजामपुर रोजमानपुर के पास, घाट रोड पे।
0: ठीक है जी, तो बताइए कौन से गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: ये धर्मकांटा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के।
0: अच्छा, ये गोटेदार लहंगा, ठीक है जी, तो ये हम आपको गाना सुनवाते हैं। किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: नहीं अभी तो ख्याल है, घर की फैमिली है, वही तो किसी का वैसा नाम नहीं है।
0: अच्छा, घर पे ही सुन रहे हैं आप?
1: जी जी घर पे ही है जी।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: ये मैं काम करता हूँ, पेंट का काम करता हूँ मकानों का।
0: अच्छा, अभी मकान बनाने का काम करते हैं?
1: नहीं, पेंट जो होता है।
0: अच्छा अच्छा पेंट, ओके ओके ओके ओके ओके,
1: जी
0: मतलब घरों घरों को रौनक से सजा देते हैं आप। चलिए अच्छी बात है, बट इस गर्मी में अपना ध्यान रखिए सर, ठीक है?
1: काम ही नहीं हो रहा है धूप में, गर्मी में।
0: हाँ बहुत गर्मी है ना सर, इसलिए।
1: लाइट भी थोड़ा सही चल रही है तो थोड़ा बैठे हुए।
0: ठीक है जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके जी, ओके। तो चलिए श्रोताओं, इनके पसंद के गाना सुनते हैं और आपसे भी कहना चाहेंगे, देखिए 4:02 बाकी है, कॉल करते रहिए और अपना फेवरेट वाला गाना सुनते रहिए। फिलहाल तो हम उनके लिए कहेंगे कि इस गर्मी में भी घर की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि धूप में भी उनको काम करना पड़ता है, चाहे घर बनाने का काम करे, चाहे रेहड़ी पर जो ये फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं और टोल टैक्स की जगह पर ये खड़े रहते हैं, मतलब मेहनत है और सिर्फ घर की जिम्मेदारी है। कि हर इंसान चाहता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो किसी भी तरह के परेशानी में ना आए, उनकी देख रेख कर लिए हमारे माँ बाप है, वो कितना कष्ट उठाते हैं और कभी हम उनको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो कभी आप घर वालों से सवाल पूछे ना, तो एक बार ये ज़रूर सोचिए कि हमारे घर वाले करते क्या है और कैसे हमारा लालन पोषण करते हैं, ये ज़रूर देखिएगा। और कभी उनसे किसी भी चीज़ के लिए सवाल कभी मत उठाइएगा श्रोताओं, क्योंकि जितना वो करते हैं ना हमारे लिए, हम उनका आधा भी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो ये गाना है गोटेदार लहंगा, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, आशा भोसले जी की आवाज़ में ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोता, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।
2: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: क्या बात है जी, कुछ गाने ऐसे हैं जिसे सुनकर ना सच में मन फंटास्टिक वाला हो जाता है, बहुत ही शानदार हो जाता है श्रोताओं। समय की बात करूँ तो 4:05 हो चुके हैं और टेम्परेचर अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस है, कम होने वाला नहीं है भैया। वैसे मैं आपको एक खुशखबरी बता दूँ तो बुधवार से ये बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में भी बारिश आने की संभावना जताई जा रही है, और मुझे लगता है कि इस भगवान करे कि संभावना ना हो, बस ये रहम रहम कर जाए मुरादाबाद में, बरस जाए, अपनी बहन वर्षा को भेज दे कुछ दिन के लिए, कम से कम 2 दिन के लिए भेज दीजिए, मतलब ताबड़तोड़ वाली बारिश हो जाए जो इस गर्मी से हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो चलिए श्रोताओं, अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: किस्मत की नसीब नहीं, मैं ख्वाबों की ताबीर नहीं, हकीकत तो जब होगी जब कहीं मेरी तस्वीर नहीं, मैं चलता फिरता सूरज हूँ, मेरा साथ कहाँ तक दोगे तुम, तस्वीर तो मेरी जब होगी जब कहीं मेरी तस्वीर नहीं।
0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने शायरी पेश की है सर। क्या नाम है? गुड आफ्टरनून।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मफूर हुसैन बात कर रहा हूँ मैम। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप?
1: अरे मैम, आपको प्रोग्राम सुनने और आप लोगों की जो थी, आप थे आनंद भाई थे और एक मैडम और थी, आपकी नटखटी बातों ने जो था मोह लिया हमारे दिल को, और जिंदगी कैसे सफलता उत्पन्न की है, कैसे लाइफ में अपने जिंदगी को लाए, सभी प्रकार की बातें आपने बताई महिलाओं के लिए भी सभी के लिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सो मच सर, ये तो हमारा काम है सर, आप सभी के लिए अच्छी अच्छी बातें लेकर आना।
1: रोज लाते हो कुछ ना कुछ, इस पेपर रोज ही सुनता हूँ मैम, बहुत अच्छी जानकारी लेकर आते हो लाइफ के लिए।
0: थैंक यू सो मच सर, तो बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज आप?
1: लेकिन मैम सावन का महीना शुरू होने को है, कल परसों इंशाल्लाह सावन का महीना शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, और जैसा कि आपने अभी अभी कहा कि बुधवार तक जो है बरसात हो जाए, हम यही दुआ करते हैं, तो हम भी साथ में आपके और सभी श्रोताओं के साथ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है बारिश कर दे, तो गर्मी से छुटकारा थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा ठंडक पड़ जाए, बहुत ही भीषण गर्मी है हमें।
0: जी, सर एक्चुअली क्या है ना, इंसान तो फिर भी अपना देख रेख कर सकता है, लेकिन जो पशु पक्षी
1: हाँ
0: है वो कैसे मैनेज करेंगे?
1: हाँ हाँ सभी परेशान है मैं, सभी जीव जंतु सभी परेशान है।
0: तो चलिए सर हम आपको एक गाना सुनवाते हैं, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ, सावन के झूलों ने मुझे बुलाया, डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, रजा हुसैन, गफ्फार हाजी जी, मोहम्मद इशरत, मुकेश भाई, इरशाद भाई, मेराज भाई और मैम हमारी रीना भाई, रीना जी।
0: चलिए जी कोई बात नहीं, डोंट माइंड सर, अब हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है
1: धन्यवाद।
0: जी? चलिए हम ये गाना सुनवाते हैं। कभी कभी होता है श्रोताओं, कुछ भी शब्द हो जाते इधर उधर, लेकिन क्या है, क्या बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी है, सब इंजॉय करो, इंजॉय करना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात है खुश रहो, खुश रहने का कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़े बस। तो चलिए गाना सुनते हैं, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, और सावन अब शुरुआत ही होने वाली है, सावन की शुरुआत हो जाएगी जिसमें भोले बाबा की नगरी हर कोई जाएगा, और उनके ऊपर इतना जल चढ़ाते भैया कि उनको जुकाम हो जाता है और उसके बाद हम सबको जुकाम हो जाता है। चलिए जी।

0: हेलो जी, हेलो। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं और फरमाइश शो में। समय की बात करूं तो 4:15 हो चुके हैं श्रोताओं, और सावन शुरू होते ही ना एक अपने आप में पॉजिटिविटी आने लग जाती है, क्योंकि वो सावन का महीना होता है और नेगेटिविटी का तो मतलब भी नहीं बन सकता है, क्योंकि देवों के देव महादेव का जो वो महीना होता है सावन का महीना, जिसमें हर किसी के जुबान पे बस हर हर महादेव ही रहता है। तो बहुत ही जल्द सावन शुरू होने वाली है श्रोताओं, और सावन के महीने में मतलब रौनक ही अलग हो जाता है। हर गली मोहल्ले से आप निकलेंगे तो बस उन्हीं के गाने, उन्हीं के भजन आप सुनने को मिलेगा आप सभी को। और कहते हैं ना, जैसे जैसे यानी कि कलयुग बढ़ता जाएगा, और अगर आप महादेव के प्रिय भक्त हैं तो कुछ संकटें आप पर आने से भी टल जाती हैं। तो चलिए, फिलहाल हम अपने शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो अगले श्रोता हमारे साथ कनेक्ट हैं वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। आज की शाम बड़ी मस्त। हेलो।
1: हाँ जी, हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, अच्छे हैं मैम। मैं
0: गुड इवनिंग
1: जिला
0: जी, बताइए क्या नाम है आपका?
1: अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बाहर उल्ला संस्कृति की बोल रहा मैं।
0: फतेह खालसा जी, ओके। तो बताइए जी, आज कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: हाँ, जहां तक पसंद का सवाल है तो मैं फिल्म बताता हूँ आपको। फिल्म का नाम है रघुबीर। उसमें एक गाना था, चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया गाना, ये गाने के बोल थे।
0: जी, बिल्कुल सही कहा
1: ये
0: आपने।
1: सुनील शेट्टी की फिल्म है ये।
0: हाँ जी, हाँ जी, सुनील शेट्टी का मूवी है ये। तो बताइए आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? वैसे करते क्या हैं सर आप?
1: देखिए, अपना वो चांदी के वर्क का काम है, घर पर रहकर काम करना होता है तो रेडियो से बराबर जुड़े हुए होते हैं तो अच्छा लगता है।
0: अच्छा, आप डेली रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, रेडियो पे भी सुनते हैं आपका प्रोग्राम और मोबाइल ऐप पर तो सुनते सुनते हैं।
0: अच्छा,

0: ታሪክ ወጥቷል። አዲስ ኮፒስታን ሲቲ ሚኒስትር ከንተ ግራም ፕሬሚታ ብራን ፕሮጀክት ለፍት መግደባት ሲስተም ያዳክተን ታሪክ ፓርክ
1: चलिए जी, सभी के साथ आपको हम ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
0: धन्यवाद
1: जी। चलिए श्रोताओं, हम गाना सुनते हैं और आपसे ये कहना चाहेंगे, सिर्फ एक घंटा है हमारे पास, तो बिंदास बेधड़क होकर हमें कॉल करिए। नंबर है 9823789698 पर आप गाने सुन सकते हैं अपने पसंद के।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। कुमार सानू की आवाज में दिल तेरा दीवाना, और सच में दिल दिलदार होना चाहिए श्रोताओं। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। आप सभी के लिए सुबह से लेकर शाम तक अटपटे चटपटी और कुछ देश दुनिया की जो बातें लेकर आते हैं आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और अभी फरमाइश शो में आप कनेक्ट हैं, जहां आपने कॉल करना होता है, नंबर है 9837896896 पर, और अपना फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं। इनफैक्ट आप डेडिकेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और समय की बात करें तो 4:24 हो चुके हैं, सो आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो,
1: हाँ बोलिए
0: जी। गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप?
1: अच्छा, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका?
1: अनुपम सागर।
0: क्या कहा आपने?
1: अनुपम सागर।
0: अनुपम सागर, ओके सर, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: परदेसी बलिदान।
0: ठीक है जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। किसी का नाम लेना चाहेंगे? ले लीजिए। अगर आप नाम लेना चाहते हैं अपने दोस्तों को तो ले सकते हैं, अदरवाइज फिर
1: सर आप रवि कुमार और गोलू।
0: ठीक है जी, इन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है, चलिए जी, ठीक है जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, बहुत ही शानदार गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, यानी कि उदित नारायण जी की आवाज़ में और यलका याग्निक जी की आवाज़ में गाना सुनेंगे। एवर ग्रीन गाने हैं ये, बहुत ही शानदार गाना है श्रोताओं। और लौट कर आते हैं इसी गाने के बाद, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपसे यही कहना चाहेंगे कि कॉल करते रहिए और अपना फेवरेट वाला गाना सुनते रहिए जी।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
4: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
3: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: कॉल 9045912348।
5: हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग है आर्जरीना के साथ फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 4:34 हो चुके श्रोताओं, और आइए बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं क्योंकि काफी देर से इंतजार कर रही हैं। हेलो,
6: हेलो,
7: हेलो मैम।
5: हाँ जी बोलिए, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
7: जी हम पागुर से बात कर रहे हैं।
5: जी क्या नाम है आपका?
7: अलीशा।
5: क्या करती हो अलीशा आप?
7: सिलाई।
5: ओह सिलाई करती हो आप, नाइस। बताइए कौन से गाने सुनना चाहती हो आप?
7: मैंने शरारत सिखावा।
5: ठीक है जी, किसी का नाम लेना चाहोगी आप?
7: अम्मी है।
5: वैसे आप क्या क्या सिल लेती हो?
7: जी हम पैंट सिलते हैं।
5: पैंट सिलती हो, सूट वगैरह नहीं सिलती हो?
7: जी जींस की पैंट है, दो गाने सिलते हैं
5: हम। अच्छा अच्छा जी, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम आपको एक गाना सुनवाते हैं, ठीक है? गुड बाय। चलिए जी श्रोताओं, हम ये गाना सुनाते हैं धुरंधर मूवी से, बहुत ही शानदार गाना है।

0: हेलो जी, हेलो। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है धुरंधर मूवी से। तेनु शरारत सिखावा जदों ने ना लड़ावा। हाय हाय, कुछ गाने इतने शानदार होते हैं श्रोताओं की क्या ही बोले। और ऊपर से जो ये नए नए गाने आजकल आ रहे हैं ना, मज़ा आ जाता है मतलब सुनकर सच में। तो गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ हेलो फरमाइश शो में श्रोताओं। और समय की बात को तो 4:39 हो चुके हैं और 20 मिनट है हमारे पास। आप कॉल कर सकते हैं और अपना गाना भी सुन सकते हैं। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर।
1: नमस्कार
0: सर, बैकग्राउंड की जो रेडियो है उसको वॉल्यूम कम कर लीजिए।
1: हेलो।
0: हाँ जी, हाँ जी, बताइए कैसे हैं आप? जी अच्छी बात है कि आप हमारा रेडियो सुनते रहते हैं। लौंग लता।
1: हेलो।
0: हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
1: वो फिल्म चाली क्या, वो लेकर पहला पहला प्यार भर के आंखों में सवार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
0: चलिए जी, हम जादू नगरी के दुनिया में लेकर चलते हैं आपको, ठीक है?
1: फिल्म चाली।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, सीआईडी मूवी से ही आपको गाना सुनवाएंगे।
1: ठीक है, धन्यवाद जी।
0: जी आप जादू नगरी में चलेंगे सर मेरे साथ? सर गाना सुनेंगे ना, गाना सुनते सुनते जादू नगरी में पहुंच जाते हैं।
1: हमारे जवाने का गाना है ना।
0: जी बिल्कुल, अच्छा गाना है इसीलिए तो बोला है मैंने।
1: ओल्ड
0: इज गोल्ड, क्या बात है।
1: आप बनारस की बात कर रही थे, इसका नाम भूल गए, एक दिखाई और होती लौंग लता।
0: लौंग लता, जी बिल्कुल सही कहा आपने, लौंग लता। सर मैं भूल गई थी, आपने पहले याद दिलवा देना चाहिए था ना, पहले याद दिलवाते तो मैं पूछ लेती। हाँ मतलब इसका नाम तो मेरे को पता था लेकिन जो वो तिरंगे वाली मिठाई थी उसका नहीं पता था इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा फेमस है। चलिए मैं और आप बनारस चलते हैं सर, ठीक है?
1: धन्यवाद।
0: जी चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: धन्यवाद।
0: ओके जी, ओके। चलिए श्रोताओं ये गाना सुनते हैं। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। जादू नगरी में चलते हैं श्रोताओं, फील करिए आप कि आप जादू नगरी में हैं। और जादू नगरी में जब जाते हैं ना तो ये जो नेगेटिव बात है वो छूट जाती है, बस बिंदास रहने का, कोई भी टेंशन नहीं लेने का, बस चलिए जादू नगरी चलते हैं।

0: रंजीत जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आज जरीना के साथ फरमाइश शो में और समय की बात करूं तो 4:48 हो चुके हैं श्रोताओं, और बस 12 मिनट है हमारे पास। तो बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग।
8: गुड इवनिंग मैम,
7: कैसे हैं आप?
8: मैं बढ़िया हूँ।
7: कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
8: जी मेरा नाम बलवीर सिंह है।
7: हाँ जी,
8: और मैं हिंडौन सिटी राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
7: जी राजस्थान से बात कर रहे हैं, राजस्थान का वेदर कैसा है सर अभी?
8: अभी मैम बहुत गर्मी है।
7: अच्छा गर्मी है।
8: हाँ,
7: क्या करते हैं वैसे आप?
8: जी मैम मैं टीचर हूँ।
7: ओ टीचर है, किस सब्जेक्ट के टीचर है सर आप?
8: मैथ साइंस।
7: अच्छा साइंस के टीचर है आप, CS2। वो क्या है, जल का फॉर्मूला में दिमाग से स्किप हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए। सो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
8: जी मैम मैं गाना सुनता हूँ, तुमसे कितना प्यार है हम कह नहीं सकते।
7: सर कह देना चाहिए, क्यों नहीं कह सकते आप?
8: तुमसे बिछड़ के हम तो जिंदा रह नहीं सकते, क्योंकि वो है ही एक सॉन्ग।
7: जिंदा तो सब रहते हैं सर।
8: नहीं मैम ठीक है मानता हूँ, लेकिन वैसे तब सही है, लेकिन गाना बहुत प्यारा है ये।
7: जी जी जी, चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
8: जी मैम ये गाना मैं मेरी मिसेज कंचन के लिए।
7: अच्छा कंचन जी के लिए सुनना चाहते हैं, बच्चे भी आपके आसपास बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो अभी तो छुट्टियां पड़ रही होगी ना सर?
8: हाँ मैम मैं कल निकलूंगा, अपन के स्कूल खुल जाएंगे सोमवार से।
7: अच्छा सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल?
8: हाँ जी।
7: चलिए बहुत अच्छी बात है सर।
8: और मैम मैं तो अक्सर जैसे FM सुन रहा था, तो आपका सीजन पकड़ गया, तो बहुत प्यारा प्रोग्राम है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
7: थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया कि आपने राजस्थान रहते हुए भी हमारा रेडियो आप सुन रहे हैं।
8: आपका नंबर 2 बार में तो नोट किया। हाँ। ट्राई करता रहा, लगभग 15-20 बार ट्राई कर लिया, तब जाके आपका नंबर लगा।
7: अच्छा अच्छा आपने 2 बार, चलिए आज से मैं थोड़ा धीरे धीरे नंबर बोलूंगी।
8: थैंक यू मैम, नहीं अब तो मैंने नोट कर लिया, ऐड कर लिया आपका।
7: अच्छा अच्छा आप हाँ, मतलब प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके सुन रहे होंगे ना?
8: जी जी मैम।
7: चलिए सर हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
8: जी मैम थैंक यू।
7: जी वेलकम। चलिए श्रोताओं हम गाना सुनवाते हैं आपको, बहुत ही शानदार गाना है, और अभी लास्ट लकी कॉलर देखते हैं कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। लास्ट लकी कॉलर से बात करेंगे और लेंगे यहाँ से जाने की इजाज़त।

0: ये सपना।
1: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक अपनी पसंद का आपको मैं गाना सुनवाऊंगी और हम मिलेंगे आपको मंडे में। मंडे यानी कि इवनिंग वस्ते शो में मिलने वाले हैं शाम 5 बजे, जहाँ आपकी और मेरी ढेर सारी बातें होंगी। और अभी के लिए बहुत ही शानदार गाना, और इसी के साथ मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त। हम आपको फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो अपना ध्यान ज़रूर रखिए जी। बाय।

0: कोठे ऊपर कोठरी, ऊपर से उतरी छोकरी। यारो ये तूफान मेल है या आफत की टोकरी?
1: होय होय होय होय।

0: पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल के ईएएम परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जोयसास जोस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहा, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायके, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कुशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियों और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुँचे।

0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते है बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती हैं, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाईयो काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग

0: पहचान मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं, बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा, तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा, बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से। और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम

0: जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
1: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
0: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
0: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
0: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1 हजार की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 में पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारत वर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है, और इनमें नियत दिवसों में हमारी एएनएम बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है, और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं, और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है, ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं, 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं, और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एएनएम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं कर रहा हूं आपसे बात, और जैसा कि आपको पता है कि जब मैं आता हूं तो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात तो लेकर आता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में। जब आपको सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्या सच में वो सस्ता ऑफर है या फिर आपके लिए एक महंगी गलती? तो दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रूपए में दे रही है,
1: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रूपए का है।
0: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ना तो डिलीवरी आई है, ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है, लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप सबसे, करूंगा और भी बात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

आबशार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
2: आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना। और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट आपके साथ हम ढेर सारी बातें तो करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बात करने वाले हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है। लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण बच्चों को अधिकारों से नजरअंदाज कर दिया जाता है। सो इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी। तो हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। मोस्ट वेलकम है सर, आप कैसे हैं? आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए जरा।
3: देखिए, मैं प्रोफेशनल एज एन एडवोकेट वर्किंग करता हूँ और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ।
2: हाँ जी।
3: और हम लोग कहीं भी अगर कोई अन्याय करता है या कोई भी हमें गलत बात लिखती है तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं।
2: लेकिन सर, आपका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
3: मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है।
2: तो सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, बच्चों के अधिकार आखिरकार है क्या?
3: देखिए, जैसे समाज में बच्चे भी एक समाज का ही हिस्सा है, तो हमारे सरकार ने उनके लिए भी कुछ राइट्स बनाए हुए हैं। खास तो जो बच्चों के अधिकार है, वो हर बच्चे को जन्म से वो अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, सुरक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शोषण से बचाव का अधिकार है और अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: और आजकल कई NGO भी आप देख सकते हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए कई डिफरेंट फील्ड्स में।
2: बिल्कुल।
3: तो हमें राइट्स बच्चों के पता होना सबको जरूरी है।
2: बिल्कुल। सो सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं?
3: देखिए, कानून बच्चों के लिए तो कई बने हुए हैं। जैसे अगर हम लेबर की बात करते हैं, कई फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है। तो लेबर डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेता है, उस पर एक्शन लेता है वो। ठीक है,
2: बिल्कुल सर।
3: और कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि बच्चे कहीं अगर पढ़ने जाते हैं या कहीं किसी जो है स्कूल में जा रहे हैं या कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके साथ कई ऐसी घटनाएं भी आती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी घटनाएं हमने देखी हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो उसमें भी सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और कानून तो है ही है अपनी जगह।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए।
2: बिल्कुल। और सबसे मेन बात तो सर इसमें यही है कि पेरेंट्स को बहुत इसमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आखिरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है?
3: देखिए, शिक्षा का अधिकार हमारा राइट टू एजुकेशन, हमारा फंडामेंटल राइट भी है ये। और ये प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ जो शिक्षा का अधिकार मिल जाता है वो 14 साल तक के लिए उसको होता है। सरकार भी हमारी काफी इसको प्रमोट कर रही है शिक्षा को लेके, क्योंकि अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए बता भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। और जो है सबसे बड़ी चीज है, अगर वो सजग होगा तो उसके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं होगी, अगर उसे नॉलेज होगी पूरी।
2: तो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, आपको पता है जो गवर्नमेंट स्कूल में, उनको तो फ्री ऑफ कोर्स हर चीजें मिलती है।
3: ठीक है।
2: और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको बुक्स भी हमारे स्कूल से ही खरीदनी है, यूनिफॉर्म आप लेना है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि सर इतनी चीजें अवेलेबल नहीं कर पाते।
3: बिल्कुल ठीक बात है रीना जी आपकी। देखिए, मैंने भी कई काफी सोचता हूं मैं कि शिक्षा हमारी सरकार कहाँ जहाँ एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है जो गलत है। तो सोच उनकी थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा कि हर चीज में कमर्शियल नहीं देखना चाहिए। एट आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप शिक्षा के नाम पे बुक्स भी यहाँ से लीजिए, ड्रेसेस भी यहाँ से लीजिए। कमर्शियल मैं मानता हूँ, चलिए रेवेन्यू हर चीज में भाई स्टाफ को सैलरी देनी रहती है, एक्सपेंसेस होते हैं,
4: बिल्कुल,
3: लेकिन इतना कमर्शियल नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो पेरेंट्स हैं जो इस एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते उनको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स फील हो कि हम अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
3: और सरकार को भी हमारे कुछ स्टेप लेना चाहिए कि एक मापदंड ऐसे होने चाहिए, एक फीस, एक रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री लगानी चाहिए कि भी इससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और बुक्स का भी मैं देखता हूँ हर सिलेबस में, हर ईयर जो सिलेबस चेंज हो जाता है। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जैसे बुक्स होती थी हम हाँ। पास आउट होते तो पुरानी बुक से भी हम लोग पढ़ लेते थे।
4: अब तो ये है कि हम यूज ही नहीं कर सकते उस बुक को।
3: अब बुक्स का हर बार सिलेबस चेंज कर देते हैं हर बार, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस चीज को।
4: करेक्ट करेक्ट।
3: तो ऐसा भी कुछ सरकार को होना चाहिए कि 5 साल तक के लिए अगर कोई सिलेबस वो लगा रहे हैं तो 5 साल तक उसे चेंज ना करें वो।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: ऐसा कुछ उनको एक
4: नहीं, ये जो पहले जैसे चलता था कि एक ही बुक अवेलेबल होती थी 10th तक, तो मतलब सेम होती थी सर।
3: बिल्कुल।
4: तो बुक्स आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते
3: थे सीनियर से, जैसे कोई सीनियर पास आउट होता था उनकी बुक से हम लोग भी पढ़ लेते थे, वही हमें भी उसी।
4: और कुछ समझ नहीं आता तो उनसे भी पूछ लेते थे।
3: बिल्कुल गाइडेंस मिल जाती थी।
4: अब तो ये है कि हम बच्चे के अगर बुक पढ़ रहे हैं, अगर वो मुझसे कुछ पूछेगा तो पहले तो मैं उसके उस चीज को पढ़ूंगी,
3: हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है। तो एटलीस्ट प्रोविजन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि 5 साल तक कम से कम बुक्स में कोई सिलेबस ऐसा चेंज ना हो कि
4: बिल्कुल, वो बिल्कुल कंफ्यूज
3: हो और जो है नई बुक्स खरीदनी पड़ जाए।
4: लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देखिए सर, अभी अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई ना करके अभी काम में लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं। तो क्या सर, मुझे लगता है कानूनी अपराध है, तो इसके लिए ये क्या करना चाहिए?
3: देखिए कानूनी अपराध कहीं ना कहीं हम लोग अब खुद ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा है कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी फैमिलीज में बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, और खास तौर पे कुछ कम्युनिटीज में मैंने देखा है कि वो लोग एजुकेशन को सेकेंडरी रखते हैं, अर्निंग को प्राइमरी रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जन्म के साथ ही जैसे बच्चे ने होश संभाला, चलना फिरना शुरू करा, था किसी चीज की उसके अंदर स्किल्स आई तो उसे काम पे लगा देते हैं।
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: जैसे किसी उसे फैक्ट्री में लगा दिया या कोई ऐसा लेबर का काम उसको कराने लग गए। तो बच्चे का क्या होता है, जब वो अर्निंग करने लग जाता है ना, तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा धीरे धीरे
4: खत्म हो जाती है।
3: वो सोचता है भी मेरा तो यही, उसको सिखाया यही जाता है कि यही लाइफ है।
4: बिल्कुल
3: है ना। तो जब उसका बचपन ही आपने मार दिया उसको, तो बेचारा वो क्या करेगा, वो बड़ा होके, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। हम लोगों को पहले बच्चे को बचपन देना चाहिए, है ना।
4: करेक्ट करेक्ट।
3: जब वो बचपन जिएगा सही से, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, तो ऑब्वियस है वो आगे चलेगा,
4: आगे भी बढ़ेगा,
3: बिजनेसमैन भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, एडवोकेट भी बन सकता है, आईएएस पीसीएस भी बन सकता है।
4: सर तो आगे मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि ये बच्चों के साथ अगर जबरदस्ती करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई कानूनी नियम है, कुछ?
3: बिल्कुल हेल्पलाइन भी है और हमारे कुछ एक लॉज भी ऐसे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर बच्चों के साथ कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो आप सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। कई एक एनजीओ से आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एनजीओ भी आज की डेट में कई एनजीओ जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो 1098 है। मैं अपने सभी कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं से बोलूंगा कि 1098 ये नंबर आपको इमरजेंसी में जरूर याद रखना है। अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी हैरेसमेंट होता है तो तुरंत इस नंबर पे आप कॉल मिलाएं। 1098
4: जी। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1098। और चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: तो श्रोताओं, म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट हो गए आप सभी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ अगर कोई भी ऐसी धोखाधड़ी होती है या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको आप काम करवाते हैं और जो बच्चे काम करें पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं? तो सर, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा आखिरकार क्यों जरूरी है।
3: देखिए, बच्चे समाज का भविष्य, अगर उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।
2: बिल्कुल सर।
3: क्योंकि जो, जैसे आपने देखा होगा, एक पौधा होता है, उसको अगर सही से आप खाद पानी दोगे तभी वो अच्छा बड़े होकर एक वृक्ष बनता है और फल देता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी, अगर हमें एक समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक चाहिए, तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें अच्छा माहौल देना पड़ेगा।
2: और सर, हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि ये कहा जाता है कि माता पिता ही बच्चे के लिए पहले गुरु होते हैं,

0: दोनों की। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस नहीं आया, वो केसेस हमारे पास आते रहते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो बच्चों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उनको खास तौर पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है,
1: क्या होता है, करेक्ट
0: पता होना चाहिए उनको। और बच्चों को ये शिक्षा घर के साथ साथ स्कूल्स में भी, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं, क्रीच में जाता है, तो वहाँ पे भी ये शिक्षा उनको जरूर दिलवानी चाहिए बच्चों को, कि उनको पता होना चाहिए कि किसकी इंटेंशन गलत है, कौन हमें कोई लालच दे के बुला रहा है, या जो है इंटेंशन उसकी। बच्चे, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती,
1: बच्चे ये कहते हैं भगवान के रूप,
0: भगवान का रूप होते हैं, कोमल होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है। तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में दिलवानी चाहिए एडमिशन।
1: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है कि कई बार बच्चे जब अपनी बात रखते हैं ना, तो कभी कभी ना हम उनको दबा देते हैं, तो क्या बच्चों को अपनी राय रखने का अधिकार है?
0: बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर बच्चा कोई बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है, या किसी चीज को पूछ रहा है आपसे, या उसके मन में कोई जिज्ञासा है, अगर आप उसको डांट के डपट के उसे चुप करा दोगे तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, है ना। और जब व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है तो उसका बड़े होके बच्चे का जो एक समाज का जो हिस्सा बनता है बड़े होके, कहीं जॉब में जाता है, कहीं बिजनेस में जाता है, तो उसका व्यक्तित्व वो निखर नहीं पाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो निश्चित तौर पे ये है कि अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है या जिज्ञासा है उसके अंदर, तो आपको पोलाइट वे में उसकी बात को समझना चाहिए। हो सकता है वो इतनी लॉजिकल बात पूछ रहा हो कि आप उसको समझ पाए।
1: करेक्ट।
0: कई बार हमें बच्चों की बातें, बचपन की बात, हम लोग उसे मजाक में उड़ा
1: मजाक में उड़ाते हैं,
0: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बात मजाक की नहीं, कुछ बात गंभीर भी हो सकती है। बच्चा अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सहजता से सुनते हुए उसको समझे और उसका निदान करें।
1: बिल्कुल जी, ये तो सर आपने बहुत सही बात कही कि बच्चों की बातें हर सिचुएशन में हमें सुननी चाहिए उनकी बातें, कि क्योंकि कुछ नहीं पता उसके साथ बाहर क्या हुआ है, और वो घर पर आके बता रहे, तो कभी कभी ना डिले कर देते हम कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ।
0: पता चला बच्चे के साथ कोई हैपनिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत गलत हुआ है, और बच्चा घर पे डर के बता नहीं पाता क्योंकि पेरेंट्स डांट डपट देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कुंठा का भाव बच्चे के अंदर भर जाता है, और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के भी सुसाइड के केसेस आए काफी।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो आपको उससे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना है एकदम।
1: सर आपने डिप्रेशन की बात कही है, तो मैं एक बात और रखना चाहूंगी आपके साथ कि आजकल देखते हैं आप फोन हर माता पिता के पास है, हर बच्चे के पास है, जिसके वजह से माता पिता बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने टीना।
1: तो सर मुझे लगता है कि इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को?
0: टाइम तो बिल्कुल जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, मेरी राय यही है, लेकिन कोविड के बाद से जो चीजें अब चेंज हुई हैं, तो लोग ज्यादातर स्क्रीन टाइम, मेरा भी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हम लोग उसे प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं। अगर हमें काम की चीज देखनी होती है तभी हम यूज करते हैं उसको, लेकिन टाइम जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मोबाइल का कम यूज करें, टीवी कम देखें, उनको आदत डलवाइए, वो बुक्स पढ़ें, नॉवल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। अब आज की डेट में सोशल मीडिया आप देखेंगे, मोबाइल पे इतने वल्गर कंटेंट आते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, करेक्ट,
0: कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, तो बच्चा उसको देखता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सहन में चीजें बैठती
1: हैं। बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, है ना, टीवी कम से कम देखें,
1: और मुझे लगता है कि इसका ध्यान पेरेंट्स ही देंगे तो बहुत
0: पेरेंट्स
1: अच्छा
0: रहेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और छोटे बच्चों को तो खास तौर पे मोबाइल नहीं दें। बड़े बच्चों का तो चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए गैजेट्स का यूज भी है, मिसयूज भी है, दोनों ही चीजें हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो एक सर्टेन एज के बाद हमें जो है उन्हें यूज करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन भी क्लासेस होती
1: है। अगर सर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी भाभी क्या करती है, काम करती रहती है, वो छोटा है अभी 2 साल का ही है, तो वो रोने लग जाता है तो घर पे कोई होता नहीं है संभालने के लिए, उनको फोन पकड़ा देती है। अब फोन पकड़ाने के चक्कर में उस बच्चे का आंख मतलब हमेशा रेड रहने लग गया।
0: हाँ, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा है, इसी वजह से उसकी आईज पे इफेक्ट आया है।
1: वही ना, बच्चों की लत लग गई, अब वो हटना,
0: फोन एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज है, किसी भी चीज का हो जाए, तो उस चीजों को ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। सर तो हम आगे बढ़ेंगे कि स्कूल में बच्चों के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए एकदम?
0: देखिए स्कूल में बच्चों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या कोई भी ऐसा हैरेसमेंट होता है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत देनी चाहिए, जो संबंधित जो भी ऑफिसर या अधिकारी है उसको देनी चाहिए, और पेरेंट्स को तुरंत उस पर एक्शन लेके कार्य करनी चाहिए, क्योंकि

0: बच्चे के सेहत से या उसके मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पे बच्चा कोई भी सेटबैक का कोई ऐसा कदम भी उठा सकता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, उनको जाति के ऊपर भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जाति ये है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रीना आपने। तो ये कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस खास तौर पे इसको मॉनिटर करना चाहिए और ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेके उनको एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा वॉच भी करना चाहिए।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: टीचर्स अपने ऐसे रखें जो माहौल अच्छा बना के रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों में हमें ना ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चों के साथ बातें करते हैं, बच्चे मुझे लगता है कि वही सीखते हैं उस टाइम। तो कहीं ना कहीं तो एक तो हम ही होते हैं कि बच्चों को भेदभाव सिखाते हैं कि ये जाति ये है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसी चीज को खत्म करना चाहिए।
0: बिल्कुल खत्म होना चाहिए,
1: तभी जाकर हम बच्चे भेदभाव जो हो रहा है उनके साथ स्कूल में वो नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल ठीक बात है। आप बचपन से ही बच्चों के बीच में जो आप माहौल क्रिएट करेंगे तो उसका ही प्रभाव आगे चल के आपको देखने को मिलता है।
1: सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि शो में समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है?
0: देखिए, समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। अगर कहीं भी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको लेके उसको शिकायत करनी चाहिए और बच्चे को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। अगर कहीं भी आप किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता देखें तो आप तुरंत उसको हेल्प करें, लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, लोकल जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैंने एक आपको अभी नंबर बताया था 1098 हेल्पलाइन नंबर, तुरंत आप मिलाएंगे तो वहाँ से आपको तुरंत हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पे जो है आप किसी का भविष्य बचा सकते हैं।
1: करेक्ट करेक्ट। वो ये ना कि भेदभाव ना रखे, चाहे बच्चे कैसा भी हो, किसी का भी हो, बच्चे भगवान का ही रूप
0: बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो आपको ये सोचना है कि भगवान का रूप है, हमें इसकी हेल्प करनी है।
1: करेक्ट करेक्ट। सो सर, हम यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। श्रोताओं, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है, तो आप हमें साथ मैसेज कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: तो सर, हम आगे बढ़ते अपने शो में और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के टाइम अगर देखा जाए तो पेरेंट्स यानी कि बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लेकर ना इतना हार्म है कि उनको सुबह से लेकर शाम तक बुक पढ़ते रहो, मतलब खेलने की एक्टिविटी की बात आती है तो यही रहता है कि पहले अपना होमवर्क कम्प्लीट करो। तो लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है।
3: देखिए, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो लोड डाला जा रहा है आज की डेट में, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि एक पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक पैरामीटर उन्होंने बना लिया है कि वही पड़ोसी का बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो हमारा बच्चा कम नहीं आना चाहिए, उसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए। तो ये ना कहीं बच्चों के बीच में कॉम्प्लेक्शन क्रिएट कर देगा और जो है ये जो कॉम्प्लेक्शन है ना, ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है।
2: करेक्ट।
3: तो आप उसको हर समय अगर एक प्रेशर करो कि भाई बुक्स लेके पढ़ाई करो और तुम जो है मार्क्स कम है तुम्हारे, ये जो है उसका देखो कैसा आया तुम्हारे फ्रेंड का मार्क्स, तुम्हारे कम क्यों है, तो इस तरीके से अगर आप उसको बोल रहे हो तो ये भी एक तरीके से एक जो है हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है ना। आप
2: कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर हार्म हो रहा है
3: उनका मेंटल पीस हार्म हो रहा है, उनकी हेल्थ हार्म हो रही है। आप बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो वहां जाएगा, उसको खेलने उतने का टाइम दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे पढ़ाई जरूरी है उसी
2: हिसाब से खेल कूद
3: भी जरूरी है, फिटनेस भी जरूरी है।
2: करेक्ट।
3: और खेल कूद से, फिटनेस से हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील आती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है।
2: बिल्कुल।
3: और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में तो आप उस फील्ड में वर्क करिए, उसको जानने की

0: उसको एक डायरेक्शन दीजिए जरूर, लेकिन उसको बाउंड मत करिए कि नहीं यही तेरे लिए सही डायरेक्शन है, वो उसको चूज करने दीजिए।
1: करेक्ट। और सही गलत का देखिए पेरेंट्स तो समझाते लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में भी उनकी राय भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, पढ़ना ही है चाहे कैसे भी करो, और बाद में ये होता है कि बच्चे पूरी जिंदगी कोसते रह जाए कि मैं करना क्या चाह रहा था, कर क्या रहा हूँ, उसको वो अच्छे से नहीं कर पाते
0: हो जाते हैं। बहुत से बच्चों का हमने देखा है कि उनको जो है फील्ड उन्होंने करा बीटेक है और जॉब कर रहे हैं वो बैंक में मार्केटिंग की। बीटेक का आप रिलेशन आप सोचिए कि उसको मार्केटिंग की जॉब से आपने उसको कनेक्ट कर दिया। हो सकता है अगर आप उसे मार्केटिंग में एमबीए की होता तो हो सकता है वो उसको और अच्छा कैरियर में ग्रोथ मिलता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप बच्चे को उसका इंटरेस्ट समझिए। कई कई एग्जाम्पल्स हैं, सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स आ रही है, तो हमको समझना चाहिए कि कम से कम बच्चे को फ्री छोड़े, उसको सही डायरेक्शन खुद चूज करने दो, उसके ऊपर कम से कम बाउंडेशन ना लगाए। हाँ उसको ध्यान जरूर रखिए, उसको डायरेक्शन जरूर दिखाएं आप।
1: करेक्ट।
0: लेकिन डायरेक्शन दिखाने के बावजूद उसका अगर इंटरेस्ट आपको लगता है दूसरी फील्ड में है, तो आपको उसी फील्ड में उसको थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। सो हम आगे बढ़ते सर और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे कई बार ना सर बाहर जाते हैं या फिर घर किसी के घर भी जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं और उनको वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और कभी कभी वो घर पर भी बताते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं बताते कि नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी हम नहीं बताएंगे, उस चीज को दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज आगे बढ़ा रहे, उनको फोर्स कर रहे कि तुम जब बच्चों को डांट नहीं रहे हो तो इसका मतलब बच्चे आगे ही जाएगा, उसको यही लत लग जाएगी चाहिए तो अच्छी बात है, जब हमारे घर वाले ही कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ और ही होगा ये। तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए ये बहुत गलत हैबिट है। अगर आप बच्चे आपके बच्चे के अंदर ये आदत है कि वो किसी भी चीज को उठा लेता है बिना पूछे आपसे ले लेता है ना, दुबका देता है कहीं, तो अभी तो देखिए बचपन में आपको लगेगा कि बच्चा है, बचपन की बातें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के यही जो छोटी छोटी बातें होती हैं बड़ा रूप ले लेती हैं। हो सकता है कल को उसके अंदर ये जो हैबिट्स है इतनी ज्यादा पनप जाए कि कोई बड़ा क्राइम कर दे।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: और जब बड़ा क्राइम करेगा तो निश्चित तौर पर उसको कैरियर पे भी उसके टैग लगेगा और आपकी भी उसमें इंसल्ट होगी। तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अगर बच्चे के अंदर ऐसी कोई आदत है या कोई चीजों को छुपाने की आदत है तो सबसे पहली चीज तो ये उससे फ्रेंडली अप्रोच रखिए बच्चे से। मैंने पहले भी अपने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि बच्चे से हमें फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, उसको डांटे मारे नहीं, और काउंसलिंग सेशंस एजुकेशन सेशंस उसके लिए अरेंज करें, उसको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। आप किसी दूसरे के घर पे अगर जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए।
1: करेक्ट।
0: तो इन चीजों का छोटी छोटी चीजों को आपको बचपन से ही उसको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन एक मैनर्स उसको एटिकेट्स सिखाने पड़ेंगे। अगर उस चीज को आप बचपन में सोच के टाल देते हैं तो आगे चल के यही जो बचपन की बातें हैं बड़ी हो जाती हैं, और बड़ा जब कोई क्राइम होता है तो उसका कुछ आंसर नहीं होता,
1: उसका सॉल्यूशन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है,
0: बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को हमें अभी से ही ध्यान रखना चाहिए।
1: और सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बच्चे अगर टीचर उनको मार भी रहा है तो अच्छी चीज के लिए मारते थे, लेकिन उसके टाइम अगर मार देते हैं बच्चों के ऊपर तो पेरेंट्स सर पर चढ़ जाते हैं कि मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ बच्चों के ही मतलब साथ दे रहे हैं कि गलत चीजों को साथ दे रहे हैं, तो क्या सर ये सही है?
0: देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: मैं इसमें ये नहीं कहता कि टीचर जो मारते थे वो ठीक करते थे, और ये भी नहीं बोलूंगा कि टीचर नहीं मारते तो ठीक करते।
1: हाँ।
0: जब हम अपने टाइम की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे, हम स्कूलिंग करते तो हमें टीचर्स डांटते भी थे, डपटते भी थे, पनिशमेंट भी देते थे, लेकिन उस पनिशमेंट का लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि आपको कोई हर्ट हो।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: आपके मन पे आपके दिमाग में वो चीज इतनी बुरी तरह छप जाए कि आप उसको भूल ना पाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो पनिशमेंट भी थोड़ा जरूरी है, लेकिन उस लेवल तक कि बच्चे को एटलीस्ट लगना चाहिए हाँ भी ये गलत काम है, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिला है, मैं अच्छा करूंगा, तो उसका आपको एप्रिसिएशन भी दीजिए बच्चे को।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा करे तो एप्रिसिएशन भी दीजिए उसको, तो उसको कम से कम बच्चे को फील नहीं होगा नहीं हर बार मुझे डांटा जाता है। और देखिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कुछ केसेस ऐसे भी आए कि टीचर ने अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया या हर्ट किया है तो उसमें बच्चे की जान तक पे बनाई है।
1: करेक्ट। ये सर
0: तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज हमारी बना रखी हैं कि आप बच्चे को हर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो देखिए अपने बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है कि हमें बच्चे को कैसे समझाना चाहिए,
1: कैसे टेक ओवर करना चाहिए
0: उसको, और जो है हर चीज का सॉल्यूशन पनिशमेंट

0: भी नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बेटर तो यही रहेगा कि उसको समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें, एजुकेशन से समझाएं, और थोड़ी बहुत डांट डपट भी बच्चों के लिए मैं मानता हूँ ठीक भी होती है, लेकिन बस इतनी बाउंड्रीज में होनी चाहिए कि उसके मन, उसके मस्तिष्क पे उसका ज्यादा
1: कोई भी हार्म ना हो चीज, ताकि उस चीज को, उस चीज से वो निकल ही ना सके, आगे बढ़ ही ना सके,
0: बढ़ ही ना सके, उसको सोच के बैठ जाए
1: कि हाँ उसको आगे कहीं आगे भी बढ़ रहा है तो सोचेगा नहीं मेरे साथ तो ये हो चुका है तो मैं शायद ये चीज को, इस कदम को नहीं उठाऊंगा, क्या पता वो सर सही भी हो।
0: डेफिनेटली वो मैंने बताया ना आपको कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही एक इस चीज को हम कह सकते हैं, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, मिलते हैं आप सभी से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर, कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है। सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। एक छोटी सी गलती, एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, फेक ओटीपी कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका ओटीपी, एटीएम और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है। इसीलिए सतर्क रहिए और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए, ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें, तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगिया यानी कि शिकार बन जाते हैं। और ऊपर से भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा, वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर डर जाते हैं। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी।
4: तो सबसे पहले आप बताइए सर, कैसे हैं आप?
5: बहुत बढ़िया, और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिसनर्स हैं, जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर्स हैं, उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में।
4: क्या बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब पीएचडी भी कर रखी है आपने, एडवोकेट।
5: पीएचडी मेरी ऑनरिस कोर्स में है, मानत उपाधि जिसको बोलते हैं। तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो उनके द्वारा समाज में जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है, जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है, उनको हेल्प करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था।
4: तो मतलब पीएचडी के बाद मतलब हाँ, एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में?
5: देखिए, जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी, और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशन पढ़ाता था मैं। अच्छा, उससे अच्छा। पहले फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है एमबीए करना चाहिए, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए। फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा, और के लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था। और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ, कुछ हैपनिंग हुई। मैंने कहा नहीं, अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं।
4: और मुझे लगता है कि सर, जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे?
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो सर, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है?
5: देखिए, हम कोई भी चीज अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है, वो एकदम 10 रुपए में मिलती है, तो कस्टमर क्या होता है, एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। उसी लालच में हम क्या करते हैं, किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके होता है जैसे इसका ये जो मेलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
4: उसके फोन में कनेक्ट
5: दूसरी तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी है उनके पास चला जाता है उसका एक्सेस, और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या है, वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है, और जिससे हमें नुकसान हो सकता है वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता।
4: करेक्ट करेक्ट।
5: पीछे कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, उसका फेस हमें पता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, दूसरे सिटी में बैठे होते हैं, और कई बार पुलिस को भी बहुत बड़ी जो है एक चैलेंजेस हो जाते हैं कि साइबर अपराधियों को ढूंढना है।
4: लेकिन
5: आज के युग में जो एक हमारी जो टेक्नोलॉजी एक जो इतना ज्यादा एडवांस हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, कहीं ना कहीं फायदे भी है। तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है, और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना, यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो ताला तोड़ देता है, लेकिन यहाँ किसी चोर को किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो श्रोता, हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
5: हाँ रीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। साइबर अपराध जो है, पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए, साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया, आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है, वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि भाई जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है, जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और प्रभाव साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
4: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
5: देखिए, ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
4: एक आसान जरिया।
5: ठीक है, अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो आपका अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मेलाफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए, तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दें, और याद रखिए ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है।
4: बिल्कुल
5: आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, उसने ओटीपी डाला अपने आपके अकाउंट से, जो भी उसको चीज
4: पैसे चाहिए थे
5: या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया।
4: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
5: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में चाबी दे दी। तो जब आपने ओटीपी दे दिया तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया।
4: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
5: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है। बिल्कुल, वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
4: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें कभी भी श्रोताओं, ओटीपी कोई भी हो, देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि जांच जरूर करिए। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी, पैन या पासवर्ड मांगता है?
5: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे, मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो वित्तीय संस्थाएं, वो कभी भी ओटीपी, पिन, एटीएम या सीवीवी या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते। ये ऊपर से आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है। और जो बैंक की तरफ से भी दिन प्रतिदिन जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कस्टमर्स के लिए, तो आप कभी भी जो है इस तरीके की कोई जानकारी अगर फोन पे मांगे तो उसको बिल्कुल साझा न करें।
4: बिल्कुल श्रोताओं, नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक से कभी भी आपको अगर कॉल आता है तो इस तरीके से वो बातें करते ही नहीं है, पहली बात। तो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं?
5: देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है आज की डेट में कि लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा एकदम आ जाता है, ठीक है, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश मामलों में क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब पैसा भेजना होता है, ना कि आना।
4: बिल्कुल करेक्ट।
5: तो आपने अगर क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल दिया तो पैसे आपके चले गए एकदम, आते नहीं। तो कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि सामने वाले ने उसको फोन करके कहा मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा, आप उसको स्कैन करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला तो उसके अकाउंट से पैसे चले गए उतने।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो आप पहले उसको चेक करें कि उसमें रिसीव लिख के आ रहा है या सेंट में लिख आ रहा है। तो आप अगर क्यूआर कोड किसी ने आपको भेजा है तो उसमें डिटेल थोड़ी सी नीचे लिख के आती है, और अननोन कोई अगर आपसे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें। तत्काल उसको, फोन को ब्लॉक कर दें, और कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगता है कोई मैलिशियस हो सकता है या वायरस हो सकता है तो उसको कभी भी उसको टच ना करें बिल्कुल भी।
4: बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम आजकल डिजिटल जमाना है सर, कहीं भी सामान भी लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेयर होंगे जिनके पास कैश हो रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन पैसे रहते हैं, चाहे आप ऑटो में जाइए।
5: बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से पैसा प्राप्त तो मैं क्यों पिन डालूंगा?
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो जिसको पैसा भेजना है वो पिन डालता है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि पैसा लेने के लिए पिन डालिए तो समझ जाइए कि वो आपसे ठगी का प्रयास कर रहा है।
4: अब उसने सीधा कह दिया पैसा लेने के लिए, तो मतलब कि वो डालेंगे।
5: अगर मेरे को वो पैसा भेज रहा है तो मैं क्यों पिन डालूंगा? तो पिन आपसे अगर वो मांगे और कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ कि पिन दे दीजिए, तो समझ जाइए वो ठगी का प्रयास कर रहा है।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए सर, आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर, आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान?
5: देखिए, सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है। क्योंकि फोन पे क्या होता है, आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन क्यूआर कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया, और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है अपने सारी जो निजी जानकारी है, जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को, मित्रों को फोन कर सकता है।
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
5: पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कि केसेस में कि फेसबुक पे, मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने क्यूआर कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास में, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये
5: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे हाँ। उनको, आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
4: ये बिल्कुल वही
5: भाई रीना को पैसे की जरूरत है ना।
4: बिल्कुल।
5: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है, और किसी को भी आप अपना फोन अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
4: बिल्कुल
5: नहीं
4: देना है,
5: और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
4: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोताओं। और
5: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी ओटीपी जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको भी साझा ना करें।
4: बिल्कुल। और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो मुझे मैसेज करिए कॉल पैसे के, मतलब पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, है ना सर? ये मतलब हमें पूछ लेना चाहिए,
5: आपको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको खुद फोन करेगा पैसे के लिए।
4: बिल्कुल। मैसेज क्यों करेगा? क्योंकि आजकल इतना मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हाँ हम व्हाट्सएप एकदम ओपन करके देख लें, इंस्टा एकदम ओपन करके देख लें।
5: तो आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लें कि वास्तव में कोई जो है आपका कोई रिलेटिव वो उसी ने मैसेज किया है, या वेरीफाई आपसे फोन पे बात ना हो जाए, व्यक्तिगत मिल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
4: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर?
5: देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं, कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ईडी से हम बोल रहे हैं, कभी सीबीआई से कभी वो सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठाल देते हैं वो।
4: बिल्कुल।
5: डर बैठाल के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
4: क्या बात।
5: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
4: नहीं है,
5: ठीक है। किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डरा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखाए, तो आप पहले उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें, या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
5: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं। हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
4: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
5: देखिए, लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं, वो फोटोज डाल देते हैं, या बैंक की जानकारी देते हैं, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: आपकी फोटोज दिखा के उस पे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
4: तो प्रूफ मिल गया उनको,
5: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो, तो उससे पैसे की डिमांड कर सकता है, या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
4: सर, बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं, इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि यार डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर, एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खाना हो, मतलब वट एवर कुछ भी हो, हम चाहते कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
5: देखिए आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए, बाजार ना जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेहरे,
4: यानी कि सस्ते की चीज में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए।
5: नहीं, ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, तो आप पहले उसका URL चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का URL जांचें। अज्ञात लिंक से खरीदारी बिल्कुल ना करें, जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको साहब मूवी की 2 टिकट मिल जाएगी,
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: ठीक है, या आपको इतने % छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा, तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुने, मतलब अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं, कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
4: क्या बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
5: जी देखिए, बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में, क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है, और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, वो एकदम से क्या करते हैं, कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं, कोई क्यूरियोसिटी। ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में, जैसे कोई एकदम एडवर्टीजमेंट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आया, उन्होंने एकदम उसको क्लिक किया और जो है उसकी डीप में और ज्यादा विंडो जो है URL पे जाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, हर चीज को, हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती, उसी तरीके से
4: बिल्कुल बिल्कुल
5: स्क्रीन पे हर चीज आपकी बेनिफिट की नहीं होती है ना, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, और किसी भी अननोन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें।
4: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है श्रोताओं, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोच समझ के जरूर करिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी से लोग कैसे बचे?
5: देखिए मोस्टली लोग आजकल स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो अब क्या है, धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, तो जितने भी साइबर अपराधी हैं तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे और ठगी करने लगे हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा दुगना करने का वादा कर रहा है एक सर्टन डेज में कि भाई इतने निश्चित रूप में इतने दिन में दुगना कर दूंगा और बिना कोई रिस्क के आपको मुनाफा मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है वो कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए।
4: बिल्कुल।
5: दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी वैध निवेश 100% गारंटी नहीं देता। जो वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी, जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, वो कभी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपका पैसा जो है 100% दुगना हो जाएगा।
4: दुगना हो जाएगा।
5: तो निवेश से पहले अगर आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी ऑनलाइन लेते हैं, तो सबसे पहली चीज कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका, ठीक है,
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: उसका लाइसेंस उसका चेक करिए, उसकी विश्वसनीयता जब आप जांचे तभी आगे बढ़िए उसको।
4: बिल्कुल बिल्कुल
5: जी।
4: यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कट जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
5: देखिए अगर आपके कोई आपने कोई अननोन लिंक पे एकदम आपने क्लिक किया है और आपको लगता है कि भाई एकदम जो है पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो सबसे पहले तो आप बैंक को सूचित करें, खाते को आप एकदम जो उसको फ्रीज कराइए ताकि उसमें अगली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, ठीक है। तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, नंबर आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई साइबर घटना हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। हाँ, इस पे कॉल करके आपको तुरंत कंप्लेंट अपनी लॉन्च करनी है, जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका पैसा रिफंड आने की बन जाती है, ठीक है, पैसे को रोकने की संभावना उतनी अधिक होगी अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेंट आपने लॉन्च कराएंगे तो पैसे की वापसी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
4: तो क्या सर ठगी जो पैसे हो जाते हैं क्या वापस मिल सकते हैं?
5: हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कई मामलों में संभव है, अगर आपने टाइमली कंप्लेंट लिखा दी है, टाइमली आपने एक्शन लिया है, तो आपको जो है ठगी आपके साथ हुई है तो पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी करी
4: जाएगी। बिल्कुल, मतलब जल्दी की जाए तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपके पैसे मिल सकते
5: हैं, पैसे आपके वापस हो सकते हैं अगर आपने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है। आपने साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कंप्लेन लॉक कराइए एकदम, और जो है ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए धनराशि को फ्रीज करने की, उससे क्या होता है उनको टाइम मिल जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो फ्रीज कर देते हैं उस अकाउंट को जिस अकाउंट में पैसे आपके गए हैं, तो वहाँ से वो जितना पैसा आपका गया तो वापस दिलाने के लिए वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं।
4: क्या बात है। तो श्रोताओ, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सोचिए मत, सीधा बैंक जाइए, वहाँ पर उनको जानकारी दीजिए कि जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है, ताकि आपका पैसा जल्दी हो सके और जल्दी आपको मिल सके।
5: खाता तुरंत फ्रीज कराना जरूरी होता है, क्योंकि वो साइबर अपराधी जिसने करी है तो दोबारा भी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करेगा। जब आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा तो पैसे से ट्रांसफर होगा नहीं उसमें, और कंप्लेंट आप लॉक करा देंगे तो आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होगा किसी अन्य खाते में गया होगा तो ट्रेस हो जाता है।
4: अच्छा,
5: तो जब अकाउंट ट्रेस हो जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा जो रकम हमारे अकाउंट से गई है वो वापस आ जाए।
4: सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रोताओं के लिए आपकी सबसे 5 महत्वपूर्ण सलाह क्या हो सकता है।
5: देखिए, मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है यही एक एडवाइस करूंगा, तो पहला तो ये कि आप कभी भी अपना OTP किसी को मत दीजिए, पिन आपका है, पासवर्ड है, कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें बिल्कुल भी। दूसरा ये कि कोई भी अननोन लिंक आए तो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें,
4: इग्नोर करना है। हाँ।
5: तीसरा ये कि QR कोड सोर्स समझकर स्कैन करें, जैसे हमारी आता था ना, हम कहीं भी QR कोड स्कैन कर लेते हैं, कहीं भी पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं तो सोच समझ के स्कैन करें उसको, ठीक है। चौथा ये कि जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में ना लें। और पांचवा ये है कि अगर ठगी होती है आपके साथ तो सबसे पहले आपको 1930 पे साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर, इस पे तुरंत शिकायत अपनी जो है दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं।
4: क्या बात है।
5: ये
4: सर, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे।
5: देखिए, कम्युनिटी आपका रेडियो है तो आप कम्युनिटी की बात करते हो, और हर बार आप अवेयरनेस की कुछ ना कुछ लोगों को इतना आप जो है अवेयर करते हो, आपके माध्यम से जो है हमारी श्रोताओं से बात हो पाती है, तो मैं यही बस अभी आपके कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स है कि साइबर सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है ये हमारी, है ना, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी नीड है। और घर का ताला टूटने से तो नुकसान सीमित होता है, लेकिन मोबाइलों का अगर आपके बैंक खाते की जानकारी सुरक्षा टूट जाए तो जीवन भर की कमाई आपकी खतरे में
4: पड़ सकती है।
5: तो इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें, और अपने परिवार को भी साइबर सुरक्षा के नियम अवश्य सिखाएं, और जो है OTP पिन और पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, इन्हें कभी भी किसी के साथ भी साझा न करें। और याद रखिए, साइबर अपराधी आपके बैंक की सुरक्षा नहीं तोड़ते।

0: टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
5: स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्धनगर में दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 96 में बने नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमी कंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई

0: शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
1: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी मां होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट प्वाइंट्स लगाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट प्वाइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षा काल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने एक हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अरे थारी किस्मत में गुलाम लिखे है। रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिले तेरे।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ संख्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा और संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी छात्रों से अपील की है कि यदि किसी कोचिंग संस्थान में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी संदेश, ईमेल या फोन के माध्यम से प्रशासन को दें।
1: एक महीने का टाइम है, दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 900 या 1000 नंबर से मतलब नहीं है, मतलब है बच्चों की जान से, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास फायर ऑडिट नहीं है, जिनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, जिनकी बिल्डिंग में सेफ्टी और सिक्योरिटी के सभी मेजर्स नहीं है, उनको सील कर दिया जाएगा यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे।
0: दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आज 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा कुछ नए मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है। पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति से संबंधित जिला अध्यक्षों ने अपने अपने जिलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि नई सूची में महिला सशक्तिकरण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता के अनुरूप 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित टेक फोर फ्यूचर कार्यक्रम के समापन समारोह में आज सीएम श्री स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने नवाचार आधारित प्रोजेक्ट और मॉडल प्रस्तुत किए। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य रोजमर्रा की समस्याओं का तकनीक के जरिए समाधान देना था। समारोह में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, नए विचार और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता दिल्ली के युवाओं की प्रतिभा को दिखाती है। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूलों में रोबोटिक्स लैब और स्मार्ट क्लासरूम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
2: हम आपको रोबोटिक लैब्स और स्मार्ट क्लासेस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप तकनीक के उपभोक्ता नहीं, तकनीक के निर्माता बने। आपकी जिज्ञासा को कभी मरने मत देना, क्योंकि भविष्य उन्हीं से है जो आज की सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह कल चांदपुर खुर्द से चांदपुर कला लिंक रोड और माजरा रोड में उच्च वोल्टेज तारों के स्थानांतरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बवाना विधानसभा में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक के कुलपति के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट पर दी गई जानकारी में श्री संधू ने बताया कि बैठक में नई तकनीकों के बढ़ते असर और उनका लोगों की समस्याओं के समाधान में बेहतर इस्तेमाल करने पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रबंधन के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 17वें बैच के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री संधू ने कहा कि आज के समय में प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम को बेहतर तरीके से करना या संसाधनों का सही उपयोग करना नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पंजीकरण प्रक्रिया का पहला चरण शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्वविद्यालय ने बताया कि सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा देने वाले छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, वे सामान्य सीट आवंटन प्रणाली यानी सीएसएएस 2026 पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के 67 कॉलेजों में 73 स्नातक पाठ्यक्रमों और 100 से अधिक बीए कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि पंजीकरण केवल सीयूईटी यूजी 2026 की आवेदन संख्या के माध्यम से ही किया जा सकेगा। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनके पास से प्रतिबंधित नशीले दवाओं की 1300 गोलियां बरामद हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 22 लाख रुपए से अधिक नकद, करीब 35 लाख रुपए के सोने के गहने, 6,20,000 रुपए के चांदी के गहने और एक स्कूटी भी जब्त की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और ऐसे संगठित गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने गाजियाबाद में जमीन और अचल संपत्ति धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 4 स्थानों पर छानबीन की है। यह अभियान सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों के ठिकानों पर गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत चलाया गया। छापों के दौरान एजेंसी ने धन के लेन देन, संपत्तियों, कंपनियों के वित्तीय विवरणों और कई अन्य संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य और औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज उत्तर प्रदेश के जेवर में अंबर और एसेंट के सर्किट विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि आज दुनिया विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और सक्षम विनिर्माण भागीदारी की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उस भरोसे का केंद्र बनकर उभरा है। श्री वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी नीतियां, कुशल युवा कार्यबल और तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे के कारण भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का स्वाभाविक केंद्र बना।

0: pegue muito. HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपना विवरण पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
1: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। एमएसएमई दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े सभी उद्यमियों को शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी में बाल संस्कार शिविर 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि शिविर ने बच्चों को केवल सुखद स्मृतियां ही नहीं दी, बल्कि उन्हें ऐसे संस्कार, अनुशासन और संस्कृति मूल्यों से भी समृद्ध किया है जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करेंगे। श्री गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष 10,000 पौधे लगाने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने टैंकर आधारित जलापूर्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 82,117 से अधिक अतिरिक्त टैंकर जलापूर्ति दर्ज की है। जल बोर्ड ने बताया कि पिछले वर्ष मई में जहां 1,06,501 टैंकर जलापूर्ति दर्ज की गई थी, वहीं इस वर्ष मई में यह संख्या बढ़कर 1,88,618 टैंकर जलापूर्ति तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में हर वर्ष लगभग 1,78,000 से 1,87,000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। इसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन जीआई।
0: राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच कल समझौता हुआ। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। श्री सूद ने कहा कि इन दोनों प्रतियोगिताओं में 50 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
3: फेडरेशन के अंतर्गत जहां बैडमिंटन और रेसलिंग के इंटरनेशनल खेल होंगे, जिसमें
2: मुख्यमंत्री डॉ मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में हर वर्ष लगभग 1,78,000 से 1,87,000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। इसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला क्वीन अनानास भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
0: राष्ट्रीय राजधानी के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आज 3 दिन के त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक शाह और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजुमदार ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और एक बार फिर से आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खूबसूरत लोगों को स्टूडियो में हम लेकर हाजिर हो गए हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही कमाल के कलाकार मौजूद हैं जो आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत और भी शानदार बनाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, और साथ में अखिल भैया भी मौजूद हैं स्टूडियो में, और आज हमारे बीच में शाम को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए कमल शर्मा जी हैं। तो और वो क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को वो जरूर बताएं अपने बारे में। और मैंने ऐसा सुना है कि वो पहले भी रेडियो पे आ चुके हैं, तो यानी कि
8: रिकॉर्डिंग करते थे।
7: अच्छा जी, रिकॉर्डिंग वाला शो, अब समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज आप आए। तो आज हमारे श्रोताओं को आप बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, हमें सूत्रों से पता लगा है।
8: सूत्रों से
7: लोगों ने हमें ऐसा मैसेज दिया है कि आज जो है कमल शर्मा जी हंसाने वाले हैं, और हमारे जो पड़ोस अखिल भैया बैठे हैं वो भी कुछ जो है आज बढ़िया सी चटपटी बातें करने वाले हैं। क्यों अखिल भैया, अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी अखिल भैया बताओ जरा।
9: मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर भी एक शायरी और एक पोइट्री वाली चीज है। मतलब क्या, मुझे भी उन चीजों से बहुत प्यार है और बहुत लगाव है, मैं बहुत सुनता भी हूँ इन सब चीजों को। और जो मेरे साथ है ना वो चलती फिरती आती है, मतलब एकदम एट
7: रैंडम आती है,
9: और मैं एकदम आपको सुना देता हूँ। तो ये तो मेरे पास अच्छा मौका है।
7: मैं तो अखिल जी को जितना मैं जान पाया हूँ, ये वो आदमी, इनको जहाँ शिफ्ट कर देते हो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इनको शेरो शायरी में डाल दो आप वहीं शुरू हो जाते हैं, इनको RJ में डालो, इनको इंस्टाग्राम की रील में डालो ये वहाँ फिट हो जाते हैं। आज ही ये मेलोडी खा के आए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे। तो ये मतलब ऑलराउंडर वाले हैं, बढ़िया वाले, जबरदस्त इंसान। तो सर आपका हम स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं।
8: मेरा नाम कमल शर्मा है
7: जी।
8: मैं यहाँ मुरादाबाद में ही जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स में पॉइंट हूँ।
7: अरे वाह।
8: तो जैसे कभी बोलता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ ये और एक तरफ लिखना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है
7: जी। ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे पॉसिबल होता होगा।
8: बट ये है कि अब अगर हम इस चीज को मैनेज कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं, तो अच्छी चीजें निकल रही है। अगर दोनों विपरीत छोरों को मिलाकर हम एक नई चीज निकाल रहे हैं,
9: नहीं तो ये अच्छी बात है। ये तो आप ऐसे कहते हैं कि ये भी एक तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
7: करेक्ट करेक्ट। मतलब, और ये भी एक क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं। और सर जो इंसान का लगाव होता है ना जिस चीज से, वो उसके लिए समय भी निकाल लेता है और टाइम भी मैनेज कर लेता है।
9: कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ कमल जी कि आप वहाँ बैठे हो और आपने वहाँ पे अपने सेल के, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ शायरी भी सुना दी हो?
8: नहीं नहीं, अब तो ऐसा है ना कि जो खासम खास लोग हैं सब जानते हैं कि हाँ कमल कुछ लिखता है, तो जैसे कभी कभी बैठे होता है, अच्छा है चल उसको सुना दो चल, तो फिर वो उस समय ये है कि अब आप उसमें मुकर नहीं सकते,
7: अंदर का जो शायर है बाहर आ ही जाता है।
8: नहीं नहीं, वो तो काफी बार आ चुका है।
7: अच्छा।
8: तो काफी बार आ चुका है, इतना बार आ गया कि एफएम पे भी आ गया।
7: अरे वाह बहुत बढ़िया। तो सर आज मैं भी सुनना चाहूंगा आपके वो अच्छी अच्छी शायरी और जो आपका अंदाज है उसको अपने श्रोताओं के साथ। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ खास सुनाएंगे आज?
8: तो पहले तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपना परिचय दे दूं कुछ पंक्तियों
7: में। मैं वही चाह रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए सर, मजा आ जाएगा।
8: माध्यम से
7: बिल्कुल सर, पंक्तियों के माध्यम से दीजिए।
8: तो लीजिए पेश है कि जीवन अपना क्या है कमल,
7: जी
8: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है।
7: वाह।
8: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है, खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है।
7: क्या बात है।
8: खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है, कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं।
7: वाह।
8: कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं, और अदरक वाली चाय कमल सुबह शाम पीनी।
9: अरे क्या बात, बहुत खूब।
7: मजे की बात ये कि आज अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस भी
8: बिल्कुल,
7: है।
8: बिल्कुल बिल्कुल
7: ये तो आपने सुबह हमने सेलिब्रेट किया और देखिए चाय की बात भी हो गई है, तो हम आपको चाय पिलाकर ही भेजेंगे और अदरक भी डलवाएंगे, आप चिंता ना करें। समझ गए हम आपकी बात, आपकी शायरी से। तो श्रोताओं ये जो मस्ती है जो फन है वो लगातार बरकरार रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, आरजे आनंद अखिल और कमल शर्मा जी के साथ।

0: सर को देख के लग रहा है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया।
1: आनंद तुम्हारी तरफ से शायरी बोलना चाहूंगा
0: सर, बिल्कुल मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, आप मेरी
1: जैसे मैंने पिछली बार तुम्हारी तरफ से बोली थी इस बार
0: बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर।
1: मैं अभी अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि जो मेरे शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आनंद के शब्द हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल वो समझ रहे हैं, जहाँ पे जूता पड़ने की बात आएगी वो अखिल जी के शब्द हैं। आप

0: अच्छा
1: ऐसा लग रहा है
2: अचानक दिमाग में आया
1: था, अचानक तो आया, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भी ये बात कहने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद। ठंडा पानी पिलवाएंगे, चिंता ना करो आप। जी सर, आप थोड़ा सा कुछ और नया सुनाइए सर।
2: सर नया क्या सुनाऊं, बस
1: जो आपके पास है आज आप वो सुना दीजिए।
2: नाम की वजह से मतलब लोगों की नजरों में रहता हूं हमेशा।
1: अरे वाह क्या बात है, आज से हम भी आपको अपनी नजरों में रखेंगे। आप
0: मगर ये खिले हुए तो बहुत टाइम से हैं।
2: उसका कारण तो जानो ना।
1: जी जी सर प्लीज।
2: कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है
1: जी,
2: कमल कमल कमल।
1: जी जी जी,
2: अगर आप उसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो फिर कमल, अच्छा पिछले 12 साल से इन्होंने तो जान खा रखी है, खाते ना रखी।
1: समझ सकते हैं सर, लेकिन आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ये वाले जो कमल है इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही है।
0: हाँ।
1: तो आप अपनी बातों से और अपने शब्दों से इस कमल की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे सर आज की शाम।
2: तो लीजिए चार पंक्ति इसी के नाम पे लीजिए।
1: बिल्कुल सर।
2: कि रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है।
1: वाह।
2: रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है। क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है।
0: क्या बात
1: है जी।
2: क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है
1: जी।
2: और हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर।
1: वाह।
2: हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर। जिंदगी लगता है तू भी भाजपा सी हो चुकी है।
1: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त।
2: तो मैं तो इसको मतलब एक बहुत अच्छा, हम लोग जो होते ना लिखने वाले वो बड़े मतलब चारों तरफ निगाह रखते हैं कि कहां से सब्जेक्ट मिले लिखने का।
1: करेक्ट, कहाँ से कंटेंट मिले, अब्सॉर्ब करते रहते हैं आसपास में चल क्या रहा है।
2: मेरे साथ एक प्लस पॉइंट गए माइनस पॉइंट गई है, मैं सुबह कम से कम आधा पौना घंटा अखबार पढ़ता हूँ, दो खबर।
1: बहुत ही बढ़िया,
2: ताकि एक नई चीज आपको पता चलती है, सब्जेक्ट आपको मिलता है कि आपके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है।
1: ये तो सर रेडियो में बताते हैं, ये हम रेडियो में भी बताते हैं सर।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आजकल जरा आनंद जी बताएंगे क्या हो रहा है।
1: हम भी रिसर्च करते रहते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि लोगों को रेडियो का सुनने का फायदा भी तो होना चाहिए।
2: अब कोई सोचे कि 1 रुपए की टॉफी मशहूर हो गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर।
1: सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल की शादीशुदा लोगों के बारे में कुछ है आपके पास पंक्तियां, बड़े परेशान रहते हैं आजकल।
2: दुखती रख क्यों छेड़ दिया आपने?
1: अरे मैं आपकी बात नहीं करना चाहता,
2: ये जरूरी था।
1: मैं सोच रहा हूँ जब आप आए हैं तो कुछ सुन लेते हैं।
0: एक बार भाभी ने इनसे पूछा भी
2: नहीं, हंसी माहौल का,
0: कितना प्यार करते हो आप हमें
1: जी।
0: तो इनका पता जवाब क्या है?
1: हाँ जी,
0: जितना फोन 1% बैटरी होने पर चार्जर से प्यार करता है।
1: ये तो जबरदस्त वाली बात कर दी आपने भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। अखिल भैया ने जो शायरी सुनाई है उससे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी शादी करूं और फिर मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। जी अखिल भैया, आप अपनी शायरी को थोड़ा संभाल के रखें, बाद में सुनूंगा। जी कमल सर, आप थोड़ा कुछ फरमाएं, चार पंक्तियां आपकी कुछ बढ़िया सी हो जाए।
2: तो जो आपने बात करी ना शादीशुदा वालों की,
1: जी जी,
2: तो वो दर्द थोड़ा बाद में खोलेंगे, अभी हंसी खुशी का माहौल चल रहा
1: है। अगर आप चाह रहे हैं कि अभी जो है लोगों का दिल वैसे ही टूटा है आजकल, बहुत
0: जाके इन्हें बेलन ना चलाना पड़े।
1: हो सकता है इनके ऊपर चल जाए भाई, कुछ भी हो सकता है।
2: हंसी खुशी का माहौल तो अच्छी लाइन निकलती रहनी चाहिए।
1: अच्छी वाली सुना दो, पॉजिटिव वाली, मजा आ जाएगा।
2: कि अच्छा, मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग तो सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी।
2: तो ये कुछ पंक्तियां हैं मैंने लिखी थी कोरोना में।
1: अरे वाह,
2: क्योंकि सब्जेक्ट था बहुत बड़ा, सब्जेक्ट
1: बहुत
2: था,
1: बड़ा टॉपिक,
2: और हम लोग तो क्योंकि ढूंढते रहते हैं तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी।
1: बिल्कुल सर।
2: देखिएगा कि जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ।
1: वाह।
2: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ।
1: वाह जी वाह।
2: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ, और वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती। वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, बस ढक के चेहरा आजकल घर से निकलता हूँ।
1: वाह क्या बात है, बहुत
0: क्या बात है, बहुत खूब
1: शानदार। और एक मैसेज भी दे दिया, आजकल गर्मियां बहुत है तो चेहरा ढककर ही निकले। हो सकती है
2: ये बात आज भी लागू हो सकती है।
1: एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोल दिया। वेल दोस्तों, अभी रात में तो खैर आपको धूप नहीं मिलेगी, तो आप चेहरा उगाड़ कर भी चल सकते हैं।
0: आनंद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
1: प्लीज सर पूछिएगा।
0: इस मॉडर्न एरा, जो मॉडर्न एरा चल रहा है अभी अपना,
1: जी जी,
0: उसमें प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है।
1: हाँ जी,
0: जो ट्रस्ट है ना आपस में,
1: हाँ हाँ,
0: वो धीरे धीरे क्यों जल्दी खत्म होता है आपके हिसाब से?
1: मैं इस पे जरूर अभी लौट कर आऊंगा तो अपनी टिप्पणी करूंगा, लेकिन श्रोताओं भी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, छोटा सा। बिल्कुल, इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी टिप्पणी करूंगा, अपनी राय दूंगा, अपनी पूरी वार्ता दूंगा, आप चिंता ना करें। पर अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वी कम बैक। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद। और एक शाम की धमा चौकड़ी मचाने के लिए मैं
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद। इसलिए भी खत्म हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट करने वाले लिए अब तो दुनिया बची नहीं है यार अखिल भाई, मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मगर अगर मैं अपने तरीके से देखूं तो बहुत ट्रस्ट करके देख लिया लोगों ने एक दूसरे को, पर बदले में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, धोखा,
7: दगा।
0: तो इसलिए लोग जो है करते नहीं है ट्रस्ट। खैर, हमारे बीच में सीनियर सिटीजन बैठे हैं एक सर, हम उनसे पूछ लेते हैं। आओ घूम फिर के जरा सर के पास चलते हैं। कौन सर, आप बताइए इसके विषय में जरा, जो अखिल सर ने पूछा है अभी।
8: अखिल सर धीरे धीरे उसी विषय पे पहुंचना चाँ रहे हैं,
0: आप समझ गए ना,
8: शादी के बाद वाली जल्दी
0: हाँ,
8: है ना,
0: करेक्ट,
8: पहुंचना चाह रहे हैं।
0: मैं ज्यादा
8: मैं उसको भी, मैं उस हिस्से को भी छूना नहीं चाह रहा।
0: हाँ,
8: मैं सोच रहा हूँ हंसी खुशी का माहौल है तो थोड़ी बातें ऐसी चलती रहे।
0: नहीं, ये उसमें भी खुश हो जाते हैं, ये वो उसमें क्या आदमी है, आप चिंता ना करें।
8: तो चार पंक्तियां देखिएगा
0: जी सर,
8: क्योंकि शादीशुदाओं की बात चल रही है तो चार पंक्तियां समर्पित किसको हो सकती है,
7: ये तो बाय डिफॉल्ट है,
0: समझदार है।
8: देखिएगा कि लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया।
0: वाह
7: क्या बात
0: है,
8: लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया। गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया।
0: वाह जी वाह,
8: गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया। वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे।
0: क्या बात है,
8: वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे, बैठ कर संग चाय पीना तो बहाना हो गया।
7: क्या बात है,
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब जी। अखिल जी, आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे?
7: मैं इसमें
0: हाँ, मैं आपसे भी पूछता रहूंगा, आपने बहुत सारी गूगल बाबा साहब निकाल के रखी हुई है सुबह से। हाँ,
7: तेरी आवाज आज भी कानों में रहती है।
0: वाह,
7: तेरी बातें अब भी रातों में रहती हैं। तू दूर होकर भी दूर नहीं मुझसे, क्योंकि तू मेरी हर धड़कन में रहती है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। मैं समझ सकता हूँ कौन रहती है, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे जी। कमल सर,
8: यस सर,
0: आप अब और क्या स्पेशल सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को? आप जो है लगातार बढ़िया बढ़िया पंक्तियां सुना रहे हो, ये चार पंक्ति के ना, आप मुझे लग रहा है हमें सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। क्यों अखिल भैया?
7: बिल्कुल सही कह रहे हो, आजकल क्या है ना, रिलेशनशिप जो है वो टूटते कम है, ईगो ज्यादा जीत जाता है उनमें। तो ऐसे जो है ना, एक मतलब अगर आप छोटी सी सॉरी भी बोल दो किसी को तो बहुत ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आपका टूटने से बच जाता है।
0: अरे भैया, आजकल सॉरी बोलने से भी कुछ ना होता, जिनको ब्लॉक करना होता है वो करके भाग जाते हैं, भले वो 2 दिन बाद अनब्लॉक कर दें, वो बात अलग है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, तो जेन्युइन ही है, आजकल के रिलेशनशिप में ईगो बहुत है, क्योंकि सामने वाले का पहल वो करे और जो इस पार बैठा है उसको लगता है पहले वो करे, इस चक्कर में क्लैशेस होते रहते हैं और चीजें खराब हो जाती हैं। ऑलमोस्ट यही हो रहा है आजकल,
8: बिगड़ जाती है।
0: एब्सोल्युटली सर, क्योंकि वही रीजन है ना, सामने वाला चाह रहा है तू आ, वो चाह रहा है कि भैया नहीं तू आज इस चक्कर
8: में, पहले आप ट्रेन निकल गई, ट्रेन चली गई लखनऊ से,
0: सही कह रहे हैं
8: बनारस,
0: इससे पहले हमारी ट्रेन निकल जाए हम सर आपके पास वापस आ जाते हैं। आप प्लीज कुछ सुनाइए हमारे लिसनर्स को, और बढ़िया जबरदस्त सा श्रोताओं,
8: अगर
0: जी
8: अगर मेरे दोस्त राघव पंक्तियां सुन रहे हो तो मैं चार पंक्तियां उनको ये समर्पित करना चाहूंगा,
0: जरूर सुन रहे होंगे।
8: कि महफिल का हर शेर उभरता उसका था,
0: अरे वाह,
8: महफिल का हर शेर उभरता उसका था, एक क्षमा थी हर परवाना उसका था।
0: वाह,
8: एक क्षमा थी हर परवाना जिसका था, वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे।
0: जी गजब,
8: वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे
0: जी,
8: चलो बताओ वो दीवाना किसका था।
0: अरे वाह क्या बात है राघव जी, देख लो सवाल छोड़ के जा रहे हैं सर, मैं पूछ लूंगा फोन करके आपसे। लास्ट टाइम राघव जी आए थे सर हमारे स्टूडियो में अभी रिसेंटली, बहुत ही बढ़िया उनके साथ भी एक संवाद लगा हमने किया, अखिल भाई आप भी थे, बहुत अच्छा सेशन किया उन्होंने और बहुत ही कमाल किया, जबरदस्त लिखते हैं बोलते हैं।
7: आप ये चीज देखे ना, वो एज अ प्रोफेशनली वो एक एडवोकेट है, तो उनके यहाँ भी हल्की सी छाप थी रिश्तों को कैसे टूट रहे हैं और कैसे उसे बचा रहे हैं। और हमारे केमिस्ट साहब हैं हमारे इधर, सर्जिकल सारी सप्लाई इनके हाथ में है, तो इनके में भी वही छाप आ रही है हल्की हल्की सी, कि कैसे किसी की तोड़ा है और कैसे किसे जोड़ना। आप क्या कहेंगे आनंद जी?
0: नहीं, मैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आपसे मुलाकात करके, और जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। और बस यही है, छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को हंसाती है। बट सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगती है एक आर्टिस्ट की, कि जब वो लिखते हैं ना, चार चीजों को सोच के जब वो लिखते हैं और जब उनसे एक नई चीज बनती है, उसकी बात ही अलग होती है। शायद अब आप जो सुनाने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी होगी आई एम श्योर।
7: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे।
0: वाह,
7: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे
0: जी।
7: अब उसकी स्टोरी में कोई और नजर आता है।
0: अरे वाह।
7: और हम आज भी वही पुराने स्क्रीनशॉट संभाले बैठे हैं।
0: बहुत ही बढ़िया, मुझे दिखा देना, मैं भाभी को दिखा दूंगा।
7: हाँ, तुमसे तो कुछ कहना ही गुना है, तुम तो हर बात पे एकदम जो है ना
0: भाभी को ले आते हैं।
7: बिल्कुल, गृह मंत्री को ही पकड़ लेते हो, छोटे मोटे मंत्रियों को पकड़ा करो एकदम, गृह मंत्री तुम।
0: अरे गृह मंत्री जो कर सकते हैं ना, वो छोटे मोटे मंत्री नहीं कर सकते ना, इसलिए हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं मेन पॉइंट पे। सर आप कुछ कह रहे थे?
8: अब अखिल भाई इतने समय से पन्ना खोलना चाहो, थोड़ा सा तड़का उसका लगा देता हूँ।
0: अरे सर बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली
7: तैयार में,
8: तो तैयार है अखिल जी सुनने के लिए?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
8: कि जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में।
0: क्या बात है,
7: बहुत खूब।
8: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, मिलकर भी वह मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में।
0: वेरी नाइस,
7: क्या कहा।
8: मिलकर भी वो मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में, लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया। लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया, घूम रहा लेकर कुंडली पीरों और फकीरों में।
0: अरे बहुत, क्या बात, बहुत ही खूब, बहुत ही।
8: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, संगी साथी छूट गए, संगी साथी छूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, बेरंग जिंदगी लगती है कोई रंग नहीं तस्वीरों में।
0: अजी वाह,
8: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने,
0: जबरदस्त,
7: बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
8: और जो आपने धोखे वाली बात करी
0: जी सर,
8: कि दिल अंदर छलनी छलनी है, दिल अंदर छलनी छलनी है
0: जी,
8: पर बाहर से कोई घाव नहीं।
0: क्या बात है,
8: पर बाहर से कोई घाव नहीं, जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में। शमशीर मतलब तलवार।
0: हाँ। जी जी,
8: जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में, और कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, रांझे की चिंता किसको है सब घिरे हुए हैं हीरो में।
0: अरे क्या बात है, गजब गजब शानदार।
8: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, और कोई किस्मत बदल नहीं सकता
0: जी,
8: कोई किस्मत बदल नहीं सकता, कोई होनी पलट नहीं सकता, क्या पता कमल कुछ हो जाए शायद उसकी तदबीरों में, जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीर।
7: बहुत
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही शानदार सर, पूरी हो गई
7: अंदर से, अंदर से निकल के आई
0: सर, लग रहा था और सुनता ही रहूं मैं तो, इतनी शानदार थी ये, वाह जी वाह, गजब,
7: अंदर से निकल के आई है,
0: बहुत ही बढ़िया, एकदम नेचुरल, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। और मैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस लौट कर आता हूँ श्रोताओं, और हम उसके बाद सर से कुछ पंक्तियां सुनेंगे दोस्ती के ऊपर। आज के टाइम में कहते हैं दोस्ती दोस्ती नहीं रही है, अब जमाना सेल्फिश हो गया है, आजकल जमाना मतलब ही हो गया है, तो थोड़ा सा इस विषय में भी हम सुनते हैं सर के दिल के जज्बात क्या लिखते हैं वो इस पर, बट अभी नहीं, एक से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। आपके हिम्मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, एक बार फिर से आपकी शाम को और शानदार बना रहे हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे कमल शर्मा जी। कुछ प्यारी प्यारी बातें वो कर रहे हैं आज की शाम, और वो बातें जो शायद कहीं ना कहीं आपके दिल को छू रही होंगी श्रोताओं, और जो शायद इस वक्त सुन रहे हैं उन आपको भी भैया दिल से हमारा सलाम है। अगर आप भी यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो हो सकता है अगला स्टेज अगली कुर्सी आपकी नाम हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें एक छोटा सा मैसेज करना है। अगर आप कुछ बेहतरीन लिखते हैं, आप कुछ बेहतरीन सुना सकते हैं, आपको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ बढ़िया शेर, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए एफ एम मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलेगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे डीएम कर सकते हैं। रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूं, वहां पर भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी बढ़िया सा शेर व शायरी का टैलेंट है, या आप कुछ बढ़िया लिखते हैं, या किसी ऐसे पर्सनैलिटी को जानते हैं जिसके अंदर ऐसा टैलेंट है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे वो रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। क्यों अखिल भाई?
1: बिल्कुल सही बात, और इसी बात से मेरे को एक बात याद आ रही है
0: प्लीज,
1: कि मैं सभी अपने दोस्तों से और उनके दोस्तों से भी बात कहूंगा कि इस बात को याद रखें, जो सच्चा प्यार है कभी खत्म नहीं होता।
0: क्या बात है,
1: बस लोग मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कुछ कि जो प्यार सच्चा करने वाला है ना, उसका एक अलग है, उससे आप किसी से मैच नहीं करवा सकते।
0: गॉट इट, आई एग्री विद यू 100% सही बात है। अब सच्चा प्यार मिलता नहीं, वो बात अलग है, है ना?
1: कह सकते हैं
0: ये भी सच्चाई है, बाकी अपने अपना लक है। क्यों कमल सर?
2: बिल्कुल
0: है ना। अच्छा कमल सर, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी फ्रेंडशिप के बारे में, मैं बोल रहा था दोस्ती के बारे में कि लोग कहते हैं कि आजकल दोस्ती जो है पहले वाली नहीं रही, मतलब ही होगी है, जहाँ काम होता है वहीं दोस्ती होती है, उसके बाद दोस्ती टाटा बाय बाय, तू किसका दोस्त, तू मेरा कौन सा दोस्त, वो चीजें चल रही है बेसिकली। अब भाई देखो कलयुग का टाइम है, बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, सच्चे दोस्त भी है आज की दुनिया में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: दोस्ती एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है
0: जी, ठीक है,
2: दो लोगों के बीच में,
0: ठीक है
1: भाई। मुझे तो
2: सिर्फ एक के दम पर नहीं चल सकती,
0: करेक्ट, वन साइड तो हो ही नहीं सकती, चाहे प्यार हो या
2: डेडिकेशन दोनों का होता है,
0: एब्सोल्युटली।
2: आपका भी, सामने वाले का भी,
0: सामने वाले का भी।
2: वो बॉन्डेशन आपकी सही है तो फिर तो दोस्ती हमारे।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना सर, राह चलते हैं हमें कुछ लोग मिलते हैं, हमारी वाइब मैच होती है, हमें लगता है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दोस्त है, या सामने वाले को लगता है वो पर्सन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और इस चक्कर में कई बार फ्रेंडशिप हो जाती है, बट वो पता चलता है कि वो एक तरफ से ही थी, दूसरी तरफ से था ही नहीं।
2: अब वही कह सकते हैं ना कि हर चीज के दोनों साइड होते हैं।
0: हाँ करेक्ट,
1: कहीं कहीं दिमाग नहीं लगाया जाता ना,
2: डाकर भी है लेटर भी है,
1: कहीं दिल लगाए जाते हैं कहीं दिमाग लगाया जाता है, तो हर तरह की दोस्ती है, आप चाहे दिल लगाएं या दिमाग लगाएं।
0: सही बात है बिल्कुल, मैं आपसे दोस्ती करूंगा, आप टेंशन न ले, दिल तो नहीं लगा सकता।
2: हमें थोड़ी ना पता था कि उम्र के 45 साल में हम अखिल भाई मिल जाएंगे,
0: सोचने
2: और चिपक जाएंगे बिल्कुल हमारे साथ।
0: सर दोस्ती में कुछ बढ़िया सी चार पंक्तियां हो जाए सर, जो जो दोस्त आपस में बैठ के इस वक्त गाड़ी में हमें सुन रहे हैं।
2: दो पक्के दोस्तों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है,
0: अच्छा
2: पक्के दोस्त हैं लेकिन किसी विषय को लेकर कंफ्यूजन है दोनों के बीच में, तो एक दोस्त कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है
0: जी,
2: हालांकि उसमें उसका प्यार ही कह लीजिए, गुस्सा नहीं है उसका।
0: ओके बहुत ही खूबसूरत,
2: कि बदला वक्त जमाना बदला,
0: बदला वक्त जमाना बदला हाँ जी,
2: उसने आना जाना बदला,
0: वाह,
2: बदला वक्त जमाना बदला, उसने आना जाना बदला, इससे अच्छा बदले खुद को, इससे अच्छा खुद को बदले,
1: क्या बात,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला,
0: वाह,
2: ठौर ठिकाना मतलब जो उसके रहने की जगह है
0: वो बदला,
2: उसने ठौर ठिकाना,
0: ठीक है,
2: पहले उसने देखे सपने, पहले उसने देखे सपने, बाद में बदली आंखें,
1: अच्छा,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला,
0: वाह
1: क्या बात,
0: क्या बात है,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला, हरदम पाने की चाहत, मतलब आदमी में लालसा होती है कि ये भी मिल जाए वो
0: भी
2: मिल जाए,
0: करेक्ट करेक्ट,
2: कि हरदम पाने की चाहत अब उसको इस हद ले आई कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला,
1: क्या
0: वाह क्या बात है,
1: बहुत खूब, मतलब एक तरीके से इन्होंने एकदम एक 95% वाला सच बोल दिया इन्होंने,
2: कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला, सड़कें बदली गलियां बदली बदले सारे रास्ते, सड़कें बदली गलियां बदली बदले सारे रास्ते, घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला,
0: वाह,
2: घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला, और खुद अपना आकाश बनाकर, खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला,
0: बदले चांद सितारा बदला जी सर,
2: तो खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला, और आखिरी पंक्तियां देखेगा कि मैं लिए कलम और एक कागज, मैंने कलम और एक कागज बस इसी सोच में बैठा हूं, मैं लिए कलम और एक कागज बस इसी सोच में बैठा हूं कि उस पल में क्या होगा अगर वो शख्स दोबारा बदला।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत
0: बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। इन पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे लगता है कि आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं, आई थिंक।
2: नहीं मतलब जैसे मैंने पहले बोला ना, डेडिकेशन है दोस्ती, तो दोनों तरफ से
0: करेक्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ गई ना जो आपने बताया,
2: तो डेडिकेशन दोनों का है।
0: करेक्ट करेक्ट,
2: मैं समझता हूँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी साइड से तो वो क्लियर हो जाना चाहिए।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला इंसान चाहता ही नहीं है, तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है सर।
2: इसलिए जो भी कोई कोई ऐसा पॉइंट है दोनों को कहीं पिंच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा।
0: करेक्ट, और वो इतना बढ़ेगा कि एक दिन वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा,
2: रिश्ता खत्म हो जाएगा,
0: है ना, वो मतलब रिश्ता कम और वो टॉक्सिस ज्यादा हो जाएगा।
2: बिल्कुल
0: करेक्ट,
1: हमेशा आपके जो जितने भी पुराने दोस्त है ना, जो भी आपके साथ बैठे हैं, जो इस समय भी आपके साथ मौजूद हैं,

0: गाड़ी में मौजूद हैं, चाहे बाइक पे मौजूद हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हैं, कहीं भी एक टाइम टुगेदर आप लोगों का चल रहा है, तो वो क्या है, पुराने जो दोस्त होते हैं वो ना एक गानों की तरह होते हैं, पुराने अच्छे गाने जो आप, जिनकी बात आप हमेशा सुनना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा गुनगुनाते
1: करना चाहते हो, गुनगुनाना चाहते हो।
0: और जो आपके नए नवेले दोस्त बनते हैं ना, वो एकदम एक फ्री ट्रायल की तरह होते हैं, वो बस फ्री पैक आपका खत्म हुआ नहीं और वो आपके गायब हो गए,
1: आपका सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद जैसे ही आपका टाइम गया खत्म। चलो रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, मेरे दोस्त ही गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। जितने
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: अभियान का हिस्सा है यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटानिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
8: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
7: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
9: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
7: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
10: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
7: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
11: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
7: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मीशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semifinals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
13: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of Indian diaspora. He said that Indian diaspora has long served as a vibrant bridge between the two nations, strengthening people-to-people ties and enriching the shared journey. In a special gesture, Prime Minister Modi handed over the Made in India fast patrol vessel to President Dr. Patrick Hermini. He also handed over 6 ambulances, 10 utility vehicles and 5 laser radial boats, which will further contribute to the development and security of Seychelles. Prime Minister Modi will be the guest of honor at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. He is the first ever Indian Prime Minister to attend the National Day celebration of Seychelles. Akshit Vaidyan, Akashvani News.
14: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
15: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
16: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आप सुन रहे हैं रिश्ता कम और वो टॉक्सिस ज्यादा हो जाएगा।
13: बिल्कुल
0: हमेशा आपके जो जितने भी पुराने दोस्त हैं ना, जो भी आपके साथ बैठे हैं, जो इस समय भी आपके साथ मौजूद हैं, चाहे गाड़ी में मौजूद हैं, चाहे बाइक पे मौजूद हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हैं, कहीं भी एक टाइम टुगेदर आप लोगों का चल रहा है, तो वो क्या है, पुराने जो दोस्त होते हैं वो ना एक गानों की तरह होते हैं, पुराने अच्छे गाने जो

0: आप जिनकी बात आप हमेशा सुनना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा गुनगुनाते
1: करना चाहते हो, गुनगुनाना चाहते हो,
0: और जो आपके नए नवेले दोस्त बनते हैं ना, वो एकदम एक फ्री ट्रायल की तरह होते हैं। वो बस फ्री पैक आपका खत्म हुआ नहीं, वो आपके गायब हो गए।
1: आपका सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद जैसे ही आपका टाइम गया खत्म। चलो रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। मेरे दोस्त, ये गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, जितने भी मेरे श्रोता साथी हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनके लिए एक दोस्ती वाला।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आरजे आनंद के साथ हैं आप और इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। फिलहाल आज की शाम मेरा दिल चाह रहा था कुछ बेहतरीन बातें सुनना और इन्हीं बेहतरीन बातों को जो है पेश कर रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। स्टूडियो में मौजूद हैं कमल शर्मा जी और साथ में अखिल जी। तो बीच बीच में आपको अब ऐसी चटपटी बातें और शानदार प्रोग्राम सुनने को मिलते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सर। और अखिल जी अपने जो है लैपटॉप में घुसे हुए हैं, शायद कुछ अच्छा निकालने के प्रयास में हैं। चलिए अच्छी बात है, उनका प्रयास जरूर मुकम्मल होगा। फिलहाल सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अभी आपने दोस्ती के ऊपर तो बहुत बढ़िया सुना दी और मैंने शुरू में आपसे बीबी और वो हस्बैंड बीबी के बारे में कुछ पूछा था, तो मुझे लगता है कि इसमें अब आपको सुना दो बढ़िया सा।
1: नहीं मैं समझता हूँ, हाँ। अगर हंसी खुशी चला तो वही चलता रहे।
0: अच्छा तो मतलब सर बार बार मुझे पीछे कह रहे, अभी तो छोटा, अभी तो बच्चा है तू, अभी तो ये जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। जब
1: दो विवाहितों के बीच में आप हो गए, गलत फंस गए मुझे लग रहा है।
2: नहीं ये अभी ना इन्हें याद रहेगा क्योंकि जब
0: देखिए दोस्तों मैं आपके आपके फायदे की बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो दो विवाहित लोग हैं ना ये चाह रहे हैं कि भैया हमारे घर की जो है ना बीबी अगर हमें सुन लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, शायद इसीलिए ये बोलना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों।
1: हम तो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आधी हो चुकी
0: है। देखिए सर आप अभी अखिल भैया को उस स्टेज में मत पहुंचाओ, अभी अखिल भैया को पहुंचने में बहुत टाइम है।
2: आनंद से तो मैं यही कहूंगा कि ये टाइम आप अपना अच्छे से एंजॉय करें, हाँ। क्योंकि अभी जो है ना आप, हाँ हाँ। अभी दोस्तों के साथ आपका समय बीतता है, जो दोस्तों के साथ अभी आप समय बीतता है ना, तो जब भी अभी आप तो मना कर रहे हो कि भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी मैं किसी से मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, मगर हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो, जल्दी आपको कोई चाहने वाली ले, और जब ऐसा मिले तो आप अपने दोस्तों को मत भूल जाना।
0: ओके बहुत बढ़िया, इन्होंने जो ट्रैक था वो कहीं और से कहीं और शिफ्ट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्सफुल टू यू अखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आपकी ये बात भी पूरी होगी माशाल्लाह, कोई ना कोई मिली जाएगी, हम भी इसी मुराद में हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सफर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जी प्लीज अखिल भाई आपको सुना रहे हैं क्या?
2: कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से जाने जाते हैं।
0: वेरी नाइस।
2: वो दोस्त कब मोहब्बत बन जाते हैं पता नहीं चलता। तेरे साथ बिताया हर लम्हा आज भी याद आता है।
0: क्या बात है।
2: कॉलेज की वो चाय और तेरा मुस्कुराना भी याद आता है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। मैं आपके कॉलेज जरूर घूमने जाऊंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा आप कैसे मुस्कुराते थे।
2: मैं तो कैंटीन में ही, मैं तो मेरे साथ तो ये था, मैं अपने कॉलेज में कैंटीन में ज्यादा मिलता था, क्लासेस में कम।
0: ओहो वेरी वेरी वेरी अमेजिंग, मतलब आप तो वो जी सर
1: उस हिसाब से तो सही प्रोफेशन में पहुंच गए ना।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बस वो प्रोफेशन का जो भांडा है मैं यहाँ फोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि फिर नहीं तो कई लोग पकड़ लेंगे उनके रेस्टोरेंट पे जाके। अच्छा हो पर उस तुम जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। जी सर आप जाते जाते अभी कुछ सुनाएं बढ़िया सा हमारे लिसनर्स को।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐसे विषय पे मैं एक कविता मैंने लिखी है और मैंने इसको काफी मंच पर सुनाया और लोगों ने काफी इसको पसंद किया है।
0: जी
1: जो बच्चे हैं आज शिक्षा ले रहे हैं आपके घर में, आपके भतीजे भतीजी और बेटा बेटी, वो आपके कब तक हैं? सिर्फ इंटर तक, उसके बाद जाहिर सी बात है उनको ऊंची शिक्षा के लिए बाहर जाना है।
0: बिल्कुल सर सही कहा।
1: तो कहीं ना कहीं वो एक घर से कट रहे हैं, उसके बाद वो वापस लौट के कभी नहीं आते
0: जी,
1: क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए, फिर कहाँ नौकरी लग रही है
0: जी,
1: फिर वो कब आते हैं? छुट्टी वाले बच्चे,
0: छुट्टी वाले ओकेजंस हो गए, छुट्टियां हो गई,
1: त्योहार।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो कुछ पंक्तियां मैंने उसके ऊपर लिखी हैं
0: जी सर,
1: और मैंने इसको जहां भी सुनाया काफी इसको पसंद किया लोगों ने। पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं।
0: वाह।
1: पाने को ऊंची शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी बात कही।
0: छोटी थी बड़ी जानदार और शानदार थी सर ये।
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज, बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था
0: जी,
1: बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था, सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था।
0: वाह।
1: सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था, माता पिता की फरियादे जो करना पाते दर्ज, माता पिता की फरियादे जो करना पाते दर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात कही, बहुत ही,
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज। और क्या होली क्या रक्षाबंधन, क्या होली क्या रक्षाबंधन, और क्या बची दिवाली, माता पिता बस एक कमरे में, सारा घर है खाली।
2: बहुत ही गहरी बात कही।
1: माता पिता बस एक कमरे में, सारा घर है खाली। जो बच्चे ना जान सके माँ बाप के मर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों के कर्ज।
2: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही सही।
1: और इसकी अंतिम पंक्तियां देखेगा कि घर के कच्चे रास्ते जिनको याद नहीं अब आते, घर के कच्चे रास्ते जिनको याद नहीं अब आते, छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते।
2: क्या बात कही, बहुत ही सुंदर।
1: छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ष, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ष, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात कही, क्या बात कही। और ये चीज वाकई होती है, मगर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, ये लोग समझ रहे हैं कि हाँ, चाहे आप कैसे भी रहें, किधर भी रहें, अपनी मिट्टी से जरूर जुड़े रहें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अखिल सर। और दोस्तों, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा इस सेशन को, डेफिनेटली। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप आए स्टूडियो में, कमल जी आपने तमाम बढ़िया बढ़िया बातों से, पंक्तियों से रूबरू कराया हमारे श्रोताओं को। और अब जाने का समय हो गया, क्योंकि आपको दोबारा भी बुलाना है। सब कुछ अगर आज ही जान लेंगे तो दोबारा कहाँ से फिर बुला पाएंगे ना, तो दोबारा बुलाने के लिए हमें कुछ तो बचा के रखना है अखिल जी, है ना। तो अखिल भाई का लैपटॉप तो हमेशा खुला रहता है, उनके गूगल बाबा उनके साथ हमेशा रेडी है। वो तो चाह रहे हैं कि मैं पूरी रात आपको सुनाता रहूं।
2: मेरा ये जो लैपटॉप है ना, इस समय बिल्कुल इस समय बैटरी डाउन है इसकी, सुबह से बैटरी डाउन।
0: नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अखिल भाई अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा यूज करते हैं, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ये यहाँ से सीधा जहाँ जाएंगे वो सिर्फ कमल जी को पता है या मुझे और किसी को नहीं पता है। सो आगे बढ़ते हुए कमल सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, जाते जाते क्या कुछ खास चीजें आप सुनाना चाहेंगे?
1: बस ये मुलाकातों के दौर यूं ही चलते रहे।
0: हाँ,
1: और आप मेरे को बुलाते रहे और मैं जो अपना विषय आपके सामने रखता रहूं।
0: क्या बात है, आज आपको स्टूडियो में आके अखिल जी के साथ शो करके कैसा लगा?
1: स्टूडियो में पहले भी आ चुका हूँ, बस अखिल जी के साथ आज मिलके यहाँ
2: पहली बार है। हाँ, पहली बार हमारा रहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई अपने ही एकदम सब साथ में हैं, और हम सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक आपस की बातें हो रही हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है।
0: क्या बात है अखिल जी, आप जो बोलते हैं ना, एकदम जिंदा दिली इंसान है आप, दिल से बोलते हैं, मानना पड़ेगा, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं आप। एक दिन आप आरजे पक्का बनी जाएंगे, ऑलमोस्ट तो बनी गए, और हम बाहर खड़े होंगे आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए, आप चिंता ना करें। जी सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आप भी जो है कुछ सुनाना चाहते हैं तो अखिल जी कैसे सुना सकते हैं? हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करके,
2: हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे
0: जी।
2: और हमारे को आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9837896 पर।
0: पक्का अभी आरजे बन गए, मुझे मानना पड़ेगा, नंबर याद हो गया इनको। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है या आप किसी से टैलेंटेड पर्सन को जानते हैं तो आप बताइए, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा भी जरूर आएंगे। जाते जाते एक और कुछ बढ़िया सी लाइन, सर सोच रहे हैं कि ये लड़के ने क्या पूछ लिया, अभी तो ये बाय करने वाला था, अब इसने फिर से कुछ सुनने की फरमाइश कर दी है। सर जाते जाते कुछ एक बढ़िया सा सुंदर सा,
1: आपके श्रोताओं को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जज्बाती जज्बाती कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते
1: कि जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है।
0: जी,
1: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत है।
0: क्या बात है,
1: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत हैं, चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना। चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना, वो कहने को इस शहर में शमशान बहुत है।
0: क्या बात है, गजब, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। इन्हीं बातों के साथ अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, इजाजत, फिर जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल

स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और मैं हूं आपका दोस्त अखिल। और हाँ, कल तो मिस किया ही होगा, कल तो मेरी जगह रीना जी ने ली और रीना जी ने भी मेरे को बताया कि अखिल सर आपने तो क्या नए नए टॉपिक करके बातें करते हो और पूछते हैं कि भाई आज के शो में कौन सी नई बात है। तो मैंने कहा हाँ रीना जी, ऐसे ही होता है, जब हमारे लिसनर्स हैं ना वो भी नई नई बातें करने का बहुत शौक़ रखते हैं, नई नई गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ रखते हैं, नई नई जगह खाने खाने का भी बहुत शौक़ रखते हैं। और कोई भी अगर मुरादाबाद में अपने शहर में नया आउटलेट खुलता है ना तो वहाँ पे भी एक बार घूम के आने का तो नया शौक़ रखते ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर बार नई होती हैं, तो जब जब तक कोई चीज़ नई ना हो उसमें मज़ा ही क्या आएगा। और सैटरडे मस्ती है तो उसमें भी कोई ना कोई नई मस्ती तो होनी चाहिए, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है ना भाग दौड़, ऑफिस, कॉलेज, काम फालतू की टेंशन में ना निकल जाता है। तो वक्त होता है मुस्कुराने का, गुनगुनाने का और याद करने का उन कुछ खट्टे मीठे सपनों को भी जो कभी पूरे हुए ही नहीं और आज भी दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों उठाइए अपना मोबाइल 9837896896, कर दीजिए अपनी दिल की फरमाइश। आज तो सैटरडे नाइट है भाई, सैटरडे वाले गाने बजने चाहिए ना। तो बताइए कौन से होते हैं वो सैटरडे वाले गाने, जब कहते हैं ना सिर्फ पार्टी चल रही होती है, मस्ती चल रही होती है और एक पूरे हफ्ते की टेंशन ख़त्म करनी होती है। भाई संडे का भी कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, संडे में तो सिर्फ रिलैक्स करने का प्लान होता है, ऐसा लगता है कि हफ्ते में संडे दो बार आना चाहिए। तो उठाओ मैसेज और बताओ मेरे को आप कि हाँ जी ये वाला गाना बजा दो आज मेरा, मैं भैया सैटरडे में पूरे हफ्ते बहुत थक गया था, अब मेरे को यही गाना सुन के थोड़ा सा रिलैक्स होगा। एक शायरी जो बहुत ही कहते हैं ना सैटरडे वाली शायरी आप लोगों के लिए, कुछ सपने अधूरे रह के भी मुस्कुरा जाते हैं, कुछ सपने अधूरे रह के भी मुस्कुरा जाते हैं, कुछ पूरा होकर भी दिल को रुला जाते हैं। जिंदगी का मज़ा तो बस इतना है दोस्तों, जो मिल गया उसे अपना लो, जो ना मिला वो अगला सपना बना लो। जी हाँ, तो चलिए करते हैं सैटरडे मस्ती, सुनते हैं बढ़िया सा पार्टनर का सॉन्ग और फिर करते हैं आपसे मुलाकात और बातें। तो उठाइए फटाफट मोबाइल, मिलाइए 9837896896।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और अभी आप सुन रहे थे ड्यूओ पार्टनर पार्टनर मूवी का गाना। इस मूवी की खासियत यही थी कि सलमान खान और गोविंदा का ऐसी जोरदार केमिस्ट्री थी ना कि कहते हैं कि हर समय हर सीन के बाद लोटपोट हो रहा था इंसान। तो और कई चीज़ें तो ऐसी इसमें हमेशा याद रह जाती हैं कि कैसे सलमान खान लव गुरु बनके और गाइड करता है गोविंदा को कि तुम्हें ये काम करना है, और गोविंदा जो है साहब बिल्कुल एकदम भोले भाले सीधे कहते हैं ना, एकदम इंसान बन के उनकी बात को फॉलो कर रहे, तो कभी फंस जाते थे तो कभी निकल जाते थे। तो होता है दोस्तों, ये तो कहते हैं ना, यही मस्ती है और यही हर तरह का एक तरीके से अपनापन है। चलिए, अभी बात चल रही थी सपनों की। सपने जो होते हैं अपने, कुछ मीठे कुछ खट्टे, और बचपन में लगता था कि बड़े होके जो चाहेंगे सब मिल जाएगा, फिर पता चला साला बड़ा होना भी एक बहुत बड़ा होमवर्क ही है। हमारे साथ लिसनर जुड़े हैं हमारे एफएम के, तो चलिए उनसे बात करते हैं। आज वो क्या सैटरडे अपना स्पेशल कर रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: जी नमस्कार सर। सर मैं कह रहा हूँ, मैं पहले तो अपना परिचय कर दूँ। मैं नईमुल अकरम सिरसमुद वहां से बोल रहा हूँ सर।
0: हेलो, हाँ अकरम साहब बताइए साहब।
1: जी मैं सिरसमुद वहां से बोल रहा हूँ।
0: सिरसा दुराहा से?
1: जी जी सिरसमुद वहां काशीपुर रोड पे है सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या करते हैं आप अकरम साहब?
1: सर मैं ठेकेदारी करता हूँ फैक्ट्री में, प्रभात मार्केट फैक्ट्री है, ब्रास सिटी के नाम से जानी जाती है सर।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: वहाँ पे ठेकेदारी करते हैं सर। और असल में क्या है, मुझे और आगे से तो बात होती रहती है, लेकिन आपसे मेरी पहली मुलाकात है सर।
0: चलिए साहब, ये पहली मुलाकात भी याद रहेगी, आप चिंता ना करें। जी, आगे और भी मुलाकातें होती रहेंगी हमारी कॉल पर।
1: जी जी बिल्कुल होंगी। और एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ सर, अगर आपको टाइम हो तो मैं बताऊँ।
0: हाँ हाँ बताइए बताइए, छोटी सी होनी चाहिए बस, क्योंकि सब सैटरडे वाले मूड में है, गाना सुनने के मूड में है।
1: हाँ जी हाँ
0: हाँ हाँ बताइए।
1: हम छोटे थे तो हमें कहानी पढ़ते थे एक किताब में, मैं वो सुनाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं।
1: उसका मतलब मकसद, उस कहानी का मकसद ये है कि अगर हम किसी काम को लेकर के अगर हम किसी में अगर हम जुट जाए तो हमें उसके लिए हमें मंजिल मिल जाती है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही।
1: तो उसमें एक कहानी थी कि एक लकड़हारे का लड़का पढ़ने का शौकीन बड़ा था, दिन भर तो मजदूरी करता और रात तो लिखता पढ़ता, सरकारी बत्ती के नीचे ऐसे ही कितने दिन बीते, आखिर मेहनत काम ही आई, LLB की डिग्री पाई और धीरे धीरे और बढ़ा वो, हाई कोर्ट का जज बना वो।
0: क्या बात है साहब, क्या बात कही आपने, ये तो बहुत कहते हैं ना एक मोटिवेशन वाली बात बोल दी आपने।
1: जी जी जी जी, तो मैं मेरा मकसद सिर्फ है एक हमें कामयाबी के लिए हमें हर कुछ करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: और हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते।
0: बिल्कुल सही बात का। इसमें एक बात और है, हर चीज में सरकार का जरूर बहुत रोल लेता है, जैसे आपने बताया ना सरकारी बत्ती के नीचे पढ़ाई की।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो देखो
1: कहीं ना कहीं सरकार का रोल रहता ही है।
0: हाँ साहब, ये तो मैं सैटरडे वाली मस्ती कर रहा हूँ साहब, कहीं ना कहीं रोल जो है अपने अपने उस बंदे का भी है जिस बंदे ने मेहनत लगन से ये सब हासिल किया, मेहनत कर रहा है और पूरे हफ्ते पूरे महीने काम करता है, एक दिन तो चाहता है वो भी कि मैं भी थोड़ा सा आराम करूं।
1: जी बिल्कुल सही बात।
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे साहब अकरम साहब आप?
1: सर गाना वो सुनवा दीजिए, बादरंचारी का गाना है, कृष्ण कपूर के फिल्माया गया है वो, मैं यार यार के है ना लड़े लड़ेंगे।
0: सही है साहब।
1: सर मेरे साथ दोस्त है कोकरपुर से रफी भाई है, और अकबरपुर जाम मस्जिद से आरिफ भाई है, गफार साहब रामपुर से, और रेहाना जी है, और हमारे सब आठ सब आरजी है, और सबके साथ सब आरजी
0: साहब सभी दोस्तों को डेडिकेटेड है आपके ये, और आप अपने सभी दोस्तों को बहुत संभाल के रखिएगा सर, हीरे से कम नहीं होते दोस्त भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात।
0: चलिए सर ठीक है, अकरम साहब धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने हमसे जुड़े और हमें आपने बहुत अच्छी बात भी बताई आज, आपने अपने अपने माध्यम से जुड़ने के माध्यम के बाद हमें जो इतनी अच्छी बात बताई वो हमेशा याद रहेगी। ठीक है
1: साहब,
0: ओके सर, नमस्कार जी। तो ये थे हमारे साथ अकरम साहब, अकरम साहब ने अपनी सैटरडे वाली बात ये बताई है कि भैया जो चाहे ना इंसान वो पा लेता है, बस उसे रास्ता निकालना होता है। तो चलिए तब तक सुनते हैं उनकी फरमाइश का भी गाना, और आप भी मिलाओ फटाफट 9837896896। अरे सिर्फ गाने के बोल ही बता देना साहब।

वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, ये जो गाना था ना साड़ी के फॉल सा, जब ये फिल्माया गया ना, इस गाने में खास बात ये थी कि जब भी ये गाना स्टार्ट होता है, इस गाने की स्टार्टिंग में एक बंदा जो है वो भाग रहा होता है, कभी इस सीन से लेके दूसरे सीन में निकल रहा होता है। और हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उस बंदे को पहचान भी लोगे आप। इस गाने की पिक्चराइजेशन बहुत ही बढ़िया की गई है और डांस तो शाहिद कपूर साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है। हमारे पास हमारे

0: को उड़ान देती हूँ मैंने. बहुत सही कहा आपने रिया जी, और आपने बहुत ही क्या बनने को तो होता है कि हमारे पास कई सारे ड्रीम्स होते हैं कि कोई तो अपनी कॉलोनी का नेता ही बनना चाहता है मगर नहीं बन पाता है. तो आप टीचर बनी हैं और आपने टीचर बनके दूसरों के बच्चों को सपनों को उड़ान दे दी है, तो बहुत ही अच्छी बात है. और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपना एक्सपीरियंस भी आता, आप एज अ टीचर भी अपना शेयर करती हैं, तो बहुत ही कहते हैं ना आगे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और टीचर का पेशन, मतलब टीचर जो प्रोफेशन है वो सबसे ऊपर ही होता है. हम बिना टीचर के तो हम लोग भी कुछ नहीं है. और हमारे पास एक मैसेज और आया है, हमारे रामवीर रणवीर सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ. वो कहते हैं, ऊपर वाला भी ना जाने कैसे रिश्ते बना देता है, अनजानों को दिल में बसा देता है, जिनको हम जानते भी नहीं थे उन्हें FM मुरादाबाद जान से भी प्यारा दोस्त बना देता है. धन्यवाद रणवीर जी, आपने इतनी अच्छी बात लिखी. और FM मुरादाबाद को आप अपने बहुत ही करीब मानते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ ऐसे हमारे लिसनर्स जुड़ते हैं. अभी हमारे साथ कॉल पे हैं ईश्वर साहब, करते हैं उनसे आज बात, कुछ गुफ्तगु. नमस्कार ईश्वर जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो, नमस्कार सर.
0: क्या कर रहे हैं सर आप इस समय?
1: सर इस टाइम तो मैं प्रोग्राम सुन रहा था, आपको याद कर रहा था, कॉल लगा रहा था, कॉल लग गया, अच्छा लग रहा आपसे बात करके काफी.
0: तो आप भी अपना सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं सर?
1: हाँ सर, मैं आज अपने सिस्टर के यहाँ पर आया था मुरादाबाद में, इस टाइम में खगड़िया में सर.
0: अच्छा अच्छा, खगड़िया में है, मुरादाबाद में ही है आप?
1: जी जी, वो काफी टाइम से बुला रही थी, मैंने सोचा आज.
0: आप भी पूरी मुरादाबाद की खबर रखते हो साहब हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, या तो मुरादाबाद में या रामपुर में सर, दो जगह ज्यादा हैं.
0: चलिए, नहीं अच्छी बात है साहब. तो क्या सुनना चाहेंगे आज आप मुरादाबाद में आके?
1: सर मैं आज गाना सुनूंगा, वो मेरा नाम है बरसात की रात.
0: बरसात की रात
1: जी सर, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है. वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई.
0: क्या बात है, बरसात भी करवा देना आप साहब, आए हो मुरादाबाद तो.
1: हाँ सर, दुआ तो यही बरसात हो जाए सर, काफी गर्मी है.
0: चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े हैं ईश्वर जी. ईश्वर जी, और सुनते हैं आपकी पसंद का गाना.
1: थैंक यू, नमस्कार सर.
0: नमस्कार जी. तो दोस्तों, हमारे साथ ईश्वर जी ने अपनी फरमाइश रखी जुड़ के, बरसात की रात की मूवी का गाना है, वादा करके साझा नहीं आया. ये बात तो सही कहा. और एक शायरी हमारे पास आई है, वो पता नहीं किधर से आई है मगर आई बहुत अच्छी है. हर मंजिल का रास्ता आसान नहीं होता, हर सपना पहली कोशिश में पूरा नहीं होता, लेकिन जो मुस्कुराकर चलते रहते हैं उनके हिस्से का आसमान ज़रूर होता है. क्या बात कही है साहब आपने. आप अपना नाम भी ज़रूर हमें मैसेज किया करें, जब भी आप इतने प्यारे प्यारे कोर्स, इतनी प्यारी प्यारी शायरी आप हमें मैसेज करते हैं. तो चलिए सुनते हैं इशरत जी का फरमाइश, और वादा करके आते हैं, मगर आप भी हमसे वादा करें और हमें मैसेज करें और हमसे ही जुड़े रहें 9837896896 पर.

0: सिंग इज किंग, ये बात तो है बिल्कुल सच, सिंग इज किंग। वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और जी हाँ, चलिए हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं आज फिर सैटरडे में कुछ ना कुछ मस्ती भरा गाना सुनने के लिए तैयार हैं, तो बात करते हैं उन्हीं से। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी नमस्कार अखिल सर, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया बढ़िया सर, क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: कुछ नहीं सर, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था।
0: अपना नाम बताइए और बताइए आप कौन सी गली में रहते हैं?
1: जी सर, मेरा नाम आमिर खान है, मैं रहमत नगर गली नंबर 1 से बात कर रहा हूँ।
0: तो आमिर साहब क्या कर रहे हैं इस समय आप? अच्छा एक बात बताइए आमिर जी, अगर आप सपने देखते हैं और सपनों पे आपके GST लग जाए तो आप क्या सपने देखने बंद कर देंगे?
1: नहीं, सपने तो जाहिर सी बात है, तो आएंगे।
0: तो कौन सा ऐसा सपना देखेंगे जो बहुत ही महंगा लगेगा फिर आपको?
1: महंगा है तो कोई नहीं देखेंगे फिलहाल।
0: ऐसा नहीं आ रहे सर, मजाक कर रहा हूँ, GST ये नहीं लगा रहे कोई सपने में, मगर सपने तो देखिए ना।
1: और सर आपके परिवार में सब कैसे हैं?
0: सब बढ़िया सब बढ़िया, आप बताइए आपके परिवार में सब कैसे हैं?
1: जी सर बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया है। और मैं आज आपके रेडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा।
0: क्यों नहीं,
1: हम लोगों को अपने परिवार में सभी लोगों का इन दिनों ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इन दिनों। और साथ में पशु पक्षियों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके और हमारे ही सहारे हैं, कि वो बेजुबान होती है, हमें जितना बन पड़े हम उनके लिए करें।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि इस समय मौसम ऐसा है, गर्मी ऐसी हो रही है कि आप बाहर निकलते ही पसीने एकदम छूट जाते हैं आपके, तो उनका तो ध्यान रखना बनता है बॉस।
1: जी सर।
0: और बताइए क्या गाना सुनेंगे सैटरडे नाइट में? आप क्या करते हो सैटरडे में? एक्चुअल सैटरडे के बाद आप संडे का इंतजार करते हो या सोचते हो सैटरडे में कोई मस्ती हो जाए?
1: जी वैसे तो संडे का इंतजार करते हैं, क्योंकि मेरा संडे कोई छुट्टी रहती है।
0: अच्छा, तो सैटरडे का जो है पूरा दिन संडे के इंतजार में निकल जाता है।
1: जी जी जी।
0: और संडे में ये इंतजार होता होगा कि आप मंडे कभी ना आए।
1: जी जी जी।
0: तो कौन सा गाना सुनेंगे साहब?
1: जी आज मैं लाडला मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहूंगा।
0: क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं, जरूर सुनाते हैं वो भी। और अच्छा लगा आपने आमिर साहब हमारे साथ बातें करी, अपने मन की बात भी रखी और बहुत ही अच्छी बात बोली आपने आज स्टेशन पे हमारे साथ।
1: जी
0: तो धन्यवाद,
1: मुझे बोलने का अंदाज बहुत ज्यादा पसंद है सर आपका।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप मिलाते रहिए हमें कॉल और बताते रहिए अपने दिल की भी बात। नमस्कार जी। तो दोस्तों हमारे साथ थे आमिर साहब, इनकी गली नंबर जो है ना इन्होंने बोली थी, अगर आप किसी को याद हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं कि ये कौन सी गली नंबर में रहते हैं। और GST लगते ही सपनों का ये कह रहे हैं, जी मैं तो सपने ही देखना छोड़ दूंगा। और हमारे पास रोहित जी मैसेज करके कहते हैं, अभी नहीं मैं तो सपना देखूंगा BMW वाला। तो हाँ जी साहब, तो चाहे GST लगे चाहे दूसरा कोई टैक्स लगे, मगर मैं सपना तो BMW वाला देखूंगा। तो सुनते हैं गाना, और लाडला मूवी का उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा है कि तेरी उंगली पकड़ के चला, तो आज उन्हें लगता है किसी की याद आ रही है जो उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है। तो सुनते हैं

0: वेलकम बैक टू 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और हाँ, कुछ गाने होते ही ऐसे हैं कि जिन्हें सुन के बाद, जिनको सुनते ही ऐसा लगता है कि भाई खो जाते हैं और अपने आप को उसमें पाने लगते हैं कि हाँ मैं ही ऐसा डांस करता था भाई, कि सैफ अली खान को ही मैंने फेल कर दिया। तो हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं इस समय मैसेज के द्वारा भी, और भी दीपक जी का मैसेज आया कि अखिल साहब मेरा पहला सपना था, मेरा अब तक का सपना जो था वो था पहली बढ़िया बाइक लेने का, और मैंने 2 साल खूब मेहनत करी और मैंने अभी पिछले महीने ही बाइक खरीद ली है। तो दीपक जी पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने जो बाइक खरीदी है। और हाँ, बाइक की ना जो पहली राइड होती है ना वो हमेशा याद रहती है। मेरे को भी अपनी पहली बाइक की बहुत अच्छे से, मैं कहता है ना, सारी कई सारी यादें जुड़ी हैं। मेरी बाइक का नाम था होड़ी बाबा। अब होड़ी बाबा जिस जिसको पता है कौन सा मॉडल था तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं कि हाँ वो बजाज का कौन सा मॉडल था। अभी हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं क्या लेके आए हैं वो सैटरडे को आज। नमस्कार उस्मान जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, बस दुआएं साहब, खाकी बल्डर की जारत के पीछे से मोहम्मद उस्मान साहब गुप्ता।
0: मोहम्मद उस्मान साहब क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: ये सब आपका प्रोग्राम सुन रहे थे साहब, बहुत प्यारा, आप अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हैं आप।
0: धन्यवाद उस्मान साहब, धन्यवाद।
1: डायरेक्टर साहब को भी आपके एफएम के, उनको भी मुबारकबाद हो, आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम।
0: नहीं, हमारी पूरी टीम जो है वो आपको धन्यवाद देती है। और आप उस्मान भाई, आप भी हमें जब कॉल करते हैं ना तो एक कॉल करने वाला भी जो हमें बंदा करता है, हम उसको भी बहुत बहुत मानते हैं, क्योंकि फोन तो सबके पास है, मिला हर कोई नहीं पाता।
1: ये बात मानिए।
0: तो क्या सुनना चाहेंगे उस्मान भाई, आप सैटरडे में क्या करते हैं? वैसे अक्सर आराम ही करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं घर परिवार के साथ? हर चौराहे पे जो एक दुकान होती है वो बहुत फेमस होती है ना उस्मान भाई? बस उसी से 2 बातें हो गई भाई साहब, और अपना चलो जी घर को। तो क्या तो क्या कह, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपके, इस गाने से मुझे रामनगर की याद आ गई कि रामनगर पास में ही है, जिम कॉर्बेट भी घूम के आना पड़ेगा, 2-3 हाथियों को देख के आना पड़ेगा साहब। चलिए नहीं साहब, उस्मान भाई जब भी आप फ्री हो दोनों चलेंगे जिम कॉर्बेट घूम के आएंगे और हाथियों से भी मिल के आएंगे। अरे आपकी इसी बहाने आपको कोई शायरी याद आ रही तो सुना दीजिए आज, बता दीजिए आज।
1: तू दूर है मगर दिल के बहुत पास है, मेरा प्यार मेरे लिए बहुत खास है।
0: क्या बात है,
1: हर लम्हा तुझे याद करता है क्योंकि तू ही मेरी हर खुशी का एहसास है।
0: क्या बात कही उस्मान भाई, क्या बात, बहुत ही बढ़िया शायरी आपकी, और धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए उस्मान जी। नमस्कार जी। तो श्रोताओ, ये थे उस्मान भाई जिन्होंने अपने दिल की बात बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना, सैटरडे में खोल के रखी है। ऐसा ही होना चाहिए इंसान, जो जैसा मौका मिले वैसे ही मार दे उस पर चौका। तो इन्होंने तो मार दिया 9837896896 पे कॉल करके चौका। आप भी बताइए ना, कोई तो ऐसी शायरी होगी जो कहीं ना कहीं फंसी होगी, हमें सुनाइए ना। तो चलती है, सब तक हम ढूंढ के आते हैं, थोड़े से हाथी घूम के आते हैं जिम कॉर्बेट।

0: नाच मेरी जा नाच। तो आज सैटरडे नाइट है तो नाचना तो बनता ही है साहब। कमबैक है आपका 89.6 मेगाहर्ट्ज पे और आपका अपना ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, अब तो पता चल गया होगा आप सभी को। तो हमारे साथ मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, और अभी एक हमारे पास मैसेज आया है जिसमें राजा कश्यप जी, इन्होंने अपना बर्थ ईयर भी लिखा है 2009। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को याद करके सो जाएं तो नींद अच्छी आती है, तो मैंने सोचा मैं आपको और आनंद सर को याद कर लूं। तो राजा कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सोने से पहले हम लोगों के लिए भी कुछ सोचा, और हम भी यही सोचेंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आए, बहुत बढ़िया सपने आए। हमारे साथ अभी एक लिसनर जुड़े हैं, अदिति कश्यप जी, चलिए बात करते हैं क्या कहती हैं वो आज। नमस्कार FM, कैसे हैं आप?
1: हेलो भैया जी, नमस्ते।
0: नमस्ते अदिति जी, क्या कर रही हैं आप इस समय?
1: मैं इस समय बाहर रहती हूँ।
0: तो आप सैटरडे नाइट क्या करते हो आप मोस्टली टाइम?
1: मैं सैटरडे तो आराम से सुबह जल्दी उठने, संडे को जल्दी उठने की तैयारी करती हूँ।
0: तो मतलब सैटरडे कभी मूवी नहीं देखते या फ्राइडे को ही देख लेते हो मूवी?
1: मुझे मूवी देखने का शौक नहीं है भैया।
0: तो आपको किस चीज का शौक है, क्या हॉबीज हैं आपकी?
1: मेरी हॉबी मतलब मुझे ज्यादातर ड्राइंग का शौक है, इसलिए मैं संडे को ड्राइंग करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा शौक है, ड्राइंग करना तो बहुत अच्छी बात है, और हर कोई ड्राइंग अच्छी नहीं कर पाता है। मैं तो बचपन में वो बनाते थे ना हट, एक हट बना दी, एक सूरज निकलता हुआ, कुछ पहाड़ बना दिए, कुछ पेड़ बना दिए, हमारी तो ड्राइंग वहां से शुरू होती थी, वहीं खत्म हो जाती थी। आप क्या बनाती हो ड्राइंग में, आप सबसे अच्छी कौन सी चीज पेंट करती हो?
1: मैं भैया सब मतलब कि मेरे ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं नॉर्मली सब कुछ बना लेती हूँ।
0: और आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं, मतलब आप कौन से स्केचेस यूज करती हो आप?
1: सारे कलर्स पसंद है, पर ज्यादा पर्पल, पिंक, रेड, ब्लू।
0: चलिए अब बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा सुनना चाहेंगी आप?
1: मुझे गाना सुनना फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया।
0: जरूर जरूर जरूर। तो अदिति बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: हाँ, मैं अपनी पूरी फैमिली को डेडिकेट करना चाहती हूँ, और खासकर अपने पापा को।
0: बहुत सुंदर। तो चलिए अब ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ और आप इसे एंजॉय करिए, आज अपनी सैटरडे नाइट स्पेशल करिए। बाय बाय बाय अदिति, गुड नाइट। तो श्रोताओं ये जुड़ी थी हमारे साथ अदिति जी, कितना स्वीट सा गाना लेके आए, कितनी स्वीट सी आवाज़ थी, और ड्राइंग करना इनका शौक है, तो कुछ ना कुछ तो कलाकारी है साहब इनके अंदर। तो चलिए सुनते हैं इनका पसंदीदा गाना और प्ले करते हैं फर्स्ट टाइम देखा तो तुम्हें लव हो गया। हमारे पास मैसेज आया है प्रियंका जी का भी, उन्होंने कहा कि मेरा सपना था मम्मी पापा को पहली बार फ्लाइट में बैठाने का। तो ये तो असली जीत है साहब, ये आपने अपना सपना पूरा किया, और ये सपने कई लोगों के ऐसे जुड़े हुए होते हैं, मेरा भी कहते हैं ना, ये कई लोगों के सपने बहुत लोगों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो बहुत लोगों का सपना ऐसा रहा होगा कि ज़रूर अपने माँ बाप को पहली बार फ्लाइट में ज़रूर बिठाएं। तो ये तो बहुत ही कहते हैं अच्छी बात रही, और इसी के साथ एक शायरी भी हमारे पास आई है, कुछ सपनों की कीमत पैसे से नहीं, कुछ सपनों की कीमत पैसे नहीं, माँ बाप की मुस्कान होती है, और ये जो मुस्कान खरीद ले वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। क्या बात लिखी है साहब आपने। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी आप हमें कुछ ऐसा मैसेज करें तो ज़रूर अपना नाम हमें ज़रूर मेंशन करें, तो कम से कम हमें भी लगे कि हाँ ये कहाँ से निकल के आई हैं बातें। तो बहुत ही अच्छी शायरी लिखी है साहब आपने। चलिए अदिति जी का करते हैं एक सपना छोटा सा सैटरडे वाला पूरा, और सुनते हैं उनके पापा के लिए ये गाना।

वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़। ये जो आप गाना सुन रहे थे ये फरमाइश थी नमन साहब की, जो अभी क्लास सेकंड में पढ़ते हैं। तो साहब क्या गाने की फरमाइश है, और बहुत ही अच्छी फरमाइश है। अभी हमारे पास मैसेज आया है रणवीर सिंह का जी का। रणवीर सिंह जी पूछते हैं कि अखिल साहब अब आपके पास कौन सी गाड़ी है। तो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया साहब हमारी गाड़ी कौन सी है, बाकी आप भी पता करते रहिए कि कौन सी गाड़ी से चल रहे हैं आजकल। तो उम्र बदलती रहती है, सपने बदलते रहते हैं। उम्र बदलती रही, सपने बदलते रहे, बस एक उम्मीद रही कि कल आज से बेहतर होगा। तो दोस्तों आज हमने खूब सारी बातें की, आज हमने हर सपने को पूरा हो या ना हो, मगर कुछ कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए और पीछे लगे रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सपने हमें हमारे पूरे हों, मगर हर सपना हमें कुछ ना कुछ सिखा जाए ये ज़रूरी होता है। हमारे पास अर्पित जी का मैसेज आया, वो कहते हैं मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन उम्मीदें अभी भी ज़िंदा है। तो क्या खूब कहा अर्पित भाई आपने, हरतला में रहते हैं, हरतला कॉलोनी में। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जब तक उम्मीद ज़िंदा है ना साहब, तब तक कहानी ख़त्म नहीं हुई है। एक फाइनल शायरी आपसे अलविदा लेने से पहले, खट्टे मीठे सपनों का ये सफ़र चलता रहे, हर सुबह नई उम्मीदों का सूरज निकलता रहे, हार कर भी मुस्कुराना सीख लो दोस्तों, यह ज़िंदगी है, यही दिल से जीने का हुनर है। तो अब हमें इजाज़त चाहिए आपसे फिर से दोबारा मंडे को मिलने की, क्योंकि कल है संडे। संडे को तो आराम बनता है साहब, इधर उधर जो पेंडिंग काम है ना उन्हें तो निपटाना बनता ही है। और हाँ, मुस्कुराते रहिए, सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कभी मत छोड़िए। गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल, लव यू मुरादाबाद। चलिए साहब करते हैं सैटरडे नाइट वाला धमाल।

0: ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਜਾ।
1: ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਕੂਟਰ।

0: अगर आपको शानदार के शान
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: अदाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।